और जोश में आ गया, कहते क्या कह रहे हो, मेरी बहन, उमर की बहन, ये कैसे हो सकता है कि खत्ताब की बेटी जो है वो मुसलमान हो जाए। अन्ना सबा, वो भी साबिया बन गई। उन्हें कहा भी तुम जाके तहकीक कर लो। तो अब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बजाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दार अरकम की तरफ जाने के अपने घर की तरफ लौटे, और खुदा की शान देखें कि जब वो अपने घर की तरफ आए तो उस वक्त हजरत उमर की बहन जिनका नाम फातिमा थी और उनके शौहर जो थे उनका नाम सईद इब्न जैद था, वो भी मुसलमान थे। और वही सहाबी जिनका मैंने पहले अर्ज किया था पिछले दर्स में भी, हजरत खब्बाब इब्न अरद रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये आते थे कुरान पढ़ाने के लिए और कागजों पे कुछ दो चार सूरतें लिखी होती थी, वो आपको ऐसा ऐसा पढ़ाते थे ताकि हजरत उमर के बहनोई भी और बहन जो है वो कुरान पढ़ ले। और ये अपने घर में बैठे हुए कुरान की मशक कर रहे हैं और उमर गुस्से में आके दरवाजे पे जब करीब आया, उस जमाने में बड़े बड़े मोहल्लात तो थे नहीं कि बहुत दूर रुकावटें हों और आदमी खड़ा हो जाए, आदमी सीधा दरवाजे तक आ जाता। तो अंदर से देखा कि आवाज आ रही, तुआहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का, समझ नहीं आया कि क्या है, आवाज आ रही। उमर रजी अल्लाह तआला ने गुस्से में दरवाजा खटखटाया, दरवाजा जब खटखटाया तो सईद इब्न ज़ैद ने खब्बाब इब्न अल-अरस से कहा कि जल्दी से तुम फला जगह छुप जाओ, क्योंकि आप जानते हैं उमर बड़ा जब्बार है, उसका इस टाइम में हमारे घर में आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इस वक्त में तो कभी नहीं आया बहन के घर। खैर दरवाजा खोला तो देखा कि वो तो बिफरा हुआ शेर बना हुआ है। उसने कहा कि फातिमा क्या पढ़ रही थी, और मुझे पता लगा है कि तुम इस्लाम ला चुकी हो, तुमने भी दीन नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल कर लिया है। बीबी फातिमा ने पहले तो टालने की कोशिश की, उसने कहा कि उमर नहीं ऐसी बात नहीं, हम आपस में बात कर रहे थे बस तुम्हें, उसने कहा कि नहीं नहीं मैंने सुना है तुम लोग कुछ पढ़ रहे, और गुस्से में आके बीबी को मारा, अपनी बहन को मारना। और उसके बाद सईद इब्न ज़ैद बहनोई आगे छुड़ाने के लिए आए तो उन्हें मारा। अब उमर के सामने कौन ठहरे, आखिर वो तो इतना बड़ा ताकतवर आदमी, इतना बड़ा जब्बार आदमी, कहार आदमी और बड़ा जंगजू आदमी, एक औरत कैसे मुकाबला कर सकती है। अब बीबी फातिमा अपने शौहर को बचाती है, शौहर अपने बीवी को बचाता है, उमर दोनों को मार रहे हैं। उसके बाद बीबी का खून खौल उठा, उसने कहा कि या उमर क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती औरत पे हाथ उठाते हो, क्या तुम कर रहे हो, यही तुम्हारा मजहब है, एक मैं तुम्हारी बहन न सही एक औरत तो हूं, अपनी बहादुरी औरतों में दिखलाते हो, और सुन लो अगर तुम्हारी रगों में खत्ताब का खून है तो फातिमा की रगों में भी खत्ताब का खून है, मैं कट सकती हूं लेकिन अब दीन मोहम्मद मुस्तफा नीचो, तुम जो चाह सकते हो करो। और जैसे किसी शायर ने कहा कि इधर आओ जालिम हुनर आजमाए तो तीर आजमा अहम जिगर आज, कि तुम जितनी सितम कर सकते हो तोड़ लो सितम, ला अतरो को दीन मोहम्मद अबदा, मैं मोहम्मद मदनी का दीन नहीं छोड़ सकती, और तुम्हारे पास जितनी कुव्वत है, ताकत है, जोर है, आजमा डालो अपना जोर, देखो कि आज फिर खत्ताब की बेटी मुकाबला करती है कि नहीं। अब उमर का दिमाग में आया कि आखिर क्या बात है, इतनी मार खाने के बाद मैं उसका भाई हूं, आखिर कोई वजह है। तो उमर बैठ गए, उसने कहा अच्छा फातिमा एक बात तो सुन। तो फातिमा ने पूछा क्या बात है, उसने कहा अच्छा तुम जो कुछ पढ़ी थी मुझे भी सुना, मैं भी सुनना चाहता, और मुझे भी दिखाओ लिखा हुआ वो क्या है, मैं भी तो पढ़ू ना, आखिर मैं पढ़ा हुआ आदमी, हजरत उमर भी उन लोगों में थे जो पढ़े हुए थे, यानी मक्के के वो चंद लोग जो लिखना पढ़ना जानते थे, हजरत उमर उन लोग, बीबी फातिमा उख्ते उमर सैयदना उमर की बहन ने कहा, उसने कहा उमर ऐसे नहीं हो सकते, हम तुम्हें लिखा हुआ मुसाफ नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे नबी का फरमान है कि ये अल्लाह की किताब है और ये अल्लाह का कलाम है, इसे कोई पलीद नहीं छू सकता, और हमें क्या पता है, तुम तो काफिर आदमी हो, तुम्हें तो पता ही नहीं कि वजू क्या होता, तुम्हें तो पता ही नहीं कि तहारत क्या होती है, तुम्हें तो पता ही नहीं कि हदस असगर हदस अकबर क्या चीज होती है, हाँ अलबत्ता एक शर्त है कि तुम गुस्ल कर लो नहा, चलो अपने अकल

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया।

जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा बीबी मरियम गुस्से में आने की जरूरत नहीं है, ये तो तेरे रब का फैसला है और तेरे अल्लाह को बगैर तेरी शादी के बगैर किसी चीज के बच्चा पैदा करना मुश्किल नहीं, बड़ा आसान है। और अल्लाह तो चाहते हैं कि उसको एक निशानी बनाए अपनी कुदरत की कि कोई ये ना कहे कि अल्लाह बना तो सकता है लेकिन जब तक मियां बीवी ना हूं वो भी नहीं बना सकता। अल्लाह चाहते हैं कि मैं अपनी कुदरत के तमाम नमूने दिखा दूं, मैं चाहूं तो नूर से मलाइका पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो नार से जिन पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो मिट्टी से आदम पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो आदम से हव्वा पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो मरियम से ईसा पैदा कर दूं, यखलुक मा यशा, मेरी मर्जी में जो चाहूं जैसे चाहूं। यही तो उसकी शान। अच्छा जी, उन्होंने कहा कमाल है तो ठीक है। और उन्होंने कहा बीबी तुम बात कहो ना कहो, काना अमरम मकजिया, ये तो अल्लाह की तकदीर का फैसला हो चुका है, अब वो तब्दील थोड़ा होता है। अब जनाब यानी हमल भी हो गया, बजा अमल भी हो गई, अब बच्ची बिचारी बैठी रो, या लैतनी मित्तु कबल हाजा व कुंत नसियम मनसिया, रो रही है फिर भी, हालांकि जिब्रील बातें करके गए, कहती हाय काश मैं तो पैदा ही ना हुई होती, कम से कम चलो ठीक है मैं बेगुनाह हूं, मेरा दामन साफ है, लेकिन कौम तो नहीं जानती ना। जिब्रील की बात हुई तो मेरे साथ हुई है, पूरी बिरादरी के साथ तो नहीं हुई ना, बिरादरी मुझे जब आएगी तो मैं कैसे मुकाबला करूंगी। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें मुकाबले की जरूरत नहीं है, जब कौम सामने आ जाए तुम चुप करके सिर्फ ईसा की तरफ इशारा कर दो, हम जाने हमारा ईसा अलैहिस्सलाम जाने। कौम आ गई गुस्से में भरी हुई है, कहती या उख्ता हारून मा कान अबूक इम्रा सौइन वमा कानत उम्मुकी बगिया, के भाई हारून की बहन, बाद लोगों ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम के जो भाई थे हारून उनकी बहन, ये मुराद नहीं है, बल्कि मुराद ये है कि कान रजुलन सालिहन, उस इलाके में एक बहुत बड़े आबिद गुजार थे, उनका नाम हारून था जिसकी तरफ निस्बत की गई। उनने कहा तेरा बाप अच्छा, तेरी मां अच्छी, ये क्या है? फअशारत इलैही, अब बीबी ने इशारा किया, कालू कैफ नुकल्लिम कैफ।

0: आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सामने नाजरीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। 13/9/2026 का प्रोग्राम है। सुबह हमने आपको इंट्रो में भी बताया था और अभी भी आपको बता रहे हैं कि आज हमारे बहुत सारे मेहमान होंगे। चंद लम्हे पहले आपने लुबना इलाही साहिबा की बात सुनी, वो भी पुरानी सिटी काउंसलर हैं, बोल्ड बोलती थी, वो भी मेयर की सीट के करीब से जो हैं वो सिटी काउंसलर रहीं और आज भी मुतर्रक हैं। उन्होंने आज बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारी रेडिकल पार्टी की मंशूर में लिखा हुआ है कि बाई बर्थ जो है वो नेशनलिटी मिलनी चाहिए। तो बहुत सारे सवालात उनसे हुए। उसके अलावा समन, जिस तरह आपने कहा था कि मलिक सिकंदर सदीक जो कि साबका पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, डेनिश कोपनहेगन पार्लियामेंट के जो हैं, कम्यून के जो हैं, उसके भी मेंबर हैं, वो स्टिल मेंबर हैं। अभी लुबना ने भी कहा कि स्टिल वो मेंबर हैं सिटी काउंसिल के। इनसे आज हमने बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ने को देखने को मिलती रहती हैं और हम देखते भी रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं और लोगों की बातें भी सुनते रहते हैं। लेकिन आज चूँकि सिकंदर सदीक प्राय रास्त हमारे साथ मुखातिब होंगे, लाइव हैं इस वक्त हमारे साथ। सिकंदर, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं।
1: जनाब राजू साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दावत देने का। जितने भी आपके सामईन हैं उनको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम।
0: वालेकुम सलाम। सिकंदर, चूँकि खबरें बहुत गर्म हैं, अखबारात जो हैं, टीवी चैनल्स भी हैं और सीना गजट भी खबरें चलती हैं और जो खबरें होती हैं वो कोला नमा खबरें, जलने जलाने वाली, धुआं छोड़ने वाली भी खबरें चलती हैं, तो डायरेक्ट मैं अपने सवाल की तरफ आता हूँ। आप कोपनहेगन सिटी काउंसिल के रुकन भी हैं, रुकनियत से सुनने में आ रहा है कि आपको डी सीट करने का असूली कानूनी फैसला किया गया है, आप इस पर क्या कहेंगे?
1: मैं जनाब राजे साहब ये कहूंगा कि सियासत में आपको बड़े बड़े अप्स एंड डाउन्स मिलते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि मुझे डी सीट करने का, अनसीट करने का फैसला मिनिस्ट्री के जो एस्टेब्लिशमेंट में जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये कर दिया है और मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है कि मैंने जो इसराइल के खिलाफ, मैंने जो डेनमार्क की हिस्ट्री में पहली बार इस तरह खुलेआम जो एक टैबू था ज़ायनिस्ट लॉबी की जो इन्फ्लुएंस है यहाँ की पॉलिटिक्स पे, उस पे हमने बात की, तो इन्होंने फिर एक बिल्डअप प्रेशर बिल्डअप किया और ये जो है सारा केस शुरू किया और मेरे जीते हुए इलेक्शन, मेरा जो मैंडेट है जो मैंने भरपूर वोट के साथ लिया है, उसको मिनिस्ट्री के चंद लोगों ने अब बैठ, यानी कि ये कोर्ट ने फैसला नहीं किया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है जो मिनिस्ट्री के अंदर कुछ ऑफिसर्स हैं उन्होंने फैसला किया है। और मैं जरा अपने जो सामईन है उनको बताता चलूं कि ये बेसिकली क्या है, क्योंकि बहुत सारी फिर आपको पता है खबरें बाहर चलती हैं और लोग समझते हैं पता नहीं ये क्यों किया गया, ये टेक्निकली क्या बात है। टेक्निकली ये बात है कि मैं, मेरा एक घर है हैलो में और मेरे घर और भी बहुत सारे हो सकते हैं और मैंने एक कोपनहेगन में भी मेरा, मेरे पास एक रिहाइश है और जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो उसमें आप जिस कम्यून में इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें आपने रहना होता है। मैं जब इलेक्शन लड़ने जा रहा था तो मैंने फेसबुक पे और अखबार में लिखा कि भाई मैं आप कोपनहेगन में इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं, इसलिए मैं ख्याल है उससे अब कोपनहेगन शिफ्ट होऊंगा और इलेक्शन लड़ूंगा। ये मैंने अखबार में भी आया पता कि भाई सिकंदर इलेक्शन लड़ रहा है कोपनहेगन में, वो शिफ्ट होगा कोपनहेगन ख्याल है उसे। फिर उसके बाद मैंने अपने पेपर सबमिट किए तो उसमें भी उन्होंने मुझे कुलखंड किया कि ये अकॉर्डिंग टू लॉ है और ये बिल्कुल सही है, आप इलेक्शन लड़ें, और तब भी कोई मसला नहीं था। फिर जब मैंने इलेक्शन के दौरान जब ये एजेंडा उठाया कि जो इसराइल में ये बर्बरियत कर रहे थे मुसलमान फलस्तीनियों पे और क्रिश्चियंस पे, मुसलमानों पे जो ये कत्लेआम वहां पे कर रहे थे, तो फिर हमने यहाँ पे एक भरपूर कैंपेन चलाई और जिसमें हमने सबसे पहले तो ये कहा कि इस डेनमार्क की पॉलिसी ये होनी चाहिए कि इसराइल के खिलाफ, इसराइल जो है उसको डिसॉल्व किया जाए और एक स्टेट बनाई जाए फ्रॉम द रिवर टू द सी जिसमें सारे इक्वल राइट्स के साथ रहें। फिर उसके बाद हमने जब देखा कि यहाँ भी बहुत इन्फ्लुएंस है, दुनिया में हर तरफ इनका इन्फ्लुएंस है, एपेक, अमेरिका में इनका इन्फ्लुएंस है सियासत पे, तो ये बातें कभी पहले किसी ने की नहीं थी, तो हमने इसको यहाँ पे प्लेकेडा बनाए कि इनकी जो ये इन्फ्लुएंस है इसको यहाँ पे खत्म किया जाए। उसके बाद आपको याद है कि फिर एक पहाड़ टूट पड़ा और इन्होंने पहले मेरे करेक्टर एसासिनेशन करने की कोशिश की कि मतलब हम सिकंदर को रोक लें, और फिर इन्होंने जो टेंस ज़ियोनिस्ट फोब होना है, इन्होंने मेरे खिलाफ पुलिस केस किया, FIR कटवाई, तो इन्होंने फिर बहुत, फिर जो यूरोपियन ज़ायनिस्ट फोब होना है, जो इनकी जो इसराइलियों की जो यूरोपियन जो काउंसिल है, उसने फिर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को लिखा और कहा कि ये प्लेकेडा उतारे जाएं और ये माफी मांगे और ये वो। हम टस से मस ना हुए, हमने अपनी कैंपेन जारी रखी और अल्लाह के फजल करम से हमने एक पार्ट, एक हिस्ट्री,
0: ये आपको डेनवर का कानून इजाजत देता था?
1: बिल्कुल इजाजत देता था, बिल्कुल कानून के हद के अंदर हमने रह के ये सब कुछ किया है। तो फिर हमने इलेक्शन लड़ा और आप देखें कि हमने सीट निकाली जब लास लुएगे की मॉडरेट्स पार्टी है वो सीट नहीं निकाल सके कोपेनहेगन में, इंगा स्टॉयबर्ग की टेनमक्स तिमुखार है वो सीट नहीं निकाल सके, जो हकूमत में लास लुएगे बैठा हुआ है, फॉरेन मिनिस्टर है वो, उसकी पार्टी सीट नहीं निकाल सके, हमने निकाल ली, अल्लाह के फजल था। तो इनको बड़ा शौक लगा, फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा अब इलेक्शन तो जीत गया लेकिन इसको एक मिसाल बनाना है बकाया सारे सियासतदानों, ये मेरी मतलब शौक नहीं है कि इसको मिसाल बनाना है कि जो आपने बात की ये अनएक्सेप्टेबल बात है। तो फिर अचानक क्या हुआ, इन्होंने अचानक ये खोल दिया किस्सा कि ठीक है हम मानते हैं कि आप कोपेनहेगन में आपकी रिहाइश है लेकिन वो आपकी प्राइमरी रिहाइश नहीं है, यानी कि वो आपकी अव्वल रिहाइश नहीं है, आपकी जो अव्वल रिहाइश है वो बनती है हेलियो, तो क्योंकि हेलियो में बनती है तो फिर आप यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ सकते, यहाँ पे आप सीट आपके आप इसमें नहीं बैठ सकते। फिर इसमें हमारे वकील ने इसमें बहस की, जद्दोजहद की, इसी तरह जो यहाँ का फवेल्टिंग सिक्स फैद वो उसने भी लिखा एक नोट, केस देखा और लिखा गलत कर दिया। तो फिर ये केस जो है ये मिनिस्ट्री में गया और मिनिस्ट्री ये किसी, ये भी लोगों को शायद है कि पता नहीं ये किसी कोर्ट ने जजमेंट दी है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर है उसके अंडर जो स्टाफ होता है वो लोग, मतलब जो आप कह लें कि जो ऑफिसर्स होते हैं,
0: तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि केस जो है वो अदालत ने आपके खिलाफ फैसला दिया, इसकी बुनियादी वजह ये थी?
1: नहीं, अदालत ने फैसला दिया ही नहीं है, अदालत में गया ही नहीं है, ये समझने वाली बात है कि ये मिनिस्ट्री के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला हुआ है, ये कोर्ट में तो गया ही नहीं, अगर ये कोर्ट में जाता तो हम इसको यकीनन जीतते, इसको भी मैं अभी आगे आता हूं। तो ये फिर मिनिस्ट्री ने फैसला दिया कि ठीक है आपकी रिहाइश है कोपेनहेगन में लेकिन वो आपकी प्राइमरी नहीं है।
0: तो चले मैं इसके साथ एक चीज और जोड़ देता हूँ, क्या ये फैसला अतमी है या इसके खिलाफ आपको अपील का हक आपके पास मौजूद है?
1: मेरे पास अपील का हक है लेकिन मैंने अभी फिलहाल ये फैसला किया है कि मैं इसको कोर्ट में नहीं लेके जाऊंगा, उसकी रीजन है, लेकिन मैं इस पर भी बाद में आता हूँ, मैं जरा पहले वो अपनी बात खत्म कर लूँ। तो फिर कहने का मकसद ये है कि रीजन उन्होंने ये दी है कि आपकी रिहाइश है, हमने आपके पेपर भी सबमिट किए थे, इलेक्शन कमीशन ने आपको पास किया था, कैंडिडेट बनाया था, लेकिन आपकी वो प्राइमरी, आपका वो फर्स्ट अव्वल रेसिडेंस नहीं है, अव्वल रेसिडेंस आपकी हेलियो में है, इस वजह से हम आपको आपको डीसीट करते हैं और आप नहीं बैठ सकते। ये उन्होंने फजूल सी पॉइंट निकाला है, कुछ लोग अभी कह रहे हैं पता नहीं पैसों का मसला है, जिसने पैसे लिए हैं कि हाउसिंग फ्रॉड हुआ है वगैरह, बिल्कुल ये फजूल बातें हैं, ये पता ना फिर अखबारों में इसी तरह लिखा जाता है, लेकिन केस सिंपल ये है कि वो कहते हैं कि आप, हम मानते हैं कि आपका आपकी रिहाइश है कोपेनहेगन में लेकिन वो आपकी फर्स्ट रिहाइश नहीं है, फर्स्ट रिहाइश आपकी हेलियो में है, इस वजह से आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते। तो ये इन्होंने एक टेक्निकलिटी ढूंढ के मुझे डीसीट करने के लिए इन्होंने निकाली है। अब देखा ये जाए कि जब एमिलिया श्योटे जो है, जो अभी इस वक्त मेंबर नेशनल असेंबली है, उसके ऊपर जब इलेक्शन हुए तो ये सामने आया कि वो तो स्वीडन में रहती है, वो रहती ही नहीं कोपेनहेगन में, डेनमार्क में, तो फौरन पार्लियामेंट ने भी कहा कि हम इसको ओनर नहीं करेंगे, हम कोई तहकीकात नहीं करेंगे, और जिस कम्यून में वो यहाँ पे रजिस्टर्ड थी اس نے بھی کہا ہے ہم کوئی تحقیقات نہیں کریں گے, اور عام طور پہ ہوتا بھی ایسے ہے, لیکن یہاں پہ کیونکہ ہم نے یہ باتیں کی, ہم نے اس انفلوئنس کے بارے میں باتیں کی, ہم نے اسرائیل کے خلاف یہ سٹینڈ لیا, تو یہ جو زائنسٹ لابی ہے ان کا انفلوئنس اتنا اسٹرانگ ہے کہ یہ کیس کبھی نہ کھلتا, یہ کیس کبھی بنتا ہی نہ, یہ کبھی ہوتا ہی نہ اگر یہ ہم نے باتیں نہ کی ہوتی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت بڑا میڈل ہے, یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم وہ واحد لوگ ہیں جنہوں نے پہلی بار جو ہے زائنسٹ انفلوئنس کے بارے میں بات کی, اس ایشو کو چھیڑا جو کوئی بھی نہیں چھیڑتا. اور آپ یقین کریں پس پردہ انٹرویو ختم ہوتے ہیں, ہر بڑا جو ہے بندہ یہی کہتا ہے وہ یار تم سب کو پتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے, لیکن ہم بول نہیں سکتے. ہر بندہ یہ کہتا ہے لیکن دہشت اتنی ہے کہ کوئی یہ کہتا نہیں ہے. اچھا اب آئیں آگے, اب بات یہ ہے کہ اب میں اگر چاہوں تو میں اس کو کورٹ میں لے کے جا سکتا ہوں. میرا وکیل عابل کھایا وہ میرے ترلے منتے کر رہا ہے کہ آپ اس کو کورٹ میں لے کے جائیں, کیونکہ کیس سیدھا سیدھا ہے, آپ نے جیت جانا ہے. میرا ایشو یہی ہے کہ اگر ہم اس کو کورٹ میں لے کے جاتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ یہ کورٹ میں جو کیس ہوگا یہ کہیں فیصلہ اس کا کوئی 2-2.5 سال بعد ہوگا, پتہ نا یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ آج ہم کریں گے کل وہ اٹھا لیں گے کورٹ میں, اس کو بہت ٹائم لگے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیریڈ ہے جو ہمارا الیکشن کا جو جو اس کے کیا اسمبلی کا جو ٹائم ہے 4 سال وہ ویسے ختم ہو جائے گا. پھر میں بہت سارے پیسے لگاؤں گا, پھر وہاں پہ میں میرے دوست میری فیملی پارٹی کے لوگ ہم وہاں پہ وہ کیا اسے کہتے ہیں دینی ہوگی, ویزنا بننا ہوں گے, بیان دینے ہوں گے, پھر یہ بہت ساری کیا کہتے ہیں اخباروں میں ہر روز خبریں لگیں گی. تو مجھے اتنی ضرورت نہیں پڑی کہ میں پیسہ بھی لگاؤں 2.5 سال انتظار بھی کروں. ایک تو ہوتا نا اگر یہ مجھے یہ کہتے کہ چلو ٹھیک ہے تم بیٹھے رہو, تم ابھی ایز اسمبلی کے ممبر بیٹھے رہو اور پھر آپ کو ہم جب کیس آئے گا کورٹ میں دیکھی جائے گی. انہوں نے کہا نہیں آپ کو باہر نکلنا ہوگا, پھر آپ بشک اپیل کر سکتے ہیں اور پھر آپ جیت جاتے ہیں تو پھر آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا, پھر وہ میرے مجھے فائدہ نہیں ہے کیونکہ پھر ٹائم تو
0: یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ اپیل کر سکتے ہیں بیٹھ نہیں سکتے.
1: یہی تو بات ہے, یہی تو, اور یہ بھی ابھی اس جو ایکسپرٹس ہیں اس نے میں نے کسی سے بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ تو سارا غلط کر رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ مجھے ایک مثال بنانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ باتیں کرو گے تو پھر ہم آپ کا وہ حشر کریں گے کہ سارے بقایا دیکھیں. لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ میرا جب ابھی انٹرویو ہوا ہے پچھلے دنوں تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اب آپ کیا کریں گے. میں نے کہا اب میں وہ کروں گا جو ہم شروع سے پلان تھا کہ ہم مزید پارٹی کو اسٹرانگ کریں گے اور اگلے الیکشن کی تیاریاں ہم شروع کر دیں گے. اب ہم قومی اسمبلی کے الیکشن کی تیاریاں کریں گے, کمیون کے الیکشن کی تیاریاں کریں گے. اور یہ بھی بات سمجھنے والی ہے کہ ہماری جو سیٹ ہے میں نے 49% ووٹ ذاتی لیے تھے, اور ہماری جو یہ سیٹ ہے وہ برقرار رہے گی, اور اس پہ ہم میرا کولیگ جو ہے ہماری پارٹی کا ممبر
0: سکندر, آپ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اتنے زیادہ ووٹ لیے, ووٹ تو پارٹی کا منڈیٹ بنا, ووٹ آپ کے ووٹ نہ ہوتے تو پھر منڈیٹ بننا بھی ذرا مشکل سی بات بن جاتی تھی. لیکن اگر آپ کو ڈی سیٹ کیا جا رہا ابھی تک تو آپ بیٹھے ہوئے کمیون میں, تو پھر جو ہے وہ آپ کی سیٹ پر الیکشن کیوں نہیں ہوتا؟
1: بٹ یہی چیز دیکھیں ہم تو, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس سیٹ دے, اب یہ آقا اشم کو اس سیٹ پہ بیٹھے گا, وہ میرا فرسٹ سپلینٹ ہے, وہ چھوٹا بھائی ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے وہ بہت بہترین طریقے سے اور اچھے طریقے سے جو ہے اس سیٹ کو اس کا جو جو ڈیوٹیز ہے وہ سر انجام دے گا, اور پارٹی ہم سارے اس کے ساتھ ہیں, اور میں بھی ظاہر بات ہے بیک پہ اس کے کھڑا ہوں اور اس کو گائڈ کروں گا اور اس کو آگے اس کو بیسٹ سے بیسٹ جو ہے تاکہ وہ اپنے پرفارمنس کر سکے. تو اس پہ بھی ان شاء اللہ ابھی ہم بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ بہت سمپل بات ہے کہ ہم نے خود مینڈیٹ نکالا ہے, میں نے خود ہمیں ووٹ ملا ہے, ہم جیتے ہیں, اور اب یہ ہمیں فضول بات پہ ڈی سیٹ کر رہے ہیں, معمولی سی بات پہ ڈی سیٹ کر رہے ہیں. اور ظاہر بات ہے پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر ظاہر بات ہے جو اسرائیلیوں کی جو پرو پارٹیز ہیں یہاں پہ وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی اس کو تنخواہ ملی ہے وہ واپس کرے. بھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ لکھا ہوا تھا کہ اس کو 1,50,000 9 مہینوں میں تنخواہ ملی ہے, तो वो
0: मैं सिकंदर इस तरफ आता हूँ, ये बात जो है मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूँ, 9 माह की तनख्वाह अलाउंस वापस मांगने की बुनियाद क्या बताई गई है? क्या आपने बाकी 9 माह के मुकम्मल पैसे वापस मांगे जा रहे हैं? आपके वकील इस रकम की वापसी के मुताले को कैसे देखते हैं जबकि आप 9 माह बाकायदा एक्टिव काम करते रहे कम्यून में, आज भी आप कम्यून में काम कर रहे हैं?
1: देखें, सबसे पहली तो बात यह है कि जो ये जो बातें कर रहे हैं, सोशल डेमोक्रेट ने वाज़ेह अल्फाज़ों में कहा है कि तनख्वाह ना वापस मांगनी है ना इससे ना लेनी है। ये सिर्फ डेनिश पीपल पार्टी, लिबराल एलियंस, विंस्टा, ये जो प्रो इसराइल पार्टीज हैं जो पहले ही जिनको मैं दुखता हूँ, वो ये कह रहे हैं कि हम जो है इससे हमने लेनी है वापस। लेकिन जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसने कब का बयान दे दिया है कि तनख्वाह वापस नहीं ली जा सकती, वो बनती भी नहीं है। क्यों नहीं बनती? कि जब मैं इलेक्शन जीता हूं और 9 महीने मैंने वहां पे काम किया है, आपको आपके सामने मैं रखता रहा हूं, मैंने वहां फोर्स ले दी है, मैंने वहां फोर्स स्पेशलिस्ट खड़ी की है, मैंने क्वेश्चनिंग की है, मैंने क्रॉस क्वेश्चनिंग की है, मैंने बजट में हिस्सा लिया है, बजट की नेगोशिएशंस में हिस्सा लिया है, मैंने फकिंग्स आउट हेल को मैं हिस्सा हूं, तो मैंने वहां कोई क्या कहते हैं घर तो नहीं ना बैठा रहा।

0: अखबार में कहता है सिकंदर तो बहुत एक्टिव मेंबर था और उसको जाहिर बात है उस जितनी देर वो बैठा उसने तनख्वाह ली है, ये फजूल बात है करनी, तो इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात मैं ये भी बताता चलूं कि ये सारी ये जो गेम हो रही है, देखें मैं आपको बताता हूं, बहुत अरसे से ये मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं मुसलमानों के हक के लिए बोलता था, कुरान पाक की बेहरमती होती थी मैंने बोलता था, पासपोर्ट की बात होती थी मैं बोलता था, फिर अख्तियार साहब साथ मेरी कितनी बार क्या कहते हैं बहस हुई है, वहां पे खड़े होके मैंने कहा ईद मुबारक रमजान मुबारक, ये पहले कभी नहीं हुआ था। मैं इंगस्तौबा के खिलाफ बोलता था, मैं हमेशा जो है एक स्ट्रॉन्ग वोकल वॉइस रहा हूँ माइनॉरिटीज के लिए, और ये मुझे कभी रोक नहीं सके, ये मुझे कभी कंट्रोल नहीं कर सके। तो इनका दिल है, इनकी कोशिश है कि किसी तरीके से सिकंदर, क्योंकि हेड है सिकंदर जो है उसकी एक प्रोफाइल है, इसको जो है ना किसी तरीके से जो है ना खत्म करना है, और ये कोशिश है इनकी। लेकिन मैंने वही बात की, हम कश्तियां जला के निकले हैं, हम हर प्राइस के लिए तैयार है। मैंने आप लोगों को पहले दिन ये बात कही थी, मैं सियासत डेनिश सियासत में तब तक हूँ जब तक मैं अपने लोगों की नुमाइंदगी अलहक तरीके से कर सकूं, जिस दिन मैं ये ना कर सका तो फिर मैंने सियासत में रहना ही नहीं है। मैं ना ही तनख्वाह के लिए सियासत में हूँ, ना ही मैं करियर के लिए सियासत में हूँ। मैंने अपना करियर बनाना होता मैं किसी स्टैब्लिश पार्टी में बैठता और मेरी सीट निकलनी थी। मैं अपने शनाख्त पे सौदा नहीं कर सकता, मैं अपनी शनाख्त पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, करने के लिए बहुत सारे लोग और बैठे हैं, उन्हें सपोर्ट करें। फिर मुझे अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आप इसलिए कर रहे हैं कि मैं जहां भी होऊंगा मैं ललकार के जो है आपकी आवाज बनूंगा, आपके बच्चों की आवाज बनूंगा, और मैं बहुत हम्बल और आजिज़ी में ये बात कर रहा हूँ कि मैंने हमेशा ये कोशिश की है, मैं जहां भी गया हूँ जिस पार्लियामेंट में गया हूँ जिस फोरम में मैं गया हूँ वहां पे मैंने हक पे बोला हूँ, हक बोला हूँ और हमेशा जो है आवाज उठाई है। और ये भी मैं बात बहुत क्लियर कर दूं कि फ्री कॉने की जो सीट है ये बरकरार रहेगी, मैं अनसीट हो जाऊंगा, मैं वहां से निकल जाऊंगा, अशम वांदर आ जाएगा। अशम मेरा छोटा भाई है, अशम के साथ मेरे साथ जब ये पहली बार आया था कुछ 6 साल पहले की बात है, और उस वक्त जो है ये यंग सा लड़का होता था, तो मैंने इसको अपने साथ लगाया और उसने बहुत प्यार से साथ लगा, उसने बड़े अच्छे तरीके से काम किया, उसने हर तरफ मेरे साथ साथ रहता था, और उसने इलेक्शन भी कई लड़े हैं, और उसने हम जब सेक्रेटरी मेरा सेक्रेटरीट होता था फ्री कॉने का पार्लियामेंट में, उसमें भी मैंने उसको जॉब दी हुई थी, उसको तनख्वाह मिलती थी, तो ये हमेशा हमारे साथ रहा है। तो अशम जो है वो बहुत ही अच्छा मेहनती और लॉयल हमारा
1: सिकंदर,
0: पार्टी
1: ये
0: सोल्जर है।
1: अशम आपकी लॉबी में है या किसी और की लॉबी में है?
0: देखें लोग जो मर्जी है कहें और जो मर्जी है समझें, मुझे इतना पता है कि अंकल आगा नदीम साहब और अशम इन्होंने हमेशा पार्टी के साथ चले हैं, पार्टी के साथ मुखलिस ये रहे हैं, और ये मेरे साथ इनका एक बहुत प्यार है, बहुत एक मोहब्बत है। और मैंने भी अशम को कहा है, अभी भी मैंने अशम को कहा है कि ये बिल्कुल ये फिक्र ना करे, मैं इसके साथ खड़ा हूँ, पार्टी इसके साथ खड़ी है, और हमें पूरी उम्मीद है कि अशम जो है बड़े बेहतरीन अच्छे तरीके से लॉयल तरीके से इस जो जो इसको अब जो अल्लाह पाक ने एजाज दिया है इसको ये बहुत बेहतरीन तरीके से और चलाएगा, पार्टी की जो लाइन है उसको फॉलो करेगा, और हम सबसे मशवरा करके इंशाल्लाह ताला इस मैंडेट को बड़े भरपूर तरीके से उठाएगा। और मैं
1: सिकंदर,
0: समझता
1: क्या
0: हूँ
1: अब
0: कि ये जो
1: अशम का भी जो है वो कोई सुप्लियंट होगा?
0: जी, क्योंकि हमारी जितनी भी हम मसाज तो हम जो थे ना 9-10 बंदे लिस्ट में, तो अब जिसके वोट ज्यादा निकले हैं वो नंबर वन, मेरे सबसे ज्यादा निकले थे क्योंकि मेरे कोई 3,000+% वोट निकले थे, तो फिर उसके बाद अशम के वोट थे, फिर उसके बाद किसी डेनियल के वोट थे, उसके बाद राजेश के वोट थे, तो इसी तरह से फिर लिस्ट जो है उसमें अब सुप्लीएंट बनते जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आगे अशम किसी दिन छुट्टी करता है, अशम मिसाल के तौर पर पाकिस्तान जाता है और किसी वजह से नहीं आ सकता, तो फिर जो वोटों के हिसाब से जो हमारे लिस्ट पे नंबर 3 था अशम के बाद, फिर वो उसका सुप्लीएंट होगा, वो नहीं आ सकता तो फिर उसके बाद जो था वो होगा। तो इस तरह लंबी हमारी लिस्ट है, हमारे 9 मेंबर हैं, और मैं बस ये बार बड़े वाजे अल्फाजों में कहता जाऊं कि मैंने हमेशा अशम को अच्छा है पाया है, मैंने हमेशा अशम को हमेशा वो मेरी बड़े भाइयों की तरह इज्जत करता है, मैं उनके वाले साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, और मेरे जेन में या दिल में कोई ऐसी सोच नहीं है कि यहाँ पे अशम ने सही ना किया हो या वहां ना सही किया हो। छोटा भाई है, हमेशा साथ देता रहा है, हमेशा पार्टी का साथ दिया है, और यकीन करें کہ

ये आपने बिल्कुल बात सही की है कि अगर आप जाते हैं, आप देख लें कि आप टर्किश रेस्टोरेंट में जाएं या आप किसी डेनिश रेस्टोरेंट में जाएं या किसी अरबी रेस्टोरेंट में जाएं। जी, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी में जाते हैं, इवन दुकानों में जाते हैं, तो वहां पे आपको चीजें जो हैं वो इंतहा से ज्यादा महंगी मिलती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत कम ही सेल लगती है, और जो सेल लगती है, मैं किसी एक दुकानदार की बात नहीं कर रहा, अगर कोई भी सेल लगाता है तो आप अगर उस प्रोडक्ट की हेल्थ देखें तो उसकी जो होगी या 1 या 2 महीने के बाद वो एक्सपायर हो रहा होगा, या वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है और उसके ऊपर उन्होंने नई डेट लगाकर और पर्ची लगाकर और उसको सस्ते दामों सेल कर रहे हैं। हालांकि यहाँ का कानून कहता है कि आप जो है 1 या 2 या 3 महीने जो है वो जो है ये बकायदा सेल कर सकते हैं। मैं खुद 70s और 80s में दुकानदार रहा हूँ कपड़े का, मुझे यहाँ पता है कि ईस्टर्न गेट में मेरी दुकानें होती थी, तो मुझे इस चीज का इल्म है कि ये कानून जो है ये इजाजत देता है कि आप उसकी डिडक्शन जो है वो उसकी जो चीजें हैं वो आप टैक्स में बता सकते हैं कि ये चीजें मैंने इतनी की खरीदी और मुझे इतना का नुकसान हुआ है और ये मैंने चीजें सेल पे बेची है, तो वो आपको उसमें से छूट देते हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, क्या हम यहाँ पे लूट मार करने के लिए आए हैं? आप देखेंगे अब अमेरिका में क्या हो रहा है, कितने कितने बिलियन डॉलर्स की, कितने कितने 100 बिलियन डॉलर्स की लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या बाद में मुकदर क्या है कि उनके हाथ में कोई पैसा नहीं आता, ना वो पाकिस्तान लेके जा सकते हैं ना कहीं और लेके जा सकते हैं, या वो दुबई में फंस हुए हैं या कहीं फंस हुए हैं और जेल में मुकदर है। इससे बेहतर चीज यही है कि आप लोग चीज को जो है लेके चले। अगर आपने कोई रेस्टोरेंट खोला है तो आपको आपने किराया रखा है जितना सस्ता, देखिए यहूदी में मैंने एक चीज देखी है और हिंदू में, इन दोनों का मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये अगर 1 रुपए की चीज खरीदते हैं ना तो ये 1 रुपया 10 पैसे की बेच देंगे, वो कहेंगे कि हमारा पैसा जो है ये सर्कल कर रहा है, जितनी ज्यादा हम चीज सेल करेंगे बैंक में हमारे जो है वो। हाँ ये कहेंगे, लेकिन उनका जो सर्कल सिस्टम है, इकोनॉमिकल सर्कल सिस्टम, वो बहुत आला है। बैंक ये देखता है कि इसका कितना पैसा जो है वो सर्कल में आ रहा है, तो फिर उसके लिए वो बेहतर चीजें करते हैं, उसको बेहतर सहूलतें देता है। लेकिन अगर आप 200 की 250 की कोई चीज बेचते हैं और आपके पास 2 या 3 या 4 ग्राहक पूरे दिन में आते हैं, तो फिर नुकसान किसका है? ये आपका अपना नुकसान है। आप उसको का तो वो कवर करने का अपना कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप सस्ती चीजें बेचेंगे, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे कुछ यंग आदमी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही पढ़े लिखे हैं, PhD हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला हुआ है पाकिस्तानी, लेकिन वो इतनी सस्ती चीजें बेच रहे हैं कि आपको आम दुकान से भी आएगा। मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं उनके लिए कोई चीज नहीं कर रहा, लेकिन वो भी तो हाँ, तो इसलिए अगर वो बेच सकते हैं और उनका ढाबा जो है या उनका रेस्टोरेंट चल सकता है, तो आम जो पाकिस्तानी इनको भी ये चाहिए कि आप अपने रविशों से अपने चीजों से देखिए। यहाँ का कानून है राजा साहब, आपने आपने बात

जी बिल्कुल सर। ये बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। ये तो इन लोगों को चाहिए कि जो ये इस किस्म का बिजनेस करते हैं, और हमारे सबसे बड़ी ये चीज है कि उस्ताद जब क्लास में पढ़ाता है तो वो मैथमेटिक पढ़ाता है या जबरा पढ़ाता है या साइंस पढ़ाता है, मेडिकल पढ़ाता है, कुछ भी पढ़ाता है, तो वो बच्चों को खुसूसी तवज्जो दिलाता है कि आप ये सब्जेक्ट पढ़े। ये चीजें जो है, यहाँ के कानून जो है, ये लोगों को आते उस वक्त है जब वो सियासतदानों से सवाल करें, सियासतदानों को घेरे, उनसे पूछे कि भाई आप इलेक्ट हुए हैं, हमने आपको वोट दिया है, या आप अभी इलेक्ट नहीं हैं लेकिन आपके पास इल्म है, हमें बताएं। यहाँ पे ये क्या क्या क्या दिया जाता है जी, कि हमें तो डैनिश आती है, हम सब कुछ जानते हैं। हालांकि जो बड़े बड़े सियासतदान हैं उनको भी डैनिश आइन का नहीं पता, उन्होंने कभी डैनिश आइन की किताब खोली नहीं है, उनको पता ही नहीं क्या यहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ पे कौन सा कानून बन रहे हैं, यहाँ से क्या कौन सी चीजें हम लेके जा रहे हैं। अब ये देखें कि पहली जनवरी से ये गाड़ियों को जो है ये बहुत महंगा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें कौन सी अपना शामिल है, ये सारी पीडीएम के जितने भी साथ इनके लगे हुए हैं गवर्नमेंट में, इस पर पीडीएम की गवर्नमेंट, यही पिछली पीडीएम में थे। अब ये ओपन ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आप गाड़ियों का किलोमीटर जो है उसके हिसाब से आप उस

उनके लिखा तो भाया लेकिन उसमें बात को नहीं करता। आपको पता है मैं 7.5 साल रेडिकल वेंचर में रहा हूं और वहां पे बात कोई नहीं करता। वो जब फ्ली करते हैं ना, जब वो मुआहदा करते हैं दूसरी पार्टियों के साथ, तो वो दूसरी पार्टियों के साथ अपनी इस फ्ली को लेकर नहीं जाते, इस मुआहदे को लेकर नहीं जाते कि हमारे मंशूर में या हमारा सबसे ज्यादा जो वोटर सपोर्टर है वो फॉरनर है और आप इनके लिए कोई नरमियां करें, ये नहीं करते। वो ज्यादातर स्कूल को लेके जाते हैं, वो ज्यादातर हॉस्पिटल। बोलेंगे तो वो बाहर, वो कहेंगे जी आप ऐसा करें, बाहर जाके काफी का कप पी ले या कोको कोला पी ले, आप किस चीज। बिल्कुल बिल्कुल, अपने कैरियर के लिए ये सब जाते हैं। और जब इनको आइन का, और देखिए सबसे बड़ा ये सवाल है कि जो कम्यून की कम्यून का कानून है वो बनता है आइन के नीचे, और अगर आपको आइन का ही नहीं पता, अगर आपके मिसाल के तौर पर मैं अल्बर्सोन कम्यून में रह रहा हूँ, यहाँ पे आता है बजट आता है, उस बजट के अंदर फौसले होती है कि यहाँ सबसे ज्यादा सड़कें बनाई जाए, यहाँ स्कूलों की मदद की जाए, यहाँ पे आप जो है बिल्डिंग्स वालों को जो इजाजत दी जाए ताकि यहाँ पे ज्यादा बिल्डिंग्स बने और उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है वो टैक्स पेयर जो आके वहां पे रहेंगे उससे कम्यून को फायदा होगा। लेकिन इस चीज पे कोई नहीं देखता कि जो वो ज्यादा जो फ्लैट बनेंगे उसकी कीमत, उसकी जो प्राइसेस हैं वो कितनी हाई हैं। ना कोई बूढ़ा आदमी पेंशन उसको खरीद सकता है, उसके अंदर रह सकता है, अगर अगर जोड़ा भी रहेगा कोई फैमिली भी रहेगी तो वो इतने महंगे जो हैं वो किराए देंगे तो उनकी इकोनॉमिकल पोजीशन क्या होगी, इसके ऊपर कोई जोर नहीं देता, इसके ऊपर कोई जो है वो डिस्काउंट नहीं करता, बात नहीं करता। तो ये जो चीजें आइन के खिलाफ है इसके ऊपर कोई बात नहीं करता, बल्कि ये कहते हैं जी कानून बन गया है, क्योंकि जब वो कानून का नाम लेते हैं तो वो ये समझते हैं कि ये सारे बैरे हैं इनको सुनाई नहीं देता। अब आप

जी आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, ये होता है स्टेट टू स्टेट कन्वर्सेशन होती है, उनसे बात होती है, स्टेट लिखती है कि भाई हम क्या कौन सी सिक्योरिटी देते हैं, कौन सी बात करते हैं। अब पाकिस्तान का जो है मोर देन 80% इलाका जो है वो टेररिज्म फ्री है, मोर देन 80%। और अगर कोई पहाड़ी इलाकों में कोई उड़ान हादसा, कोई ऐसा हादसा होता है, तो वो उसमें टेररिज्म नहीं, आप कह सकते कोई हादसा के तौर पे कोई ऐसी चीज हो जाती है, तो एक अलग चीज है। अब ये मसाइल जो है हमने पूरी ईमानदारी से इसके ऊपर तहकीक की, और बहुत सारी जो हमारी तंजीमात हैं उन्होंने भी शोर डाला। तो ये एम्बेसी से एम्बेसी और फॉरेन मिनिस्ट्री से फॉरेन मिनिस्ट्री, और फिर उसके बाद जो है हुकूमतों के साथ खतों किताबत के बाद ये जो मसले ये हल होते हैं। लेकिन अभी तक डेनमार्क के फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान से हो आए हैं, और दूसरे भी वहां से भी यहाँ कोई ना कोई डेलीगेशन आते रहते हैं, लेकिन किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर

जी बिल्कुल, मैं वेलकम करता हूँ, बड़ा ये खुशानदा है, ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत खुशानदा है, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं, आप ये यकीन रखें कि यहाँ पे डिवोर्स रेट बहुत कम था, जब पाकिस्तान से शादियों के आती थी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग आ रहे थे, लेकिन अब जो है वो पाबंदियां जो लगी है, ये कैटेगराइज जो है, ये हमें हमारे राइज फॉर सीकिंग जो है इंश्योरेंस, ये कवर नहीं करता पूरे पाकिस्तान के अंदर, और ये दूसरी चीजें जो है ये हमें बहुत ज्यादा नुकसान है। हम यहाँ के डेनिश सिटीजन हैं, और इसके अलावा जो येलो कार्ड होल्डर्स हैं 1970 से लेके 1990 तक, यहाँ पे उनके हकूक येलो स्विस सिटीजन कार्ड वाले और नेशनल नेशनलिटी होल्डर्स के एक ही राइट्स थे यहाँ पे आइन के तक। बट बात यह है कि क्या हम इसके ऊपर बैठ के एक डिबेट करें, जिस तरीके से डिबेट किस तरह होनी चाहिए कि जो आपकी कम्युनिटी के साथ जो मिट्रिक हैं, जो लोग दूसरे लीडरान हैं, सियासतदान हैं, पार्टी लीडरान हैं, वो सब साथ आए और बैठ के ऊपर इसके डिस्कस करें, और फिर इसको बजाय इसकी मुखालफत करने के, इसको सिग्नेचर्स लेने के, सबसे जो बड़ी बात है वो लेके, तो यहाँ डेनमार्क के अंदर जो है वो यहाँ पे भी फॉरन पार्लियामेंट में पेश करने चाहिए, और पाकिस्तान एम्बेसी को याददाश्त देनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो डेनिश एम्बेसी के साथ, डेनिश गवर्नमेंट के साथ बात करें कि भाई इस चीज को अब खत्म होना जाना चाहिए, कि जब एफएन यूनाइटेड नेशन ने 2-3 साल पहले पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार नहीं दिया और इसको आजाद कर दिया गया, अभी रिसेंटली जो है नायब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और दूसरे जो है वो पाकिस्तान से होकर आए हैं, अगर ये दहशतगर्द मुल्क होता तो वहां पे ये कभी ना जाते। तो ये चीजें जो है सब कुछ इनको इकट्ठा करके, सामना करके हम लोग इनको एक वाजिया पिक्चर दिखा सकते हैं, और मेरा ख्याल में है कि ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, और इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं ये आवाज आपके जरिए, मैं क्योंकि अक्टूबर में नवंबर में मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ और मैं ये आवाज वहां पे भी उठाऊंगा। ठीक है, राजस्थान।

0: देखिए जी, मैंने सिकंदर से लेके तो आपके प्रोग्राम के अंत तक सारा आराम से हर चीज सुनी है। जो मैटर है इसका सिकंदर का कम्यून के साथ, वो उसका पर्सनल मैटर है, क्योंकि अब डिजिटल मिनिस्ट्री ने जो बात कर दी है वो बात अब खत्म हो चुकी है। अब वो अपनी पार्टी का फोरमैन है, और एज ए फोरमैन वो एक सियासतदान है, और वो पार्टी को लेके आगे चल रहा है। उसकी पार्टी के अंदर, क्योंकि मैं उसका पुराने वक्तों में एडवाइजर रहा हूँ और उसके उसका स्पोक पर्सन उसकी पार्टी का रहा हूँ, तो मैं तो यही कहूंगा कि वो उस पार्टी में अभी भी जान और ताकत है। अगर वो उसको लेके सही तरीके से पूरे ऊपर जाए तो इंशाल्लाह ताला वो कामयाब हो सकता है। और उसके साथी जो हैं वो दूसरे शहरों में बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे एक्टिव हो सकते हैं। और इसको इसको चाहिए भी, कोई भी हो, मेरी तरफ से रेडिकेल वेंसा हो, मॉडरेट में हो, डेनमार्क डेमोक्रेट्स में हो, वेंसा में किसी पार्टी को भी बंदा हो, लेकिन अगर वो फॉरनर्स के लिए कुछ करना चाहता है, अपने यहाँ के जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए करना करना चाहता है, तो हम लोग तो इस प्लेटफॉर्म पे, आपके प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज पे उनको राय देने को तैयार है, उनको उनके साथ बात करने को तैयार है। ये नहीं कि मैं ये क्या दूं जी कि मैं आई को बहुत ज्यादा जानता हूँ, मैं हर चीज को जानता हूँ, नहीं। जब आप डिस्कस करते हैं, जब आप पढ़ते हैं, आप नॉलेज हासिल करते हैं, तो फिर आपको पता होता है कि ये जितने लॉ फोर्सेस बनी है, जितने लॉ बने हैं, इनको खत्म किया जा सकता है। और सिकंदर ने जो बात की है, मुझे उम्मीद है कि वो जोश में आने की बजाय इस दफा होश से काम लेगा, और बिल्कुल उस तरीके से चलेगा कि वो एक जैसे एक पार्टी लीडर होता है। और जो हाशिम की बात है, तो हाशिम ने शुरू से ये बात की है, और आगा नदीम ने बिल्कुल शुरू से ये बात की थी, और ये बात क्लियर थी कि आगा नदीम की और मेरी गुफ्तगू हुई थी एग्जैक्टली सेकंड डे इलेक्शन के बाद, और उन्होंने यही कहा था कि हम लोग जो है स्टिक करेंगे, साथ रहेंगे। आगा आश्रम जो है वो मलक सिकंदर के साथ
1: तो
0: ही
1: शाह
0: रहेगा
1: साहब, जो
0: और इसी पार्टी में
1: प्रोपगंडा
0: रहेगा।
1: फैला रहे थे, जो प्रोपगंडा फैला रहे थे कि छोड़ के चला जाएगा पार्टी, तो इसका मतलब ये डिसइंफॉर्मेशन जान के फैलाई जा रही थी।
0: नहीं तो वो अपने पांव पे गलाड़ी मार रहे थे ना इससे। अगर ये छोड़ के चला जाता तो आज ये काउंसलर ना होता, कहीं आम आदमी बैठ के बना होता। अब ये वो कहते हैं ना फुक बाग है, या अब ये ज्यादा फायदेमंद है, अब ये ज्यादा बात करेगा वहां जाके, ये बहुत ज्यादा वहां पे काम करेगा, बहुत ज्यादा टाइम देगा, ताकि ये भी जो है सिकंदर की तरह या दूसरे सांसदानों की तरह काट निकाले, अपनी बात को, अपनी पार्टी के बात को आगे लेके चले, आवाम की बात को आगे लेके चले। तो जितना ये ज्यादा वो कहते हैं ना गुड़ डालेगा, उतना ज्यादा मीठा शीरी होगा। तो ये चीजें जो है, ये इसके अंदर जैसे सिकंदर ने अभी कहा है कि इसके अंदर काफी इसने काम किया, बड़ा हार्ड वर्क किया, और ये इसमें कोई डाउट नहीं है, और मुझे उम्मीद है। हाँ, ये रूमर्स थी कि ये पार्टी छोड़ जाएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन सबको ये पता था कि इसको भी पता था कि कल को अगर सिकंदर के ये क्लियर नहीं करते तो ये सेकंड इन कमांड ये है और इसे आगे आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बाकी जो हमारे बुजुर्ग जो हैं, वो असलम मैर साहब, वो बड़े कह रहे थे कि यहाँ पे बिकने वाले हर कोई बिकने वाला है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बिकने वाला नहीं है, हर किसी की अपनी एक पर्सनालिटी है, हर कोई रहता है। हमने भी बहुत सारी पार्टियों में रहे हैं लेकिन आज तक नहीं बिके, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ये साबित नहीं कर सकता, जो काम होता है अगर बिकना होता तो यहाँ आपके चैनल्स के ऊपर भी कहते जी कि कोई जेब में लगाओ हमें, हम भी बिकने वालों में यहाँ कोई बोलते हैं, सारा दिन बोलते हैं, सर खपाते हैं, लोगों को बताते हैं हमें भी कुछ लगाए, तो हम ऐसे नहीं है, आप भी ऐसे नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या पैसे लेके कम्युनिटी के चेयरमैन बने हुए, कितने आपको देते हैं लोग पैसे? तो ये सब के ऊपर बात होनी चाहिए। वो बुजुर्ग आदमी, उन्होंने बात कर दी, लेकिन जिनके ऊपर उन्होंने हिंट किया उसको, उनको मैं समझ गया हूँ, लेकिन फिर भी हम जो उम्रशुदा लोग हैं, हमें एहतियात करनी चाहिए कि हमारी जो स्लिप ऑफ टंग होती है, हमें इस तरह की बात करने से पहले ये सोचना चाहिए कि इस तरीके से कोई महाज राय ना खड़ी हो जाए। तो बाकी आगा नदीम ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, और आपका प्रोग्राम जो था और आपके जो सवाल थे वो बड़े सख्त थे, हाशिम से भी और सिकंदर से भी, और ये चीजें होनी चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि जिस आदमी को उन्होंने वोट दिए हैं और जिस आदमी ने बात की है। हाँ, सिकंदर ने कुछ उन लोगों का शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए था जिन्होंने जिसने जिन्हें उसको सपोर्ट किया था। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं उसका एडवाइजर था।
1: वो जिक्र करते रहते हैं कि हमारे वो साथी जो हमारे साथ रहे वो का अक्सर करते हैं ये बात।
0: नहीं, वो उनको खुल को, क्योंकि कल को इसको बारह यहाँ पे देखे, यहाँ पे सियासत वही कामयाब होगी जो यहाँ की लोकल सियासत करेगा। मैं ये आपके रेडियो की तरह से इसको बता रहा हूँ, सिकंदर को भी और दूसरों को भी, कि फलस्तीनी आपको वोट नहीं देंगे, कभी भी वोट नहीं देंगे। वो वोट देंगे डेंचो को, जिनके मुल्क में आके उन्होंने सियासी बना ली, उन्होंने एसएफ, उन्होंने अल्टरनेटिव रेडिकल वेंसा और सोशल डेमोक्रेट, इस तरह की पार्टियों को वो वोट डालते हैं। और अगर वो वोट डालते हैं तो आज कोई ऐसी बात नहीं थी कि 8-9 सीटें जो थी वो 100% निकल सकती थी। लेकिन क्या बात है कि वोट क्यों नहीं आए, वोट पड़े हैं, लेकिन जिन्होंने डाले हैं वोट, जो पार्टी उन्होंने नॉमिनेट की है, जिनको उन्होंने जिताया, आज वो कोपेनहेगन कम्यून के अंदर बैठी हुई है और वो बरमला ये कह रही है कि हमें आपका कोई एहसास नहीं। अब खा वो रेडिकल वेंसा हो या वो एसएफ हो, खा वो सोशल डेमोक्रेट हो, खा वो मॉडरेट हो, खा वो अल्टरनेटिव हो, खा कोई भी, वो कोई भी ये नहीं कह रहा कि मैंने खड़ा होकर बजट के दौरान या इसके दौरान ये बात की है कि यहाँ के जो स्वेग जिसको कहते हैं, यानी कि सबसे कमजोर तबका जो है उसकी कोई मदद करो। नहीं, यहाँ पे इस वक्त मोर देन 50,000 से भी ज्यादा लोग जो है कोपेनहेगन के अंदर वो फ्रेडरिकम गांसे में रह रहे हैं, जो 3-4 हजार करोड़ जो है उसके अंदर सारे हौसलाए हर चीज दे के 3-4-5 हजार करोड़ में कौन सी फैमिली है जो सरवाइव करती है पूरे महीने में। अगर ये अफगानियों की और ये फलस्तीनियों की और ये अरबों के ये बड़ी बड़ी फ्रूट मार्केट ना हो जहाँ आप देख सकते हैं डेनिस भी जा रहे हैं, फॉनर भी जा रहे हैं, बाइकन, अगर ये ना हो, ये वो सस्ता माल ना बेचे तो ये कैसे सरवाइव कर सकते हैं। यहाँ पे तो हर चीज महंगी है, आप कहाँ से लाएंगे। ये चीजें जो है आपने देखनी है, इसके ऊपर कमेंट्स होते हैं, इस पे बात होती है कि आयन क्या कह रहा है। आयन कह रहा है कि यहाँ हर आदमी को जीने का हक हासिल है जो इस मुल्क के अंदर रह रहा है। अगर उससे कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, गलती किसको कहते हैं, एक्सीडेंट, हादसा, अगर किसी से कोई गलती हो जाती है, हादसा हो जाता है, तो आप उसको उस तराजू में ना तोलेंगे, ये क्रिमिनल हो गया, इसने ये जानबूझ के किया। नहीं, आपको पूरी चीज, जब हम लोग 1970s में यहाँ आए थे तो यहाँ का आयन क्या कहता था, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता था, वो कहता था कि अगर आपसे कोई गलती होगी या आप जेल में चले गए हैं तो आप बाहर आए हैं तो आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपने चोरी की है, क्योंकि आपने सजा काट ली है। अगर आपने जुर्माना पे कर दिया है तो वो उस जुर्माने को आप पे करके तो आप बरी हो गए हैं। आपको जॉब पे भी कोई जो है वो ये नहीं कह सकता कि तुम चोर हो, तुम ये हो, वो है। अब क्या होता है, अब आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, अब आपको खुदा न खासा आपसे कोई गलती हो जाती है, उस गलती की सजा जो है बच्चों को इस तरीके से दी जा रही है कि वो मजबूर हो गए हैं, कि वो कहते हैं कि मैं अगर किसी को गाली दे रहा हूं तो मुझे गाली देने पे भी 6 माह की सजा है या 1.5 साल की सजा है, तो या किसी के ऊपर मैं थूकूंगा या किसी को मैं 5 फिंगर आगे करूंगा उसकी भी सजा उतनी है, तो इससे बेहतर है कि मैं इसका सर फाड़ दूं। और ये गलत चीज है, ये है ही इंसानी तौर पर गलत है कि आप किसी के साथ झगड़ा करें, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी से इस तरह झगड़ा हो जाता है तो ये
1: चलते आपसे सवाल रह जाएगा। शाह साहब, स्वीडन में इलेक्शन हो रहे हैं, आपको पता है कि पुल है, पुल 25-30 मिनट लगते हैं, एकदम इधर चला जाता है, एकदम उधर आ जाता है, लोग यहाँ से जाकर वहाँ काम करते हैं, वहाँ से आकर यहाँ काम करते हैं, दोनों तरफ चूँकि ड्यूल नेशनलिटी है, दोनों तरफ वोट देने का हक हासिल है। स्वीडन के इलेक्शन को, खासकर मालमो के इलेक्शन को आप किस तरह देख रहे हैं?
0: मुझे लग रहा है कि जो हमारे दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, वो आपके रेडियो पे भी आते हैं, और मुझे जो मेरा सियासी तजिया है कि वो बिल्कुल जीतेंगे और बिल्कुल मैदान में आएंगे। इसी तरीके से जो हमारे स्टॉकहोल्म से भी खड़े हैं कैंडिडेट्स, उनमें भी से एक दो जो है वो नाम निकालेगा, आगे आएगा, क्योंकि अब लोगों को समझ आ गई है कि जो लोग वाकई काम करते हैं, जो लोग बोलते हैं, जो जाकर अपनी पोजीशन बाजा करते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे पोजीशन बाजा नहीं होती, हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है वो बहुत गलत है। हम ये चाहते हैं कि हम धारे में बैठ जाएं, एक चौकड़ी बांध के बैठ जाएं, अपने रिश्तेदारों को, अपने बिरादरी को, अपने दोस्तों को, बिरादरियों को इकट्ठा करके उनसे वोट ले लें, फिर उनको ये नहीं बताते कि हम आपके लिए क्या करेंगे। और ये चीजें जो है बाद में जो है वो नया कैंडिडेट आ जाता है।
1: आप शाह साहब थोड़ी सी रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ा सा हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, दोबारा आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं।
0: ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।
1: सब नाजरीन हम 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं और आपको एक खूबसूरत सी नाच सुनाते हैं, दोबारा शामिल होते हैं प्रोग्राम में।
2: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
3: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: साहब, मैंने इसके ऊपर इसलिए बात नहीं की क्योंकि ये अब केस जो है ये अदालत में चला गया है और अदालत इसका फैसला करेगी। वो बंदा जो है उसको पुलिस ने बकायदा अदालत में केस बनाकर भेज दिया है और वो पकड़ा गया हुआ है और उसके ऊपर जो केस बन गया इससे ये, क्योंकि अब अदालत में केस है तो इसके ऊपर
1: हम डिबेट
0: नहीं कर सकते। और जो जो चीज जो इदनान ने बात अपना शायद ने बात की है ये बहुत अच्छी बात है। ये हम अरसा दराज से इस रेडियो पे कह रहे हैं कि यहाँ पे एजेंसियां जो हैं वो जो है डेमोक्रेसी चलाती हैं। यहाँ पे देखें सबसे पहले हाजी साहब, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, आप ये हिसाब लगाएं कि जब 70s में हम आए थे हमारे पास कुछ नहीं था, इन्होंने हमें माँ के घर में जैसे बच्चा जाता है भूखा होता है प्यासा होता है तो माँ उसको सब कुछ देती है, तो डेंशो ने हमें हाथ खोलकर यहाँ पे हर जगह रखी, हमने मेहनत की, काम की, अपने नाम बनाए। अब जब यहाँ पे बहुत ज्यादा 90s में फ्लुतनिंग आनी शुरू हुई तो मैंने उस वक्त आवाज उठाई थी अपने प्लेटफॉर्मों पे, पाकिस्तानी पे भी और दूसरों पे भी, कि खुदा रहा ये जो फ्लुतनिंग और इन वन द लॉ है इसको ये इकट्ठा कर रहे हैं तो इसको इकट्ठा ना होने दे, फ्लुतनिंग कानून रहना चाहिए और इन वादा का कानून जो है इसको लादा रहना चाहिए क्योंकि ये आयन के खिलाफ है। तो इन्होंने कहा कि ये बंदा क्या बातें कर रहा है, इसको तो पता ही नहीं, ये तो ऐसे बोतरी मार रहा है। तो मैं खामोश हो गया। आज उसका रिजल्ट हमारे सामने है। मैं सबसे पहले इसी रेडियो पे खुद अपने आप को कहता हूँ कि सबसे बड़ा राशिस्ट मैं हूँ। जब मैं अपनी बिरादरी को, अपने ये जो 5-7 बैठे हूँ, मैं इनको अपने बराबर के हकूक नहीं देता तो मैं गोरों को कैसे कहूंगा। मैं आज भी आपको ये बता दूं कि डेनमार्क के अंदर, स्वीडन के अंदर जो सही मुसलमान हैं, जो काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल उनकी तरह है, वो 99% ज्यादा महफूज हैं बनस्बत उनके के जो खुद पंगा लेके तो अपने हालात को खुद खराब करते हैं। मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज का जो इलेक्शन होने जा रहा है इस पे हमारे लोगों को एहसास करना चाहिए कि आखिरी वोट भी इतना कीमती है कि अगर वो नहीं डालेगा, देखे ये जो काउंसलर नौजवान लड़के खड़े हुए हैं ये किसी के मोहताज नहीं, ये सिर्फ आपको ये दावत दे रहे हैं कि आपका नाम आ जाए लिस्ट के ऊपर कि आप इस मुल्क के अंदर जहां रहते हैं किसी भी इलाके में रह रहे हैं तो आपको इंटरवेंशन के अंदर आपका नाम आ जाएगा कि आपने यहाँ पे आके अपने वोट का इस्तेमाल किया, आपने बेशक किसी मुखालिफ पार्टी को दे दे, किसी और को दे दे, लेकिन जब आपका वोट कट जाएगा, आप वोट डालेंगे तो वो ये कहेंगे कि ये हमारी मुल्क के अंदर दिलचस्पी ले रहा है और इससे जो है आपके हुकूक। अब डेनमार्क के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे 61-62% बंदे जो है वो कहते हैं छोड़ो पर आप पाकिस्तान चलिए और चलो जी छुट्टियां दे चलिए खसमा खाए, तो इस तरह वो जो होता है वो मनफी रवैया अख्तियार किया जाता है। जिनको जो पार्टी हमारे खिलाफ है वो इनको कैश करवाती है, वो कहते हैं ये लोग इंटरग्रेट नहीं होंगे, ये लोग तो कहते हैं कि वोट ना डालो, इसमें तरीक को ले आएंगे, दूसरी पार्टियों को ले आएंगे और फिर ये जो जो सब्जेक्ट बन जाता है जैसे शायद ने अभी कहा कि मुसलमानों के खिलाफ। देखिए 99% मुसलमान ऐसे नहीं, बड़े बड़े आला पोस्टों पे स्वीडन में भी बैठे हैं, वहां पे सिक्योरिटी की सबसे बड़ी जो है वो पाकिस्तानी है, इसी तरीके से डेनमार्क के अंदर ISR से लेके हर जगह पे ऊंची ऊंची पोस्टों पे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, मुसलमान बैठे हुए हैं, लेकिन उनका एहतराम जो है हर जगह होता है। तो लिहाजा मैं तो इतनी बात करूंगा कि हाजी साहब अगर मैं आपकी इज्जत नहीं कर सकता तो मुझसे बड़ा राशिस्ट कोई है ही नहीं, मुझे दूसरों पर तनकीद करने की जरूरत नहीं है,
1: करने का कोई हक ही नहीं पहुंचता। नईम साहब आपकी तरफ आते हैं, नईम साहब आपकी हमें मिला, आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ, अच्छे लोग मिले, आपने मेज़बानी की, वहाँ लोग मुख्तलिफ नज़रियात के थे, मुख्तलिफ पार्टी की सोच रखने वाले थे लेकिन सारे पढ़े लिखे थे, वहाँ तो मुझे कोई पार्टी सियासत नज़र नहीं आई, वहाँ तो स्वीडन की सियासत नज़र आई। अगर इस तरह के लोग कम्यूनिटी में मौजूद होते हैं तो कुछ अनासर होते हैं, शायद ने देखे बातें की, सब तारीफ़ कर रहे हैं, शायद की अदनान की तारीफ कर रहे हैं, अजी साहब की कर रहे हैं, शाह साहब की कर रहे हैं, जब इन नजरियात के लोग मौजूद हैं तो फिर हमारे लोगों में कौन चीजें ये डाल देता है?
2: बरादरियां,
3: असल में ये जो स्वीडन का महले वकू है इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तानी ही पाकिस्तानियों के या फॉरनर

0: फार्मर के दुश्मन है, कोई और नहीं है। जब हमारा जो जो हमारे प्लेटफॉर्म है, जैसे कोई सोसाइटी हो गई, कोई और ग्रुप हो गया, कोई नाथ ग्रुप हो गया, कोई ये इस्लामी ग्रुप हो गया, मिनाजुल कुरान हो गई, जब हम उसमें तफरके डालने शुरू कर देते हैं कि ये एक हम ब्लॉग बना लेते हैं, कोई ग्रीन पगड़ियों वाला आ गया, कोई और पाकिस्तानियों ने कोई और इस तरह की सोसाइटियां बना ली, तो कोई हम सियासत में आ गए, मुख्तलिफ सियासी पार्टियां। यहाँ पर हमें कभी भी इलेक्शन में आके पाकिस्तान की सियासत को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए। जब यहाँ पर इलेक्शन हो, सबसे जरूरी बात सोचनी चाहिए कि हम पाकिस्तान में नहीं बैठे हुए, हम स्वीडन में बैठे हुए हैं, और हमें स्वीडन या डेनमार्क यहाँ की सियासत के ऊपर बात करनी चाहिए, ना कि हम पाकिस्तान स्वीडन का इलेक्शन हो या डेनमार्क का इलेक्शन हो तो हम अपने मुल्क की पार्टियों को यहाँ पर रो रहे हो। हमें उनको बिल्कुल, आप किसी भी पार्टी से मुंसलिक हो सकते हैं, लेकिन उनका इनके साथ तल्लक नहीं जोड़ना चाहिए। और जो इलेक्शन पे भी खड़े हों उनको भी यही समझना चाहिए, ये हमारे पाकिस्तानी भाई इलेक्शन करे हैं, इनको हमने सपोर्ट करनी है। जब इनको सपोर्ट करेंगे तो हमारी प्रेजेंटेशन होगी। अब जो जैसे वो इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर वाकई अभी ये कौन सा हमारे बुजुर्ग फरमा रहे थे, वो बड़े अच्छी बात कर रहे थे कि यहाँ पर देखें बड़े बड़े ओहदों पे मालमों में पाकिस्तानी लोग, अरबी लोग फायज हैं माशाल्लाह, जिनकी तनख्वाह 1 लाख से 2 लाख करोड़ है पर मंथ। तो वो मतलब वो कम्यून के जो फाइनेंस की जो चीफ है, वो भी एक अरबी लड़की है। तो मतलब कि यहाँ पर हैं बहुत सारे लोग हैं, बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो इसमें आए हुए हैं। तो इसका मतलब हमें जगह मिलती है, लेकिन जरूरत एक बात इस बात की है कि हम लोग इकट्ठे रहें, एक दूसरे को समझें, हम यहाँ की सियासत को समझें, अपने बच्चों को यहाँ की सियासत के अंदर लाएं, और हम इंटीग्रेट इस सिस्टम में हों, ना कि इंटीग्रेट हों यहाँ पे, सोच हमारी पाकिस्तान में मेंटली तौर पर रहें और पाकिस्तान की सियासत को यहाँ पर घसीटते रहें। आप सपोर्ट करें, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, लेकिन यहाँ कोई जो है ना सियासत, उसको भी समझने की कोशिश करें। और यहाँ पर देखें जितना भी माहौल है, अब जो नए लोग आए हैं इस इलेक्शन में, वो काफी इंटीग्रेट हुए हैं, उनको काफी हद तक लोगों ने बताया, समझाया है, लोगों को पता चला है कि यहाँ पर अगर हम सियासत में नहीं आएंगे, हम वोट नहीं देंगे, तो ये मुस्तकबिल हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला होप और पॉजिटिव रखनी चाहिए, और जितने
1: बड़ी
0: भी
1: अच्छी
0: लोग
1: बात
0: रह
1: की
0: गए
1: नईम साहब,
0: इलेक्शन
1: मैं चलता हूँ। अदनान, आपने सबकी बातें सुनी, चूंकि आप यहाँ की हुकूमती जमात के मेंबर हैं, इन चीज़ों को आपने देखा, तो आप क्या कहेंगे? अदनान, आपको आवाज़ आ रही है? चलें, शायद आप बात करें आखिर में।
2: जी राजा साहब, मैं इस जो इलेक्शन हो रहे हैं इसके हवाले से बात करूंगा। इसमें सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पर मैंने जो देखा है, स्कैंडिनेवियन जो मुल्क हैं इनमें खासकर देखा है, मैं इसके अंदर चले यूरोप में दूसरे ममालिक में, इंग्लैंड भी इंग्लैंड इंग्लैंड को भी शामिल कर लेता हूँ, क्योंकि वो भी उधर से भी मेरा है वास्ता, मेरे भाई हैं उधर। तो तीन किस्म के वोटर होते हैं इधर। एक जो पहला जो 4 साल जो है ना इस सियासत को फॉलो करता रहता है, पूरी जो सियासत चल रही होती है अपने उस मुल्क के अंदर पार्टियों की। और दूसरा जो वोटर है, वो जो नंबर दो जो वोटर होता है, वो बहुत कम फॉलो करता है, वो अपने रोजमर्रा के कामों में बहुत ज्यादा मसरूफ होता है लेकिन फॉलो करता है, लेकिन बहुत कम, ना होने के बराबर। तीसरा जो वोटर है ना, वो है सबसे खतरनाक इधर, और वो होता है जिसे कहते हैं कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का शिकार। और वो जब किसी महफिल में बैठता है, ये भी लोग बैठते हैं महफिल में, आपसे आपके साथ भी बैठते हैं, दूसरे फॉरनर्स के साथ भी बैठते हैं, बातें करते हैं, आपस में भी बैठते हैं, तो उसमें वो यही बातें छते जब चलती हैं बैक चैनल जब बैठते हैं, तो उसमें यही कहते हैं कि नौ यश के एक की मीन यानी कि मैंने अपना जो वोट है यश के एक तील से मैं पी ए खैश को क्या कहते हैं इधर जेमी आकर्षण को तो कतई मैं वोट नहीं दूंगा या दूंगी। तो जिस दिन वोट होता है इनका, ये है, ये वो वोटर है जिस दिन वोटिंग होती है जिस दिन, तो वो जब घर से निकलने तक कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, जब वो जा रहे होते हैं तो वो सोच रहे होते हैं कि वीरू है यश के जीते मैं आज अपना जो वोट है वो मैं क्या कहते हैं एक विकास करूंगी, मेरा ख्याल है पी एक है को ते फ सीखिंग स्कूल, यानी कि मैं ये समझती हूँ कि इससे जो है ना हमें कोई नुकसान ना हो जाए, तो हम नुकसान से बचने के लिए हमें वो कहते हैं बचा लेंगे, तो मैं उसके हक में नहीं हूँ, या मैं नहीं समझती, या मैं नहीं समझता कि वो ठीक है, लेकिन मैं एक सेफ्टी की बुनियाद बनना आज जिमी ऑक्सन को वोट में कास्ट कर देता हूँ। ये नंबर तीसरा वोटर है यहाँ पर जो कंफ्यूजन का शिकार होता है, वो कहते हैं आहर तक, और ये भी बड़ा वो एक वो खतरनाक वोटर है। तो मैंने मैंने जो बात की इसके हवाले से क्या कहते हैं ये जो है यहाँ पर मीडिया मीडिया का किरदार, मैं इसको फिर दो टोक कहूंगा। मैंने इस मीडिया के इनके मीडिया के किरदार को खासकर मुसलमानों के ऊपर तनकीदियां बनाए तनकीद जिसे कहते हैं, वो एक इस हद तक चली जाती है। यहाँ पर जो डिबेट होती है 1.5-2 माह से बंदा हैरान रह जाता है, और वो इतनी दिल शिकनी कर देते हैं, यानी कि इस हद तक चले जाते हैं कि वो आप सोच भी नहीं सकते। आपने खुद देखा होगा कि यार ये लोग हैं वो, तो जब फिर मैं पीछे जाके फिर इनकी हिस्ट्री देखता हूँ, 200 साल पुरानी, 300 साल पुरानी, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, 1000 साल पुरानी, फिर मैं देखता हूँ 300 साल, यार ये तो वो लोग हैं जो ये अभी तक इनके जेहन से वो तकबर, इनके जेहन से वो चीजें नहीं निकली, ये तो गुलाम बना के रखते थे, ये तो ये इनकी देखें जाके इनके इनके मकरू चेहरे कि ये इतना जुल्म करते थे, ये उधर नहीं इनकी नजर पड़ती कि तुम लोग क्या करते थे, तुम लोग ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, और ये बात इनको फिर बावर करानी पड़ती है, फिर ये उसके ऊपर छुपते हैं, फिर पीछे करिए ये बात ना करें, ये एक माजी है, इसके ऊपर बात ना करें। मैं कह माजी है, माजी है, आप अभी भी मॉडर्न तरीके से इस तरह लोगों के साथ ऐसे कर रहे हैं, आप क्या करते थे, आप अफ्रीकन मुल्कों से लेके गुलाम कहाँ कहाँ नहीं आप लेके गए, अमेरिका लेके गए हैं, साउथ अमेरिका लेके गए हैं, वहां जाके आप गन्ने की काश्त से लेके क्या क्या आपने नहीं किया उनसे, कराए जुलम 200 साल तक आप जुलम कराते रहे, मिलियंस आप लेके गए, मिलियंस ही आपने मारे लोग, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आप ये बातें कर रहे हैं और अभी भी आपके अंदर इतनी वो कराहत है, इतना गुस्सा है, इतना आप ये इंसानियों को की जो बात है ना, ये उन लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती जिनके दोहरे मियार होते हैं, यही वो
1: जिनके
2: लोग
1: दोहरे
2: हैं जो
1: मियार होते
2: इंसानी
1: हैं। शायद आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। अजी साहब आप बुज़ुर्ग आदमी हैं, शाह साहब भी बुज़ुर्ग हैं, तो मैं चाहूँगा अगर कोई आप आखिर में कोई कमेंट देना चाहे तो हमारे पास 2-3 मिनट हैं। जी शे अपना हाजी साहब
3: जी, मुझे कह रहे हैं आप?
1: जी हाजी साहब आपको
3: बस मैं यही कहूंगा जी कि उन्होंने तारीख भी दोहरा दी शाहिद ने, और मैं एक बात करता हूं कि एक आदमी ने डैनिश को मशवरा दिया कि आप ऐसे कर लें, उसने कहा तुम मुझे मशवरा दोगे, हम तो तुम्हारे ऊपर हुकूमत करके आए, तुम्हारा मशवरा हम माने? ऐसा नहीं हो सकता, हम सीनियर हैं, आप दो नंबर हैं, आपका दर्जा नेशनलिटी मकान डिग्री हाई सब कुछ होने के बावजूद हम आपको ये जंग की खबर दे रहा हूं आपको मैं, कि उन्होंने कहा कि पूरे यूके में मिलियन मिलियन जो हैं मुसलमान रह रहे हैं बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान और दुनिया से, उन्होंने उनको सब कुछ हकूक देने के बावजूद उनको दर्जा दोन का शहरी समझ रखा है। शाहिद के अल्फाज की मैं तशरीह कर रहा हूँ।
1: शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। शाह साहब आप अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करें, गालिबन अदनान जो है वो सुन रहे हैं, माइक उनका काम नहीं कर रहा।
4: ये बहुत बहुत शुक्रिया सबका, और उम्मीद है कि आज अच्छा रिजल्ट आएगा और इंशाल्लाह ताला दो हमारे उम्मीदवार मालवा से कामयाब होंगे। याद रखें कि जब हम किसी महफिल में बैठते हैं तो दूसरे की तरफ देख के कहते हैं कि ये हमारे गाँव का कमी था, ये हमारे गाँव में इस तरह था, ये फलाना था, तो उससे ये होता है कि जब आप यहाँ पे अरबोंपति भी हो जाए, आपके पास रोल्स रॉयस गाड़ी भी नीचे हो जाए, तो जब आप वोट के लिए खड़े होंगे सियासत में आएंगे तो फिर वो आपकी आपके नीचे से कुर्सी जरूर खींचेगा। हमें यहाँ पे पहले सबसे पहले इंटीग्रेशन का मतलब समझना चाहिए और हर कलमा गो को अपना भाई समझना चाहिए, वह उसका किरदार कैसा भी हो उसके उसको रिस्पेक्ट देंगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, खसूसी तौर पे सियासियों को। शायद ने जैसे जिक्र किया, आप याद रखें कि जब मैं यहाँ की वेंट्रा पार्टी में 1972 में मैंने ज्वाइन की तो वहां पे सबसे ज्यादा जो फॉरनर मुझे मिले वो पोलिश और चेक रिपब्लिक और चेक स्लोवाकिया के और दूसरे कम्युनिस्ट कंट्री से आए हुए लोग थे। आपके स्वीडन में भी बहुत ज्यादा जो है वो लोग जो हैं वो रशियन कंट्री से और डीआर से और दूसरी ममालिक से वहां पे पोलिश वाला भी आके सेटल हुए हुए हैं और अब वो लगता तो स्वीडन है कि उनकी सेकंड थर्ड जनरेशन जो है या फोर्थ जनरेशन वहां पे पैदा हो चुकी है। वो लोग जो है राशिस्ट हैं, वो जो असल स्वीडिश है या असल डैनिश है वो आपसे थोड़ी सी आर्गुमेंट तो जरूर करेगा लेकिन उसके बाद अगर आप उसको देखेंगे कि आपका रवैया जो है थोड़ा सा नरम है तो वो उनस्कूल करके माफी मांग के चला जाएगा। तो ये जो सियासत है ये बड़ी बेरहम होती है, इसके लिए हमें अपना तर्ज अमल जो है वो ठीक करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, कामयाबी फिर जो है वो सच्चाई पे ही है। आप सबका शुक्रिया जी,
1: कामयाबी से चाय पिए। सब लोगों का बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने कीमती टाइम दिया, छुट्टी का दिन था और नईम साहब स्पेशली आपका रुबारी आदमी है, आपका भी जो है वो आपके भी लोग आपके पास आते हैं, आपका भी टाइम हमने लिया, शायद आपका भी टाइम लिया, अजी साहब आपका टाइम भी, शाह साहब आपका टाइम भी, तो पाकिस्तान जिंदाबाद।
4: जिंदाबाद
2: जिंदाबाद। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। सामे नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हमारे साथ अदनान अमीन अली हैं, जो कि थिंक टैंक भी हैं, तजिया भी करते हैं, एनालाइज भी करते हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, और साथ जो हैं ये अपनी पार्टी के बड़े मुतर्रक कारकुन भी हैं, और आने वाले इलेक्शनों में हिस्सा लेने की अभी से वो तैयारी कर रहे हैं, पहले भी ये ले चुके हैं हिस्सा। तो अदनान, आपको खुश आमदीद कहते हैं अदारा आपकी आवाज़ पर।
2: वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर रहमान, कैसे हैं आप?
1: अल्लाह का शुक्र है। अदनान, आपसे जानना चाहेंगे कि आज के ताज़ा तीन हालात के हैं, सियासी हालात हैं, बड़ी खबरें हैं, बड़ी अखबारात में खबरें और सुर्खियां आ रही हैं, तो आज के हालात को किस तरह देख रहे हैं आप?
2: सर, सबसे पहले तो बात यह है कि आज की जो सबसे अनफॉर्चुनेटली एक खबर है वो है हमारे भाई सिकंदर सदीकी साहब, जो इलेक्शन लड़े थे पिछले साल कोपेनहेगन के लोकल इलेक्शन, उनको आज टिकचर से उनका केस चल रहा था कि वो सही तरीके से नहीं लड़े क्योंकि उनकी रास की मसला था। तो उनने अपना केस पिछले में भेजा हुआ था और उनने आज कोपेनहेगन कमून को कहा है कि आप इस मामले में सच्चे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको एक किस्म का डिस्क्वालिफिकेशन मिल गई है।
1: तो इसका मतलब है कि अशम आगा जो है उनकी सीट पर आ जाएंगे या दोबारा इलेक्शन होगा?
2: सब ये तो एक वो तो उसकी सीट पे आ जाएंगे, मगर मसला ये है कि पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं चाहती कि दोबारा इलेक्शन हो, मगर जो डेनमार्क एक्सपर्ट्स हैं और कुछ हैं उनने रफड़ डाला हुआ है कि दोबारा इलेक्शन होना चाहिए क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं सही नहीं थी और बेस सही नहीं था। मगर उसका फायदा तो कोई नहीं है क्योंकि एक सीट के पीछे आप इलेक्शन कराना चाहेंगे कि पूरा इलेक्शन कराना चाहेंगे, तो ये इसका कोई क्या कहते हैं नतीजा नहीं है। तो यही बनेगा आखिर में, यही मेरे ख्याल से होगा कि हाशम जो है उसको सीट मिल जाएगी और फिर क्या कहते हैं वो भाई कौन पच्ची को अस्पिछया करेगा जो अगले 3 साल होंगे ना नेक्स्ट इलेक्शन तक, यही इसका नतीजा आ रहा है। और जो सिकंदर भाई हैं वो फिर अब पार्टी के अंदर अपनी को बिल्डअप करेंगे और डेफिनेटली पार्लियामेंट के इलेक्शन, रीजन के इलेक्शन, कमून के इलेक्शन, उसकी तैयारी और उसकी प्रिपरेशन में करेंगे और यही कर सकते हैं वो और आशम और अपनी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं।
1: मतलब उनके पास खुला टाइम होगा, आने वाले इलेक्शन को फोकस करेंगे?
2: मेरे ख्याल से तो यही करेंगे और इस चीज को क्या कहते हैं देखेंगे, बाकी अपनी उनकी अपनी राय है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते, ये तो अब उनकी लीगली टीम और वो सोचेंगे, मगर ये खबर तो यही है कि उनने अपनी फैसला यही किया कि वो कोर्ट में नहीं जाना चाहते क्योंकि वो बहुत बहुत सारा टाइम लगेगा और हो सकता है वो अगले इलेक्शन तक क्या कहते हैं फैसला ना आए। तो
1: फिर ये तो फ्री करोने को ये ठीक है, ये अखबारी अखबारात में या कानूनी पेचीदगियाँ जो वो तो साथ साथ चलती रहती हैं, चलती भी रहेंगी आने वाले वक्तों में भी, लेकिन अगर इनकी सीट ज़ाया नहीं हुई तो फ्री करोने के पास एक सीट जो है वो अभी भी है, स्टिल है।
2: जी जी जी, वो तो है, मगर वो ये है ना कि देखा जाए तो इसके पहले से ये भी तो है ना कि लोग ये भी तो कह रहे हैं ना कि इसको अब जो इसको 7-8 महीने पे मिली है वो भी इसको वापस करनी चाहिए क्योंकि उसका हकदार नहीं था, तो काफी क्या कहते हैं।
1: लेकिन अगर फिर ये देखा जाए, ये तो मेरे ख्याल एक लाजानी सी बात है, एक बंदा इजलास अटेंड कर रहा है तो जब आप मजदूरी अपनी पूरी करते हैं तो आपको मजदूर का आपके घर करेगा तो आप पूरी उसको मजदूरी देते हैं, ये नहीं कहते कि वो जो आया था कैसे आया था क्यों आया था।
2: वो देखिए ना सब वो पितावी में भी आ रहा है ना, तो बहुत कुछ आ रहा है, तो अभी तो क्या कहते हैं देखा जाए
1: इसका मतलब ये कानूनी जंग खत्म नहीं होगी।
2: जो कानूनी जंग खत्म हो जाएगी क्योंकि ज्यादातर पार्टी ने ही फैसला किया कि अब इसको अब जब इसने फैसला
1: कर दिया जाएगा
2: हाँ कि ये कोर्ट में नहीं जा रहा तो हम इस केस को अभी तो खत्म करें और क्या कहते हैं आगे आगे बड़े जरूरी काम है उन पर फोकस करें, इसकी जरूरत तो नहीं ना कि
1: जरूरत नहीं।
2: इस
1: चले,
2: बात
1: ये
2: से
1: तो बड़ा
2: लड़ते
1: अच्छा
2: रहेंगे
1: किया आपने
2: तस्वीर।
1: बता दिया अदनान। बाकी बजट की बात है, आप ही कमोर को बजट को देख रहे हैं, आप भी काफ़ी चीज़ों का हिस्सा रहते हैं, देखते रहते हैं, पता भी चलता रहता है। कोपरागन कम्यून का बजट भी जो है, तो उसको भी थोड़ी सी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में आपके पास खबर है तो शेयर करें, क्या मिलने जा रहा है जो है ना लोगों को, आम शहरियों को क्या मिलने जा रहा है, कि यही नहीं है जी हमारा बजट नहीं पूरा होता,
2: वो तो
1: अब कहाँ
2: देखा
1: से
2: जाए ना,
1: इनकम आएगी।
2: वो तो अपने अपने कमून के अंदर जो मान गए हैं वही करती हैं। अभी तक तो कोपरेगन कमून ने क्या कहते हैं अपना अपना क्या कहते हैं बजट की पुली कर ली है, और ये सितंबर के एंड की और फर्स्ट वीक के वीक जो अक्टूबर की आएगी उसमें वो अपनी अप्रूवल भी करा लेंगे। बाकी मेरे ख्याल से दूसरे कुछ कमूनों के भी बनते जा रहे हैं, उन्होंने भी अपना बना लिया है, एब्सलो ने भी नेगोशिएशन चल रही है, तो कमिंग डेज में पता चलेगा। कल इनकी जो मीटिंग होती है मंथली, वो मीटिंग भी हुई थी, वहां पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने डेमोन्स्ट्रेशन भी किए हैं, तो ये चीजें क्या कहते हैं चलती रहेंगी। और इसके साथ साथ नेशनल बजट भी जो है वो भी शुरू हुआ हुआ है, तो फिर काफी चीजें क्या कहते हैं चल रही हैं इस वक्त, और कमिंग डेज में पता चलेगा क्या बेहतर हुआ क्या नहीं बेहतर हुआ। नहीं राजा साहब, मेरे पास उसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, यही मुझे पता है कि नमस्ते इंडिया उन्होंने 6 सितंबर वाले दिन अपना प्रोग्राम किया हाउस प्लेस पे टाउन हॉल के सामने, और उसके अंदर इंडियन एम्बेसी उनके साथ थी, और उसमें उन्होंने क्या कहते हैं प्रॉपर्टी अपना पूरा कल्चर बताने की कोशिश की है, और क्या कहते हैं देखा जाए तो ये उनका क्या कहते हैं अपना तरीका था और अपना वेरियर था। होपफुली हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी भी क्या कहते हैं इससे कुछ सीखे और इस तरह के कुछ इवेंट कराने की कोशिश करे कि पाकिस्तान को भी क्या कहते हैं प्रेजेंट किया जाए, पाकिस्तान के बारे में भी शो किया जाए। कोशिश तो की गई थी मगर वो इतनी कोऑपरेटिंग स्टाइल से नहीं था, अनफॉर्चुनेटली हमारे एम्बेसडर को ज़्यादा कहते हैं उस वक्त भी फोर्सेस एक्शन का ज़्यादा शौक था, ये नहीं था पता कि यहाँ पे पाकिस्तानियों को जितना प्रेजेंट किया जाएगा और जितना पाकिस्तान को पेश करेंगे उस नतीजे से ही क्या कहते हैं फायदा होगा। और लेट्स होप के फ्यूचर में भी जो एम्बेसडर पाकिस्तान से आए वो इस बात फोकस करे कि हम भी कोई इस तरह का इन्वेंट कर सकें जिसमें एम्बेसी थोड़ा बहुत स्पॉन्सर करे कि पाकिस्तान की क्या कहते हैं व्यूअर और वेयर जो है वो बेहतर किया जाए।
1: बात आपकी बात में वजन है, लेकिन जो हम इवेंट्स वगैरह कराते हैं, फेस्टिवल वगैरह कराते हैं, बेसिकली ये फंड रेजिंग की तरफ जो है वो चीज़ें चल पड़ती हैं, वो मकासद जो होते हैं कि वो सारे फोत हो जाते हैं। अगर ये फंड रेजिंग में स्टाल ही लगाने हैं तो स्टालों को लाकर जो है वो व्यूअर्स को भी बुलाना है, लोगों को भी बुलाना है, पार्किंग के मसाइल होंगे, फिर दिन का मकसद तो ख़त्म हो जाता है।
2: सब देखें जिस तरह से इनने टाउन हॉल पे किया है ना, उस तरह से देखा जाए ना तो आप देखें कि पिछले करीबन 10 सालों में कितने इंडियन आ गए हैं, और जब इंडियन कम्युनिटी एक क्या कहते हैं उनकी तादाद ज्यादा हो गई है तो उन्होंने फिर सोचा कि हम अपने कल्चर को भी किसी तरह की कहते हैं रेस्पेक्ट करें। इंशाल्लाह कोशिश की गई थी इस साल पाकिस्तानी एम्बेसी से भी, मगर मुझे नहीं पता कि उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है फॉरन मिनिस्ट्री को पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जितना ज्यादा ये पाकिस्तानी अपने कल्चर को रेस्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा ही फायदा होगा। जैसा आपको मालूम होगा कि इस वक्त पाकिस्तानियों को वीजा लेने की बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि अभी तक हम कैटेगरी 5 के अंदर ही हैं और कैटेगरी 5 के अंदर से बाहर नहीं निकले, तो इसके लिए हमने काम
1: तो
2: करना है। तो
1: यहाँ जो फोनिंग्स होती हैं, तंजीमात होती हैं, या डेमोक्रेट मुल्क है, यहाँ से तो हकूक के लिए लोग बाहर निकलते हैं, आप भी जाते रहते हैं, हम भी देखते रहते हैं कि लोग जाते हैं पार्लियामेंट के सामने भी अपने हक मांगते हैं, टाउन हॉल के सामने भी जाते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। आप मुझे बताएं कि आप ज़्यादा चूँकि इन चीज़ों में एक्टिव है, پچھلے کتنے عرصے سے آپ کو اگر کوئی یاد ہو کوئی ایک آدھ مثال ہو کہ غیر ملکی اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے ہیں؟
2: یار صاحب دیکھیں غیر ملکی نکلتے تو ہیں نا, اب دیکھیں پرسوں چوتھے نہیں دو تین دن پہلے جیسے یہ میں نے آپ کے پلیٹ فارم سے ہی کہا تھا کہ 5 ستمبر کو ایک اینٹی اسلامی ڈیمونسٹریشن بہت بڑا ہوا ہے, اتنا بڑا تو نہیں ہوا مگر انہوں نے پوری پاپولرشپ سے کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ ٹیرس پارٹیاں ہیں جن نے اس چیز کو کنڈیم کیا ہے کیونکہ وہ ناظم اسم تھا اور اس طرح کی چیزیں تھیں. پاکستانی باہر نکلتے ہیں اپنے ڈیمونسٹریشن کے لیے بھی نکلتے ہیں مگر اس وقت مسائل یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر دنیا مسائل اتنے زیادہ بن چکے ہوئے ہیں کہ جب ایک بات کو کریٹیسائز نہیں کرنا چاہیے مگر انسان کو سوچ سمجھ کے اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے. ایک پروونس کا اسٹیٹمنٹ دیکھے اور وہ ڈیوائڈ کرنا جو ہے نا اس وقت ختم ہوگا ادھر بھی اور پاکستان میں بھی جب سب ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور فیئرنس ایک ملک میں آئے گا. جتنی دیر تک یہ چیزیں نہیں نہ ہوں گی اتنی دیر تک ہمیں مسائل ہمارے ملک میں بھی رہیں گے اور یہاں پہ بھی رہیں گے.
1: عدنان دیکھیں نا مثال کے طور پر یہ ہم مثال دے رہے ہیں کسی کی بات نہیں کر رہے, اگر کسی ایونٹ میں اسکریمیں جو 80,000 کی 90,000 کی بک جائیں اور دوسری طرف آپ نے یہ کہا جی کہ یہ جو اپنا کیٹاگری جو ہے 5 والا جو ہے یا کون سی کیٹاگری والا معاملہ ہے ویزوں کا معاملہ ہے, اس معاملے میں اگر لوگ سب مل جل کر اس کے لیے آپ جیسے لوگ جو ہیں اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں کہ دیکھیں یہ جمہوری ملک ہے آپ کو حقوق اپنے جمہوری طریقے سے ملیں گے, گھر میں بیٹھ کر یا شغل شغل کر کے میلہ کر کے پاکستانی سیاست کر کے یہاں ڈنمارک میں رہتے ہوئے ڈینش پاسپورٹ جیب میں ڈالتے ہوئے ہمیں سیاست کرتے بھی بہت وقت سوچنا چاہیے, لیکن ڈیفینیٹ جو بندے آئے ہیں اپنا پیارا وطن تو ہر کسی کو پیارا ہوتا ہے, محبت ایک جیسی سب کو ہوتی ہے, اس میں کوئی کسی کو یہ نہ کہے مجھے زیادہ پاکستان سے محبت ہے یا دوسرے کو زیادہ محبت ہے, سب کو محبت ہوتی ہے. لیکن اب یہ چوتھی جنریشن جا رہی ہے اس کی بھی محبت بھی اس کے ملک کے ساتھ ہے.
2: سب دیکھیں کہ دو جگہ پہ دیکھیں آپ نے جو کیٹیگری 5 کی مسائل دی ہے نا, مجھے پتا ہے کہ اس وقت بڑی کیا کہتے ہیں لوگوں کو, آج میری ایک جگہ ایک بات ہوئی تو اس نے بھی یہی کہا کہتے دیکھ ہم نے اپنے فوٹ یہ جس کو ہم ابھی بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ ڈسکوالیفیکیشن میں کہتے ہم نے فوٹ واپس بیک کر لیا. میں نے کہا دیکھ وہ کچھ مسائل کی وجہ سے پاکستانی گورنمنٹ کی وجہ سے, میں ان کا مسئلہ پتا کیا ہوتا ہے, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے نا وہ بیسیکلی فرنٹ پیج سے انہوں نے چیزیں دیکھی ہوں, انہوں نے اندر سے نہ دیکھا ہو کہ کیا ہے. اور میں نے کہا مجھے تو نہیں نہ پتا کہ یہاں کی جو پاکستان کی امبیسی ہے وہ بندے کے بارے میں کون سی انفارمیشن پاکستان بھیجتی ہے, یا وہ بھیجتی بھی ہے کہ نہیں, ان کے اپنے ریسپڈینٹ آتے ہیں تو یہ ہے. یہاں کی جو نئی جنریشنس ہیں ان کو پتا ہے کہ مسائل ہیں یہاں پہ, یہاں کی کون سی پرابلمس ہیں اور کون سی چیزیں ہیں. آج ایک جیسے یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو آج کل زیادہ ہیلسنگ مسجد کے بارے میں بات چال چل رہی تھی, آج پھر یہ سکندر بھائی کی بات چل گئی, پھر کچھ اور باتیں چلتی ہیں, تو یہ مسائلوں کا سب کو پتہ ہوتا ہے, بس یہ ہوتا ہے کہ مل کے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور آپ نے کسی نکلنے تو پھر آپ کو طور طریقے سے نکلنا پڑتا.
1: ظاہر ہے یہاں کا قانون قاعدہ جو ہوتا ہے جو اس کو لے کر چلنا ہوتا ہے, میری پسند یا دوسرے کی پسند ناپسند تو نہیں ہو سکتی, یہاں تو جمہوری طریقہ ہے, جتنے لوگ جو آئیں گے ووٹ ڈالیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا, جتنے لوگ جو ہے وہ جینون ڈیمونسٹریشن پر آئیں گے اتنا زیادہ ان کی بات سنی جائے گی.
2: یہ آپ کی بات صحیح ہے. اب دیکھیں نا کوئی غصہ کرے نہ کرے, میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو ایک سال پہلے کہا تھا کہ الیکشن بھی بہت زیادہ اسلام اور مسلمان پہ آئے گا, اور آہستہ آہستہ آپ چیزیں دیکھنا کہ کچھ چیزیں ٹف ہوں گی. آپ کے سامنے ہے کہ کچھ چیزیں تو الیکشن بھی بڑا ٹف آیا تھا, آپ نے ہیلسنگ میں بھی دیکھ لیا کیا ہو گیا ہے, اور چیزوں میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. یہ 5 ستمبر کو جو ڈیمونسٹریشن ہوا, اللہ کا شکر ہے ڈینمارک کے اندر دو بگ پارٹیاں ونستا اور کنزرویٹو نے اس چیز کو کنڈیم کیا ہے, مگر اس پہ ہم کو بھی فرنٹ پیج پہ آنا چاہیے. کچھ لوگ ہمارے آئے ہیں, انہوں نے لکھا بھی ہے اور اس کے خلاف بھی لکھا ہے, और कुछ स्टेटमेंट पे लिखा हुआ है। जैसे मैंने फेसबुक पे लिखा था, आज एक बंदे ने बड़ा अच्छा जवाब मुझे दिया हेल्थ के मामले पे, कहता है बात तो तुमने सही की है, मसला ये है कि ये तो कोर्ट में जाएगा। मैंने कहा ये तो डेफिनेटली कोर्ट में जाएगा, क्योंकि आप एक परमिशन लेके कह रहे हैं। मैंने कहा कि ये कह रहे थे कि कल्चर हाउस हम बना रहे हैं, मैंने कहा आपने इजाजत दे देनी थी, इन्हें कल्चर हाउस बना लेना था, बस फर्क ये रहना था कि इन्हें कल्चर हाउस बना लेना था, मगर जिस जगह से आप बैंड कर रहे थे वो फिर प्रॉब्लम तो उसको करानी थी। अब इन्हें आपसे सच बोला, आपने इनसे ज्यादती की है, तो बात इन्हें मस्जिद कह दिए तो नहीं बनाना, मसला कोई है नहीं है। जिसके साथ मसला था वो एक स्पार है उधर कुछ स्टोर है, उसने मसला डाला हुआ था, वो भी उसकी भी आज सच का नहीं निकला ये कि उसकी पार्किंग के अंदर 4 से 5 ज्यादा गाड़ियां खड़ी होती एक टाइम पे। मुझे तो पता ही नहीं कि उसको मुसीबत क्या थी और उसने इतना बड़ा क्या कहते हैं इस तरह की हरकत क्यों की है, ये तो किसी को समझ नहीं आ रही।
1: अदनान देखे ना, किसी की पार्किंग में गाड़ी करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि इतनी घर बात पे दाव लगा के जो है वो कानून को बाईपास करके आगे बढ़ा जाए, ये भी तो कोई तरीका नहीं है, खुद भी तो कोई बंदे को एटिकेट्स होने चाहिए।
2: देखिए राजा साहब, बंदा देखे कुछ 1 में से 20 होते हैं जो जो होते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अब्दुल का मुंबई रहता हूँ, यहाँ पे एक मैं उसका टेक्निकली मैं बताता हूँ उसका मिसाइल का था। उसकी एक मसला था कि 72% वो क्या कहते हैं गैर मुल्कियों पे जा रहे थे और 38% जा रहे थे गोरों पे। मगर जब हमने देखा ना कि दूसरी जगह जहाँ पे वो मिसाइल के लिए प्रॉब्लम के लिए जहाँ पे वो जा रहे हैं वहां पे हमारे पास जगह नहीं उसके लिए, तो फिर जब हमने एनालाइज किया ना तो वो ये कह रहा था देखिए हम गैर मुल्कियों का केस बहुत जल्दी ले लेते हैं और गोरों का केस हम इतनी जल्दी नहीं लेते। तो मैंने कहा यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गैर मुल्की ने सर किया भी ना कुछ हो तो आप केस उठा लेते हो, आप देखते नहीं हो, तो फिर आपके खर्चे फालतू हो जाते हैं। मैंने कहा ये मतलब नहीं कि एक गैर मुल्की ने चपेड़ मार दी या कुछ कर दिया तो 20 चपेड़ मार देंगे। मैंने कहा सर सोच समझ के आप देखा करें कि सामने क्या हो रहा है।
1: एक बंदे की गलती को एक बंदा ही काउंट किया जाए, सबको काउंट ना किया। अदनान आपने देखा डेफिनेट, आप बच्चों को सुबह देखते हैं, मैं भी कभी कभी ये देखता हूँ, सर्वे भी करता हूँ, स्कूल के बच्चे पे जाते हैं, उसके बाद जो है वो वालदैन छोड़ने भी आते हैं, उसके बाद फुटबॉल पे भी लोग जाते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में जाते हैं, कॉलेज में भी जो बच्चे जाते हैं, तो आप सुबह देखें कि किस तरह जो है वो ज़ेबरा क्रॉसिंग पे लाइनें लगी होती हैं, किस तरह साइकिलों की लाइनें लगी होती हैं, और कितने बच्चे कितनी तादाद में कॉलेज के बाहर खड़े हों तो बंदा होता है यार इतने लोग आते हैं, स्कूलों के बाहर खड़े होकर देखे तो बंदा कहता है इतने लोग आते हैं, बाने में जाकर देखे तो बंदा होता है यार इतने बच्चे छोटे आते हैं। तो ये चीज़ें सबको पता होनी चाहिए ना कि जनरेशन तब्दील हो रही है, ये बच्चे क्या सीखें, ये यही कुछ सीखेंगे जो इनका कानून कहता है इनको सिखाता है।
2: जी जी ये देखे ना ये डिसिप्लिन है, बहुत बड़ा डिसिप्लिन है। मैं आपको एक बात बताऊं, फर्स्ट डे था स्कूल का, मैं अपनी कमरे में गया और मैं बच्चों को छोड़ने गया, मैं बोर्ड का मेंबर भी था, मेरी जिम्मेदारी भी थी। एक ने गाड़ी गलत खिला दी, कहती है मेरे पास कोई जगह नहीं है। मैंने कहा मतलब तेरे पास जगह नहीं है, तो कहती है टाइम नहीं है। मैंने कहा मुझे एक बात बता, तो मैं नहीं तो पता क्या फर्स्ट डे है, कहती है मुझे पता था। तो मैंने कहा फिर तुम 10 मिनट पहले क्यों नहीं आए, ये मतलब तो ना कि तुम 10 मिनट पहले नहीं आ सकती तो तुम पूरी सड़क ब्लॉक कर दो। मैंने कहा 10 मिनट पहले आ जाती तुम्हें जगह मिल जानी थी, मगर तुम 10 मिनट लेट आई हो तो अब तुम ये मतलब तो नहीं ना कि तुम पूरी सड़क बंद कर दो। कहती है नहीं मुझसे गलती होगी। मैंने कहा गलती होगी है मगर अगली बार सोचो, क्योंकि ये जो चीज तुम कह रही हो ये तुम्हारा बच्चा देख के भी फॉलो करेगा।
1: देखें लोगों को जो राइट्स हैं वो राइट्स हैं, नई नई दुकानें खुलती हैं, सोशल मीडिया पे बड़ी एडवर्टाइजमेंट होती है, लोगों की लाइनें लगी होती हैं। मेरे नज़दीक ही एक मैं देख रहा था एक चीज़ खुली है बर्गर किंग टाइप इस तरह की बेकसार चीज़ें जो हैं वो खुद जो है वो सोशल मीडिया का खिलाड़ी है, तो तकरीबन फरलांग 1.5 फरलांग लाइनें लगी होती हैं। आप मुझे बताएं कि पहले भी उस एरिए में पार्किंग नहीं है तो जो लोग गाड़ियों पे आते हैं वो गाड़ियां कहाँ पार्क करेंगे, जो बिल्डिंगों में रहते हैं वो कहाँ पार्क करेंगे, कुछ पूछने देखने वाला है लेकिन नहीं जी टैक्स आएगा, इनकम होगी टैक्स आएगा।
2: जैसे सब देखिए इन चीजों पे ना सारा काम किया जा रहा है और इंशाल्लाह ताला लोगों को भी पता है, क्योंकि ये मसाइल है यही वन ऑफ द मिसाइल कोपेनहेगन में काफी टाइम लगा है और मैंने उनका बजट नहीं पढ़ा, मगर उनने भी बड़ी बहस की है कि इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाए और इंशाल्लाह ताला इन चीजों पर
1: इतना
2: काम किया
1: बड़ा
2: जाए।
1: बजट है कि अपनी वो फिक्र ही नहीं पड़ी जाती।
2: नहीं, वो ये ना सर,
1: चलें अदनान, आप चूंकि इसलिए आपसे मल्टी किस्म के सवाल करते हैं क्योंकि आप मुख्तलिफ जगहों पे जाते आते रहते हैं, बातें भी करते हैं, खुद उसमें शामिल भी होते हैं। अदनान, काफ़ी टाइम हो गया, कम्यून के इलेक्शन हो गए हैं लेकिन अभी तक हम जो है वो इधर से उधर बाल, उधर से उधर बाल, कभी इधर कभी उधर, कभी इस तरह की बातें चल रही हैं, कोई ठोस चीज़ बाहर नहीं आ रही, कोई ठोक पॉलिसियाँ बाहर नहीं आ रही कि ताकि ये काम करें तो अगली दफ़ा इन्होंने वोट नहीं लेने दोबारा।
2: सब वोट सब ने लेने होते हैं, मगर मसला ये होता है कि जो पहला साल होता है ना वो बड़ा टफ होता है क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो सीखनी होती हैं, टेक ओवर करनी होती है। आप इंशाल्लाह ताला ये जब बजट बन जाएंगे उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ तब्दीली आएगी और कुछ चीज़ों में भी आएगी। रीजन का मैं ये कह सकता हूँ कि रीजन का जो मसाइल रहा है ना वो ये रहा है कि पूरा जो शेलन है ना उसको एक रीजन में बनाना था, तो वो भी क्या कहते हैं टाइम टेम टिल था और कुछ रीजन के जो काम थे वो कमूनों में आ गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये नेक्स्ट कपल ऑफ वीकेंड्स बजट के बाद आपको नजर भी आना लगेगा कि कुछ तब्दील चीजें तब्दील हो रही हैं और कुछ चीजें नहीं आ रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला काफी चीजों की सूरत नजर निकल आएगी कमिंग्स वीक और कमिंग मंथ्स में और
1: अदनान,
2: नेशनल
1: आपका
2: पैन पे
1: बहुत
2: भी
1: शुक्रिया।
2: ऐसे ही।
1: अदनान देखिए ना, आज इस वक्त जो है 9:23 हुआ चाहते हैं, जो लोग इस वक्त लाइव सुन रहे हैं उन्हें तो सब चीज़ का पता है, गाड़ियों में या किसी और जगह पे, घरों पे या मुख्तलिफ मकामात पर या किसी भी हिस्से शहर के हिस्से में सुन रहे हैं, उन्हें तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जो लोग आगे सीना गजर कुछ सुनाएगा किसी को तो वो सारी आपकी बातों को जो असल मकसद है वो तब्दील कर देते हैं।
2: सब मेरा काम है लोगों को इन्फॉर्मेशन देना और मेरा काम है कि लोगों के लिए बेहतरी करना, ये मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखाया और यही मैं अपने नक्श कदम पर लेके चलूंगा और अल्लाह की बस मेरी दुआ ये है कि मेरे बच्चे जो हैं वो भी इस नेक काम में ही रहें और आगे उनको अल्लाह ताला अपनी जिंदगी में कामयाबी दे। तो मेरे लिए तो यही है कि मैं जितना हो सकता मैं करता हूँ, अभी आपकी अभी थोड़ी देर बाद मेरा बच्चा जो है उसको मोबाइल दूसरे कमरे में मैच देख रहा है, उसको थोड़ी बातें करूँगा फिर उसको वो सो जाएगा, उसके बाद फिर मैं थोड़ी बहुत अपना क्या कहता है एक आधा घंटा ऐसे पढ़ता हूँ कुछ चीज़ें देखता हूँ कि कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं ना जो मुझे नेक्स्ट डे, तो इस तरह बंदे का होता है। जैसे आपने शुरू में कहा था कि मेरा इरादा है नेक्स्ट इलेक्शन लड़ने का, तो वो तो इंसान प्रिपरेशन रखेगा तो वो लड़ सकता है ना फिर, वरना तो बंदा
1: नहीं,
2: पीछे हो
1: एक
2: जाता है।
1: दिन में जो 3 महीने के अंदर आ जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, उन्हें पता ही नहीं होता हम किस मकसद के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो अभी से इरादा करें उन्होंने 3-4 साल मेहनत करनी है, लोगों से मिलना है, बताना, लोगों को समझ आएगी कि ये लड़ना लड़का लड़की जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ये इनकी तबीयत कैसी है, ये क्या करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ सबसे
2: इरादा
1: बेहतरीन तरीका आपने अपनाया, पहले भी आप एक्टिव थे, अभी आपने शुरू से ऐलान कर दिया है।
2: साहब अभी तक तो मेरा यही प्लान है कि मैं नेक्स्ट इलेक्शन लड़ूंगा, बाकी अल्लाह ताला की जो नसीब में होगा वो ही होना है, जो इंसान के नसीब में लिखा होगा वो ही होना है, नसीब और रिस्क जो है वो उसके हाथ में है और ये बंदा नहीं कुछ कर सकता इसके अंदर।
1: अदनान, आपका बहुत शुक्रिया। अदनान, मैं समझता हूँ जितनी मुझे समझ है, जितना तजुर्बा है, जितना हम लोगों से पूछते हैं, आते हैं, बात करते हैं, अदनान देखें कितना प्यारा मुल्क है कि आपको हर चीज़ जमहूरी तरीके से मिलती है, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, हर अच्छी चीज़ हमें मिलती है। कहीं वो होता छोटा मोटा, ज़ाहिर है कितने बड़े लोगों में कुछ ना कुछ तो हो जाता है, घर में जो घर में अफराद रहते हैं उनमें भी तो छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। एक मुल्क चलाना, एक मुल्क में रहना, अस्पतालों की सहूलियात, बाकी ट्रांसपोर्ट की सहूलियात, बसें, ट्रेनें, क्या क्या मेरा टिकट ज़्यादा है या आपका थोड़ा है, सबके टिकट बराबर हैं, सहूलियात जो है वो डिफरेंट होती हैं।
2: नहीं दादा साहब यही है और अल्लाह ताला के कहते हैं सब कुछ है, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि
1: बस
2: हमें
1: अदनान,
2: इसमें
1: आप
2: अल्लाह
1: लेकर चलें,
2: ताला
1: लोगों को साथ लेकर चलें, लोगों को बताएं, हकायक बताएं कि हमारा आने वाला जो वक्त है वो तो वक्त तो अगले पता होता है और होता है, लेकिन अक्ल भी तो इंसान को, तालीम क्यों हासिल करता है बंदा, वो कहे जी खुद ही आ जाएगा,
2: यही
1: मैं खुद
2: दादा
1: ही कॉलेज
2: साहब
1: में चला जाऊंगा, मैं खुद ही डॉक्टर
2: यही
1: बन
2: दादा
1: जाऊंगा,
2: साहब
1: मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। तो ये
2: यही
1: चीज़ें
2: मैं
1: तो
2: कहता
1: अपनी
2: हूँ
1: जगह दुरुस्त है, किस्मत होती है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीज़ें खुद भी करनी पड़ती हैं, तब बंदा डॉक्टर बनता है, तब सियासतदान बनता है, जब वोटें पड़ती हैं, जीतता इलेक्शन जीतता तब बनता है।
2: ऐसा मैं आपको भी बात बताऊं, इंसान को ना हाफ अपॉर्चुनिटी रखनी चाहिए। और जैसे मैंने अभी कहा कि मैं थोड़ी देर पहले आया तो मेरी बेटी कुछ करना चाह रही थी, तो मैं डाउट था, फिर मैंने उस चीज पर टाइम लिया, मैंने उससे बात की, मैंने कहा ये है, कहती है नहीं बाबा तो तुम देख लो तो बाहर से बदल गया हुआ। मैंने कहा हाँ ये बदल गया हुआ है। तो फिर मेरी तसल्ली हुई। इंसान को हर वक्त अपने आप को तैयारी करनी चाहिए कि इंसान किसी की मदद कर सके, और जो इंसान से हो सकता है वो इंसान को करना चाहिए। तो मैं
1: बहुत शुक्रिया अदनान आपका, आप भी टाइम की पाबंदी करते हैं डेविन, हमें मजबूरन भी करनी पड़ती है लेकिन हमारी तबीयत में भी टाइम की जो पाबंदी है वो शामिल है। तो वक्त और लिहाज जो है हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हम जब खुद मिसाल बनेंगे, बच्चे भी देखेंगे वो भी पाबंदी करेंगे, दोस्त भी देखेंगे सुनेंगे वो भी पाबंदी करेंगे। लेकिन चूँकि बाज़ जगहों पर बड़ा रिवाज होता है कि 9 बजे अदनान से बात करनी है तो 10 बजे बात करके कहें जी अब बात कर, ये नहीं पता इसकी अदनान की 10 बजे क्या मसरूफियात होंगी, या अदनान सो गया नमाज पढ़ के या अपने काम पे लगा हो, ये हमारी एडिक नहीं होती कि मैंने 9 बजे का टाइम दिया तो मुझे 9 बजे ही बात करनी चाहिए।
2: साहब देखिए मैंने हमेशा एक चीज आ रखी है कि जो टाइम होता है ना उस पे बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि उस टाइम पे बंदा करे। अब इंशाल्लाह जरा ये देखिए 9:30 होने वाले हैं, मुझे पता है कि 5-10 मिनट बाद मेरे बच्चे ने सोना है, मैंने उसको क्या कहते हैं तैयार करना, क्योंकि उसको मैं टाइम से नहीं सुवाऊंगा तो वो टाइम से स्कूल नहीं पहुंचेगा, कौन स्ट्रेस पहुंचेगा तो वो पढ़ नहीं सकेगा। तो यही तो चीजें होती हैं कि मैं फिर टाइमिंग और ये चीजों को देखना पड़ता है और इंसान को करना पड़ता है।
1: यही तरक्की तो का राज है, यही हमें दीन भी सिखाता है, वक्त की कदर करें,
2: यही सब कुछ हमें सिखाता है। तो राजा साहब मैं इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बस ये कि आप अपने आप को देखें, बेहतर करें, अपने बच्चों की परवरिश करें, अपने बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करें, और इससे आपकी क्या कहते हैं आपकी हिम्मत आती है।
1: अदनान आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, इंशाल्लाह।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप

0: इफ्तिखार चौधरी, उनका जाती तौर पे इन्होंने जो रिगिंग हुई है, धांधली हुई है 2013 के इलेक्शंस में, वो इन्होंने कराई है। ये उन्होंने एक जाती तौर पे उन्होंने इन दोनों शख्सियात के ऊपर इल्जाम लगाया है। इसके ऊपर क्या रिएक्शन आते हैं?
1: शोकत साहब, आपने सुना ये छोटा सा चौधरी साहब जो आजकल वो दूसरे प्रोग्राम में बैठ के जब उनको सवाल किया गया तो वो कहते नहीं नहीं ये बाद में हम बात करेंगे, अभी इसको छोड़ दें, बाद में जब हालात सेट हो जाएंगे। तो शोकत साहब, अब आपको नजर नहीं आता कि जो सियासतदान इकट्ठे हुए हैं, क्यों इकट्ठे हुए हैं? जब ये बाजी लगाई गई थी, शतरंज की बाजी खेली गई थी, और चौधरी साहब के कुछ अरसा पहले भी बयान था कि दो दिन बाद फौज आ जाएगी, और इसी तरह इमरान खान साहब फरमाते थे कि मुझे खुशबू आ रही है, और एक तरफ से आवाज आती थी कि 31 तक हर हालत में नवाज शरीफ यहाँ नहीं होगा। तो शौकत साहब, कौम ने तो बहुत सारी उम्मीदें बांध ली थी, 31 अगस्त गुजर गया, और जो 6 सितंबर के हवाले से 6 सितंबर गुजर गया, तो लीडरान की आप बातें सुने, और फौज को इसका मतलब यही था कि फौज को ही टारगेट बनाया जाए, फौज को बदनाम किया जाए। आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब वर्दी में होता है तो सारी फौज का होता है, वो अकेला इंडिविजुअल आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ नहीं होता, इंडिविजुअल उस वक्त होता है जब उसकी पेंशन हो जाती है, उसका 2 साल गुजर जाता है तो फिर वो इंडिविजुअल होता है। जिस वक्त वर्दी में अगर कोई जर्नैल है तो वर्दी में वो पूरी फौज का जर्नैल होता है, वो अकेला जर्नैल नहीं होता, इंडिविजुअल आप किसी को नहीं। आप क्या कहेंगे?
2: साहब, पहली बात वो मुझे जो आपने क्लिप सुनाया वो मुझे सुनाई नहीं दिया, लेकिन मैंने आपकी बातों से एक अंदाजा लगाया कि मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो सियासतदान ये कहता है कि मुझे फौज आती नजर आ रही है और इसके बावजूद वो अपनी रविश नहीं बदलता, वो कोई सी ऐसे राह अमल इख्तियार नहीं करता कि फौज के आने को रोक दिया जाए, तो मैं उसे जमहूरी सियासतदान नहीं मानूंगा, क्योंकि ये सियासतदानों का फर्ज है, चाहे वो अपोजिशन से हो चाहे हुकूमत से हो, कि वो हमेशा सियासी हल तलाश करें, और जब उन्हें नजर भी आ रहा हो कि डेड लॉक पैदा हो रहा है, अगर हमने अपनी रविश ना बदली तो वो फौज के आने का है, तो फिर वो तमाम सियासतदान कसूरवार होंगे जिन्होंने कोई सियासी हल तलाश नहीं किया, इसमें सब कसूरवार। दूसरी बात, यकीनन राजा साहब जो आप कह रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब तक पोस्ट पे होते हैं तो वो कोई इंफरादी हैसियत नहीं होती, वो पूरे इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो इस हालत में उनकी किरदार कशी करना या उन पर तनकीद करना पूरे इदारे की पर तनकीद करने के मुतरादिफ होता है, लिहाजा आजादिया उनकी हैसियत को, उनके मुतल्लिक कोई भी बात की जाए तो उनकी हैसियत को जान के की जाए कि वो एक पूरे इदारे को और एक मुकद्दस इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हमारे मुल्क की जग्राफी सरहदों का दफा करती हैं, तो हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कोई अवाम में मनफी तासर पैदा होता हो या उनके दिल में फौज की इज्जत और मंजलत कदर कम होती हो, तो लिहाजा। और दूसरी बात, आपकी बातों में आपने एक बात यह कही कि जब किसी वक्त हम पढ़ा करते तो कहते टीचर से जब कभी कोई सवाल किया जाए तो कहते अगर टीचर के पास उसका जवाब नहीं है ना तो आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता, तो वो या उसको टाल देगा या वो सवाल के बदले में जवाब में आप पे सवाल कर देगा या कहेगा इसको बाद में देखते हैं। ये भी आपने जो बात सियासतदान के वाले की कि वो कहते हैं अभी इस मौजू पे बात नहीं करते, तो यकीनन उनके पास इसका कोई हल नहीं होगा, कोई इसका जवाब नहीं होगा, या वो इंतजार पैदा करना चाहते होंगे या कहते हैं चले जी इस मसले को हम बाद में देख लेंगे, अगर वो इतना अहम है तो उसे अभी और फौरन टैकल करें, क्योंकि मसाइल को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो फिर वो बाद में बहुत बड़े ब्लंडर्स बन जाते हैं।
3: शोकत साहब, अस्सलाम वालेकुम सर।
2: वालेकुम सलाम,
3: तैयब शाह बोल रहा हूं।
2: अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, क्या हाल है? ठीक है
3: शोकत साहब, अभी बड़ी तफसील से आपने 6 सितंबर की दफा के दिन की बात की, पैंट की जंग की बात की। देखिए, हमारी आर्मी ने जिसको ये डिक्टेटर भी कहते हैं, सिविल जो गवर्नमेंट जब भी आती है इन पे बड़े बुतान लगाते हैं, बड़े जमार लगाते हैं, ये नहीं चाहते कि ये कभी भी इकदार में खैर आने की तो वजह ये खुद ही होते हैं कि क्योंकि इनसे पार्टीशन के बाद जितनी भी सिविल गवर्नमेंट आई इनसे 2 साल 1.5 साल या 2.5 साल कर लें, इससे ज़्यादा इनसे गवर्नमेंट चली नहीं या इन्होंने काम नहीं किया, जिस तरह भी आप समझ लें। ये जरदारी साहब हैं, पहली मरतबा उनको हम शाबाश भी देते हैं किस्म की, और बड़ी हिम्मत है उनकी कि उन्होंने 5 साल निकाले, ये कौम को बेवकूफ़ बनाया या जो कुछ भी किया, नफे नुकसान के साथ वो अपना वक्त पास करके चले गए, जमहूरियत उन्होंने लाई। अगर ये जमहूरियत इसको कहते हैं तो लोग मेरे ख्याल में अब तक ऐसी जमहूरियत क्यों नहीं चाहते। मुझे ये बताएं कि हमारे जब भी आर्मी का दौर हुआ और इतनी 65 में जो कुर्बानियाँ, यानी कि जो तकलीफ़ात, जो मुसीबतें हमारी कौम ने डली, लेकिन 65 में जो उनका

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان عبدالقیوم بھٹی آپ کے پسندیدہ پروگرام گرین کارڈ اسپیشل کے ساتھ حاضر ہے. سلام قبول کیجیے. اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے یا ہم تک اپنی آرا پہنچانے کے لیے آپ ہمیں 3929-7104 پر کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک کے پیج گرین کارڈ اسپیشل پر بھی کامنٹ کر سکتے ہیں. آپ ہمیں ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر لائیو سن رہے ہیں. آج کے پروگرام اسپیشل پروگرام لے کر آئے ہیں ہم آپ کے لیے. لیکن آپ آج کے پروگرام میں جانے سے پہلے شروع کرنے سے پہلے ہمارے کو ہوسٹ علی بھی موجود ہیں. علی
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بھٹی صاحب, آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ آج کا ہمارا پروگرام کچھ خاص ہوگا اور اس کی مناسبت کچھ ہمارے یوم دفاع اور یوم فضائیہ کے حوالے سے ہوگی. اس کی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. اور سامعین, جس طرح بھٹی صاحب نے آپ سے کہا کہ آپ بھی اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں, آپ ضرور کال کیجئے. آپ اپنے تاثرات, اپنے اظہار خیالات آپ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. خاص طور پہ جو ہمارے لیے ایک بہت یادگار دن ہے, جب ہماری سرحدوں کی حفاظت ہمارے ملک کے شاہینوں نے کی. 6 ستمبر 1965 کی بات ہے, 7 ستمبر 1965 کی بات ہے. تو آج ہم اس پروگرام میں اپنے ان شہداء کو بھی یاد رکھیں گے, ان غازیوں کو بھی یاد رکھیں گے جنہوں نے ہماری سرحدوں کی حفاظت کی اور ہمارے ملک کو ایک دفعہ پھر ناقابل تسخیر بنا دیا. جی بھٹی صاحب.
0: جی علی, بالکل جیسا کہ آپ نے انٹروڈکشن کرایا پروگرام کا, 6 ستمبر کے حوالے سے اور 7 ستمبر کے حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام ہے. آج کا پروگرام ہمارے ان غازیوں اور شہیدوں کے نام ہے جنہوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اس قوم کی, پاکستانی قوم کی حفاظت کی, جنہوں نے فوراً باہر کے تسلط سے ہمیں آزادی دلائی, جنہوں نے ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے آج ہم اگر آزاد ہیں تو انہی کی وجہ سے آج کا پروگرام ان کے نام ہے.
1: جی بالکل, آپ نے صحیح کہا بھٹی صاحب. آج کا پروگرام ہم اپنے شہیدوں اور غازیوں کے نام کرتے ہیں. 6 ستمبر کی صبح جب ہمارے دشمن نے, اس وقت کے دشمن نے ہمارے ملک پاکستان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی, تو ہمارے غازیوں نے, ہمارے شہیدوں نے, ملک کے ثبوتوں نے, ماں کے نوجوانوں نے, بیٹوں نے ہماری سرحدوں کی حفاظت کی اور ان کے اس ناپاک عزائم کو جو ہے وہ خاک میں ملا دیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. اور آج ہم بالکل جو اگر 1947 کے بعد ہم دوبارہ سے آزاد تھے تو بالکل اسی انہی شہینوں کی بدولت آزاد تھے. 6 ستمبر کا دن ہماری ہسٹری میں جو ہے وہ سنہرے حروفوں سے لکھا جاتا ہے اور سنہرے حروفوں میں ہی یاد کیا جاتا ہے. اور اس کی وساطت ہے, جس طرح ابھی ہم نے اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک نغمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا, وہ بالکل میڈم نور جہان کا نغمہ تھا جو انہوں نے اس وقت ریکارڈ کروایا. اور جب ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے فوجیوں کو ایک جذبے کی ضرورت تھی اس وقت, خواہ وہ لوگ جو میدان جنگ میں خود نہیں جا سکتے تھے, انہوں نے مختلف طریقوں سے ہمارے فوجی ساتھی, فوجی بھائیوں کا, ہمارے شہیدوں کا جذبہ بڑھایا. کچھ لوگوں نے نغمے, اس طرح کے ملی نغمے گائے, کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ان کے لیے وہاں پہ کھانے کا انتظام کیا, ناشتوں کا انتظام کیا, ان کے لیے اچھی سے اچھی سہولتیں دیں. اور جو لوگ زخمی تھے, جو غازی تھے, ان لوگوں کے لیے مرہم پٹیوں کا انتظام کیا. تو ہماری فوج کے ساتھ ہماری قوم شانہ بشانہ کھڑی تھی اور ہمارے فوجیوں نے, ہماری قوم نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا.
0: جی علی, میں آج ایک کامنٹ پڑھ رہا تھا کسی کتاب میں کہ جب انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا 6 ستمبر کو, جب پاکستانی افواج اپنے دفاع کر رہی تھی تو انڈیا نے اپنے ریڈیو پہ اناؤنس کیا کہ ہم لاہور سے 2 سے 3 کلومیٹر دور رہ گئے ہیں. ان کی فوجوں نے جھوٹ بولا اور اپنے فوجیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ اناؤنس کیا کہ ہم لاہور سے 2 سے 3 کلومیٹر رہ گئے ہیں, حالانکہ وہ بہت زیادہ دور تھے. تو ایک فوجی جو تھا وہ جو سڑک کے کنارے وہ مورچہ زن تھا, اس کے ساتھ ایک وہ مائل سٹون بھی تھا جس کے اوپر 42.6 لکھا ہوا تھا کہ لاہور وہاں سے کچھ اتنے کلومیٹر ہے. تو اس نے وہ مائل سٹون جو تھا اس کو اٹھا کے آگے جا کے سڑک کے درمیان جا کے رکھ دیا اور اس کے اوپر لکھا بلڈی 42.6 माइल्स, मतलब कि आपको खून की नदियां यहां पे बह जाएंगी, फिर आपको आगे जाना पड़ेगा, हमारे खून के हमारी लाशों के ऊपर गुजर के आप जाएंगे, वैसे आप नहीं जा सकते। तो ये हमारे फौजियों और जवानों का ये हौसला था। और आज अगर हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं तो उन फौजियों और शहीदों के खून की बदौलत है, और जो शहीद की जो मौत होती है वो कौम की हयात होती है। तो इस तरह जिस तरह अली आप कह रहे थे कि मुख्तलिफ ज़िंदगी के हर शोबा से ताल्लुक रखने वाले जितने भी लोग थे सब ने बढ़ चढ़ कर उस वक्त में यकजहती का मुजाहरा किया, पूरी पाकिस्तानी कौम सिसा पलाई हुई दीवार बन गई, और ज़िंदगी के हर शोबे से जिस तरह के आप बता रहे थे जो गुलूकार थे, अगर गुलूकारों को ही ले लें तो उनके अंदर आपको पता है मैडम नूरजहां है, और उसके साथ जो मेहदी हसन है, फिर और भी तो दूसरे, ये तो इनके तो हमने बहुत नगमे सुनते रहते हैं, और भी बहुत सारे गुलकार थे जिन्होंने अपने उस वक्त नगमे गाए, और यही नगमे जो थे उस वक्त हमारी कौम का हौसला बढ़ाते थे, हमारे फौजियों का हौसला बढ़ाते थे। और इसके बाद बड़ी मशहूर बात है कि लाहौर का हलवा पूरी बहुत मशहूर है, उस वक्त लाहौर के शहरियों ने हलवे पूरी से अपने ये जो फौजी थे जवान थे उनके ऊपर उनके मोर्चों के अंदर जाके हलवा पूरी से उनकी तवाज़ो करते थे, उन तक खाने पहुंचाते थे, हलवा पूरी से उनकी तवाज़ो की जाती थी अपने मतलब फौजियों की जो उनकी खातर उनकी हिफाजत कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल भट्टी साहब आपने सही कहा, और क्योंकि 1965 कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मुझे यकीन है कि बहुत सारे हमारे जो हैं वो बुज़ुर्ग अभी भी हयात हैं जिन्होंने वो फौज और उस जज्बे को उस जंग को अपनी आंखों से देखा, बहुत सारे लोगों ने खुद से पार्टिसिपेट किया होगा, और हम बिल्कुल हमारी ख्वाहिश होगी कि वो ऐसे लोग जिन्होंने उस वक्त फौज का साथ दिया या ऐसे लोग जिन्होंने वो जंग उस जंग को अपनी आंखों से देखा अगर वो कॉल करके अपने उन जज्बात का दोबारा से इजहार करेंगे हमारी कौम के सामने, खासतौर पर जो यहाँ पे नई नस्ल परवान चढ़ रही है। मेरा कल भी मैं एक जगह पर बैठा हुआ था, किसी बच्चे की खत्मे कुरान आमीन थी, तो वहां पे भी मैं ये डिस्कस कर रहा था कि हम जिस माशरे में रहते हैं यहाँ पे हमें अपने जो नई नस्ल है, जो बच्चे हैं या थोड़े बड़े बच्चे हैं, उन बच्चों को बताना चाहिए कि ये दिन या कोई भी दिन, खास दिन, उस दिन की अहमियत बतानी चाहिए कि इस दिन को क्या हुआ था। अगर ईद है तो ईद की उन्हें अहमियत और फजीलत बतानी चाहिए। अगर जिस तरह 6 सितंबर है, 7 सितंबर है, जश्न आज़ादी, 14 अगस्त है, 23 मार्च है, कोई भी ऐसा दिन है, आप अपने घरों में ऐसा माहौल बनाएंगे तो बच्चों को पता चलेगा, उनके अंदर एक जस्तजू पैदा होगी, वो खुद से पूछेंगे कि ये दिन क्या है, क्यों मनाया जाता है। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे, हम 3-4-5 दिन पहले अगर 14 अगस्त आनी होती थी, हम बाजारों में निकल आते थे, झंडियां लेके आते थे, हजारों झंडियां जो है वो हम लगाते थे, उनको धागे के ऊपर लगाना, और ये भी हमें अच्छी तरह याद है जिस दिन 14 अगस्त होती थी उस दिन बारिश हो जाती थी, मगर हमें उसका दुख नहीं होता था कि हमने सारी रात मेहनत करके हमने झंडियां लगाई और अगले दिन बारिश हुई, वो झंडियां सारी जो है वो पानी की नजर होगी, मगर हमारे अंदर एक जज्बा था, जस्तजू होती थी। इसी तरह जब 6 सितंबर का दिन आता था तो हम 6 सितंबर को टीवी के ऊपर इतने नगमे लगते थे कि अब हम वो नगमे जो है हम वो नगमे बेसिकली सुन सुन के बड़े हुए। 7 सितंबर आती थी तो हम एयरपोर्ट के ऊपर या जहां पे ये फौजी हजरात जो है वो अपने ये फौजी साजो सामान की एग्जीबिशन लगाते थे, हमारे वालदैन हमें वहां पे लेकर जाते थे ताकि हमें पता चले कि क्या, फिर जस्तजू पैदा होती थी कि अब जब वहां पे हैं तो आपको पता चले कि आप कैसे क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई थी, कैसे जंग लड़ी जाती है, कि आपको हर दिन की फजीलत का पता होना चाहिए। और जब तक ये हमें पता नहीं होगा हमारे बच्चों को, या जब तक हम अपने घरों में ये माहौल नहीं बनाएंगे हमारे बच्चों को ये चीजें पता नहीं चलेंगी, और अगर बच्चों को ये चीजें पता चलेंगी तो फिर उनमें जो है वो मोहब्बत, वो वतन की मोहब्बत पैदा होगी, वतन के लिए जज्बा पैदा होगा। यहाँ पे हम देखें, अगर आप सारा दिन टीवी के ऊपर बैठ के आप सियासत की बातें चलती रहेंगी या ड्रामों की बातें चलती रहेंगी तो हमारी जो बुनियादें हैं वो बच्चों को बुनियादों का नहीं पता चलेगा। बच्चों हमारी बुनियादें जो हैं वो 1947 से पहले अगर आप देखें या 1947 के बाद देखें, दो मुख्तलिफ तारीखें हैं कि 1947 से पहले पाकिस्तान बनाने के लिए माओ ने अपने बच्चों को शहीद किया, माओ ने खुद कुर्बानी दी, लोगों ने अपने घर बार छोड़ दिए। 1947 के बाद जो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो उन सरहदों की हिफाजत जो है वो हमारी फौज ने की। 1948 की जंग लगी, उसके बाद 1965 की, 1971 की, हमें बांग्लादेश को अपने लखते जिगर को हमें अलहदा करना पड़ा, फिर उसके बाद कारगिल की जंग हुई। तो ये हमारे लिए वो बहुत लगा लो कि पाकिस्तान के सीने में बहुत ज़्यादा ज़ख्म है, पाकिस्तान को अपना एक हिस्सा जो है वो टुकड़ा अलहदा करना पड़ा। मगर ये जब तक ये हिस्ट्री तारीखें जब तक हमारे बच्चों को नहीं पता चलेंगी, उनमें वतन की मोहब्बत का जज्बा पैदा नहीं होगा, और ये जज्बा हमने पैदा करना है। अगर आप यहां पे देखें, यहां पे जो हमारे बच्चे हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं जो फॉरेनर्स हैं, यहां स्कूलों कॉलेजों में उन्हें डेनमार्क के हवाले से तारीखों का बताया जाता है, कौन सा दिन खास दिन है, क्या दिन होता है, और बच्चे फिर उस तरह से प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, बच्चों को पता होता है क्या दिन है। अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कहता कि मां बाप यहां पर नहीं करते, मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चों को अभी ये चीजें नहीं पता। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन वालदैन से जो ये सुन रहे हैं प्रोग्राम, जो हमारी बातें सुन रहे हैं, कोशिश करें कि अपने घर में ऐसा माहौल बनाएं ताकि बच्चों को पता चले कि ये दिन क्या है, दिन कैसे दिन, ये इस दिन की अहमियत क्या है, इस दिन को हुआ क्या था, उनको थोड़ी सी जस्तजू उनके दिलों में पैदा हो ताकि वो इस इन दिनों को उसी तरह एहतमाम के साथ मनाएं जिस तरह हम मनाते थे। जी भट्टी साहब।
0: जी अली, बिल्कुल ये एहतमाम करना चाहिए, और वालदैन की तरबियत बच्चों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा होती है, और जब तक वालदैन अपने बच्चों को ये नहीं बताएंगे तो यकीनन बच्चों को नहीं पाकिस्तान की तारीख का पता चलेगा, पाकिस्तान की मुश्किलात का पता चलेगा। और जब वालदैन को नहीं, वालदैन को अपना इलम भी बढ़ाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मीडिया सुनना चाहिए, ताकि उनको ये भी पता चले कि और नई नई चीज़ों का पता चले, जो नई किताबें लिखी जाती हैं या जिन लोगों ने अपनी याददाश्तें लिखी हैं वो भी किताबें पढ़नी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि उस वक्त के जो उस जंग के अंदर इन्वॉल्व लोग थे उन्होंने कैसे किया कि क्या किया, और कैसे कैसे अपने मतलब के लोगों का, अपनी फौज का, अपने वतन का, अपने अपने दायरा कार में रह के उसका कैसे दिफा किया। और जी अली, आप कुछ कहना चाहते हैं?
1: जी बिल्कुल भट्टी साहब, आपने सही कहा, और ये तारीख भरी पड़ी है, तारीख के औराक भरे पड़े हैं इन चीज़ों से कि एक एक, देखें एक एक फौजी की अगर उसके ऊपर हम किताब लिखना शुरू कर दें तो आपको पता चलेगा कि किस कदर कुर्बानियां दी हैं, किस कदर हम लोगों ने, हमारे फौजियों ने कुर्बानियां दी हैं। आप देखें, आप करंट सिचुएशन ले लें पाकिस्तान की, आप 1947 के बाद की ले लें, जब भी पाकिस्तान के ऊपर खुदा न खासा कोई मुसीबत आती है, कोई मसला, कोई परेशानी आती है, तो हमारी फौज जो है वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, वो जंग हो, सैलाब आ जाए, जलजला आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमारी फौज जो है वो शाना बशाना अवाम के साथ खड़ी होती है, अपनी कौम के साथ खड़ी होती है। और इसी तरह हमारी कौम को हमारी फौज के पीछे खड़ा होना चाहिए, और वो पीछे कब हमारी कौम खड़ी होगी, जब हमारी कौम को पता चलेगा, हमारे बच्चों को पता चलेगा कि क्या है हम लोग, हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारी तारीख क्या है, किस तरह पाकिस्तान को आज़ाद करवाने के बाद आज़ाद रखा गया, किस तरह पाकिस्तान को मजबूत रखा गया। और इस सिलसिले में बल्कि ये पता चलूँ कि पाकिस्तान में तो चले एक फिर भी माहौल बना होता है, यहाँ पे डेनमार्क में या पाकिस्तान से बाहर जहां पे है, कोशिश होनी चाहिए कि मसलन जिस तरह हमारे यहां पे अम्बेसीज होती हैं, अम्बेसीज को इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने चाहिए। मसलन देखा हमने 14 अगस्त के ऊपर एक प्रोग्राम होता है, लोगों को, लोग अपने बच्चों को साथ लेके चले जाते हैं, अम्बेसी में इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, जिस तरह मसलन आप फर्ज करें अम्बेसी में कोई और निजी तकरीबात होती है, कभी मुशायरा हो गया, कभी इस तरह की चीजें होगी, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी अम्बेसी को भी, कि ऐसे दिनों को भी, ऐसी तारीखों को भी मनाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले, उनमें एक जज्बा पैदा हो, ना कि सिर्फ अगर आप एम्बेसी में जाएं तो आपको इस तरह के मवाद लिखे हुए पड़े हुए मिल जाएं, मगर प्रैक्टिकली भी पता होना चाहिए, छोटी मोटी एग्जीबिशंस लगनी चाहिए ताकि हमारी कौम को, हमारे बच्चों को पता चले। जी हमारे साथ कॉलर लाइन पे है। जी सलाम अलैकुम।
2: जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अली भाई, जहीर अर्ज कर रहा हूं।
1: जी सलाम अलैकुम जहीर साहब,
2: आपको और रेडियो आपकी आवाज के तमाम सामईन को, और जो हजरात आप बैठे हैं, भट्टी साहब बैठे हैं, राय साहब बैठे हैं, और खास तौर पे एक नौजवान आपसे पहले जो उन्होंने प्रोग्राम दिया है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा। बात देखें ये है कि आप नौजवानों पर फख्र है, आज से 1965 की आप बात कर रहे हैं, उन पर भी फख्र था और आप पर भी फख्र है। आज ऐसे मालूम हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक क्या कहते हैं जवेद हाशमी नहीं हमारे पास, माशाल्लाह कई जवेद हाशमी हैं, कई राशिद मनास हैं, कई मेजर तफैल हैं, कई अजीज भट्टी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अली भाई आप 14 सितंबर 6 सितंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें ये बड़ा बहुत अच्छा लगा, कोई कसर तो नहीं छोड़ी शौकत भाई ने, लेकिन ये है कि चूंकि समय जानते हैं मैं गग्गू मंडी का रहने वाला हूँ, हमारे गग्गू मंडी में पाकिस्तान की तारीख में मेजर फैल साहब शहीद हुए थे 1965 में, तो इसी तरह जैसे सारे शहदा को खराज तहसीन पेश किया गया, उनके लिए दुआएं की गई, तो इसी तरह गग्गू मंडी में भी ब्रिगेडियर साहब आए, काफी फौजी सहबान, और उन्होंने दुआएं पढ़ी, चादर चढ़ाई, यानी कि अपने उन नौजवानों को, उन शहदा को याद किया। तो ये सरमाया है अली साहब भट्टी साहब हमारा, सिर्फ उनकी यादें हमारे लिए सरमाया है, और आज हम फख्र करते हैं उन शहदा ने जाने दी हैं, उस नुसरत जहां डॉक्टर ने कुर्बानियां दी हैं, उस मेजर साहब ने कुर्बानियां दी हैं, राशिद मन्हास ने कुर्बानियां दी हैं, तो आज आज हम भी हैं, पाकिस्तान भी है, तो और हम इस पर, इस धरती पर फख्र भी करते हैं। लेकिन अफसोस, यहाँ एक मैं अफसोस करूंगा, अफसोस ये है कि जुमे वाले दिन से, जुमे रात वाले दिन से अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह इनकलाब तो ना आया, आज धरनों की उम्र 31 दिन हो चुकी है, धरनों की उम्र 31 दिन हो चुकी है मेरे हिसाब से, इनकलाब तो ना आया लेकिन एक तूफानी सलाब ने हमें आन लिया, तो इसी धरनों में वही म्यूजिक चलता रहा, वही डांस होता रहा, और उस वो जो मरे बेचारे 100 से ज्यादा 200 से ज्यादा अब उनकी तादाद हो गई है सलाम में, उनके लिए दो लफ्ज ना किसी से निकल सके, इस पर एक बहुत बड़े सवालिया निशान है, लेकिन बार बार बार बार वही दुआ है, वही इल्तजा है, वही आप जवानों की बातें सुन के जो ना ये उम्मीद की किरण भी फूटती है, और देखुश भी होता है कि अगर देखें इंशाल्लाह ताला ये मुल्क कायम रहेगा हम नौजवानों के बच्चे। जी
0: जी जाहिर साहब, अब्दुल कयूम भट्टी बात कर रहा हूँ सर, सलाम कबूल कीजिए। सर आप 1965 के अंदर आपकी उम्र क्या थी और आप किधर थे, और क्या था जज्बा उस वक्त जिधर आप थे, और लोगों के अंदर क्या जज्बा था, और फौजियों के बारे में क्या आपके मतलब के आम लोगों के जज्बात क्या थे, किस तरह से आप फौजियों को मिलते थे, जिस तरह के मुझे याद है जब भी अब भी जब फौजी मतलब के जब हम छोटे थे फौजी हमारे पास से गुजरते थे तो हम उनको सलाम करते, छोटे छोटे बच्चे होते थे हमें नहीं पता होता था लेकिन हम उनको सलाम करते थे, आज भी बच्चे मतलब फौजियों को सलाम करते हैं, उस वक्त आपका क्या जज्बा होता था, मतलब 1965 की अगर कोई यादें वगैरह वाबस्ता हैं आपके पास, याद है आपको तो कुछ प्लीज शेयर कीजिए हमारे साथ।
2: जी माशाल्लाह भट्टी साहब, मेरी तो 1965 की मार्च की पैदाइश है, तो मैंने ये सारे वाकयात बाद में देखे हैं, पढ़े हैं, लेकिन 1971 में मैं एक आपसे शेयर करता हूँ, हमारे चाचा जी हैं अब भी अल्हम्दुलिल्लाह वो हयात हैं, अल्लाह ताला उनको उनकी उम्र दराज करे, मियां हनीफ साहब, वो 1971 की जंग में कैदी थे, तो उनसे जो ना जब भी हम पाकिस्तान जाते हैं उनसे मुलाकात होती है, तो उनसे हम सबसे पहले सबसे ज्यादा बातें उनसे जो ना मैं तो उस वक्त की करता हूँ, जंग की करता हूँ, तो साहब कैदियों के बारे में बता रहे थे कि वो चाचा जी हमारे अनिल साहब हमें ये बताते हैं, वो कहते हैं कि बेटा असल में जब जंग हो रही होती है दुश्मन के सामने तो जज्बा ही इतना होता है, जज्बा इतना होता है, हम कैदी होने के बावजूद सिर्फ मैं नहीं हर जितने भी हम कैदी लोग थे हमें थोड़ा सा भी दुश्मन का डर नहीं था, हमारी आंखों में थोड़ा सा भी डर नहीं था, हालांकि हिंदू इतना जालिम है, इतना जालिम है, वो हम पे जुल्म बहुत करते थे, यहाँ तक के अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, यहाँ तक के ये वो बात है जो मेरे चाचा जी ने मेरे कानों में डाली है कि हमें खाना खाने में भी मिलावट करके दिया जा रहा था, लेकिन देखें तारीख में भट्टी साहब, तारीख में जो बातें हैं वो सुनहरी रूप में लिखी जाएंगी, जिस तरह 1973 के कानून जो भुट्टो साहब ने दिया, इसी तरह इन जंगी कैदियों को भी भुट्टो साहब ने छुड़ाया था, ये भी उनको भी एक जो ना सलाम जाता है, उनकी भी ये तारीफ की बात है, तो ये बातें थी, इस तरह है कि हम देखें हम जिस भी आज भी उस वक्त भी आज भी तारीख बड़ी पड़ी है भट्टी साहब के, अल्हम्दुलिल्लाह फौजी भाई को सलाम है, फौज को सलाम है, देखें आप ये लेटेस्ट ही बात कर लें कि अब सैलाब आया हुआ है तो सारे अंदर बड़े हुए हैं, अंदर बैठे हुए हैं, और फौज हमारी बेचारी जो है ना वो सारी जो ना मदद कर रही है, उनको रेस्क्यू कर रही है, उनकी उनको मदद दे रही है। तो ये फौज को सलाम है, फौज की उस वक्त भी कदर थी, बाद में भी रही, कुर्बानियां भी फौज की हैं, और फौज को बदनाम भी करते हैं। देखें ये सारे सिनेरियो जो है सारा कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, बात सिर्फ ये है कि हम अपने वतन के लिए, आप लोग जो काम करते हो, मैं बार बार वही बात कहता हूँ, ये सिर्फ मैं पिछले प्रोग्राम पर भी राय साहब से बात कर रहा था, तो मैंने शौकत साहब को 2-3 दफा उसकी तरी, हालांकि वो मेरे रिश्तेदार नहीं है, मेरे दोस्त भी नहीं है, सिर्फ मैं उनको जानता हूँ, हालांकि वो पीटीआई से उनका तलक है, मेरा पीटीआई से तलक नहीं है, लेकिन किसी दोस्तों ने मुझे ना मजाक करना शुरू कर दिया कि आप यार उसको बड़ा खाते हो। नहीं, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं ये कहता हूँ कि जो सच्चा इंसान है वो कहाँ से भी हो, जो सच बोलता है, सच का साथ दो, सच के साथ हो जाओ, सच की मदद करो। तो ये बातें हैं मेरे भाई।
1: आपने जहीर साहब बिल्कुल सही कहा, और इस सिलसिले में हमारी फौज की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा, हमेशा याद रखा जाता है। जिस तरह अभी हमने पहले भी बात की, अभी आपने भी इस बात का जिक्र किया कि जब भी खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क के ऊपर कोई आफत आती है तो सबसे पहले जो स्टेप इन होते हैं वो फौजी होते हैं, हमारे फौजी भाई होते हैं, और उन्होंने हमेशा से पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की है, ख्वाब वो बैरूनी सरहदें हों, अंदरूनी सरहदें हों, उन्होंने हमेशा खतरात का सामना किया है, चाहे वो अंदरूनी खतरात हों, बैरूनी खतरात हों, हमेशा से ही फौज ने जो है वो हमारी सरहदों की हिफाजत की है, हमारे मुल्क की हिफाजत की है। और इसके साथ साथ जिस तरह मैं अभी शुरू में भी बात की कि ये जज्बा जो है अब हमारे जो नई नस्ल है, जो नए बच्चे हैं, उन तक ये मुंतकिल करने की ज़रूरत है, उन बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि हमारे मुल्क की तारीख क्या है। ये दिन जो हमारे मुल्क में बड़े बड़े दिन आते हैं, जिन दिनों में पूरे टीवी पे, पूरे हर जगह पे इसी दिन की मुनासबत से प्रोग्राम चलते हैं और चला करते थे, और ये बच्चों को मुंतकिल करने की ज़रूरत है। जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, हम यूरोप में रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर, खा वो यूरोप है या दूसरे ममालिक हैं, पाकिस्तान की एम्बेसीज को इस तरह की डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें लेके चलनी चाहिए, ताकि बच्चों को इन तारीखों का पता चले। और मैं आपके विसातत से और जितने भी हमारे यहाँ पे बुजुर्ग हैं या जो ऐसे एक्टिव लोग हैं, उन लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि अगर कभी भी आपका एम्बेसी में इस तरह की कोई मीटिंग हो, या किस तरह की जब हमें कभी मौका मिले, तो हमारी ये नेक तमन्नाएं, हमारी नेक ख्वाहिशात या हमारी ये रिक्वेस्ट एम्बेसडर साहब को ज़रूर पहुँचाएँ, या कि आप 14 अगस्त के साथ, 23 मार्च के साथ ऐसे दिनों का भी एहतमाम करें अपनी एम्बेसी में, ताकि लोगों को पता चले, लोगों को हमारी हिस्ट्री पता चले। जब तक लोगों को हिस्ट्री नहीं पता चलेगी, लोगों में जस्तजू पैदा नहीं होगी इस दिन को मनाने की, इन तारीखों को पढ़ने की, और जो हमारी इतनी तारीख में औराक है, उन औराक को पलटने की भी जो है वो जस्तजू उसी वक्त ही पैदा होगी जब लोगों को पता चलेगा कि है क्या, चीज़ें हुई कब थी, कहाँ से हुई। तो आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। तो हम, अगर आप इसके साथ कुछ कहना चाहते हैं तो, वरना फिर हम अपने अगले कॉलर के पास चलते हैं।
2: बस मैं जनाब इंशाल्लाह ताला अली जुवेद भाई 1965 के शहदा को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, और आप नौजवान जो हाजिर दौर के नौजवान है, सबको सलाम पेश करता हूं, और अपने आप जज्बों को कायम रखें, इंशाल्लाह ताला सच का साथ दें।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा ये इस तरह का प्रोग्राम तो नहीं होता, मगर इसके साथ साथ क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, कल बहुत बड़ा दिन था, तो हम अपने फौजी भाइयों को, वो शहदा, वो गाजी, वो पुराने लोग जिनका इस जंग से या इस दिन से किसी ना किसी तरह से ताल्लुक रहा है, उनकी नज़र हम एक मिली नगमा पेश करते हैं, जो उस वक्त का नगमा था जब लोगों को उनमें जज्बा पैदा किया गया था। तो हम आपकी नज़र एक नगमा जो है पेश करते हैं।
2: बहुत शुक्रिया जी,
1: बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का।

0: ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਤਰ ਹੱਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁੜੇ। ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਗਮਾ ਥਾ 1965 ਕੀ ਜੰਗ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ, ਜਬ ਮੁਹਤਰਮਾ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੋਂ ਸੇ ਫੌਜੀਓ ਕੇ ਖੂਨ ਕੋ ਗਰਮਾਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਆਵਾਮ ਕੋ ਫੌਜੀਓ ਕੀ ਮਦਦ ਕੇ ਲੀਏ ਏਕ ਸੀਸਾ ਪਲਾਈ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਮੇਂ ਮਦਦ ਕੀ। ਸਾਮਾਈ ਨੇ ਏਕ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਏਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ 1965 ਕੀ ਜੰਗ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ, ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੋ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜੁਰਾਇਮ ਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇ ਹੋਤੇ ਰਹਤੇ ਹੈ, ਚਲਤੀ ਰਹਤੀ ਹੈ ਯੇ ਚੀਜ਼ੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ 1965 ਕੇ ਜਬ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਥੀ, ਉਨ ਦਿਨੋਂ ਮੇਂ ਏਕ ਵੀ ਜੁਰਮ, ਏਕ ਚੋਰੀ ਕਤਲੋਗਾਰ ਤੋ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਥੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੇ ਚੀਜ਼ੇ ਉਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਥੀ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਵੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜੰਗ ਕੇ ਦਿਨ ਥੇ ਉਨ ਦਿਨੋਂ ਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਸ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਥਾਨੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਹਾਂ ਪੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਏਕ ਵੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁਆ। ਤੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਲਗਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਅਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਆਵਾਮ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਥਾ, ਵੋ ਏਕਦਮ ਏਕ ਸੀਸਾ ਪਲਾਈ ਹੋਈ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਤ ਕੇ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਵਕਤੋਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵੋ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਰਹਾ, ਔਰ ਹਮ ਬਿਖਰ ਗਏ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹੂੰ ਅੱਜ ਕੇ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਤੋ ਹਮ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।
1: ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਰਾਸ਼ਨ ਆਤਰਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ
0: ਜੀ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੇ ਹੈਂ ਆਪ?
1: ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾ, ਆਪ ਸੁਣਾਏ?
0: ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ 1965 ਕੀ ਜੰਗ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਕੋਈ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤਾਸਰਾਤ ਕਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ?
1: ਮੈਂਨੇ ਆਪਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਸੁਣਤਾ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਕਭੀ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਤਾ ਹੈ ਤੋ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੇ ਯੰਗਸਟ ਕਾ ਕਾਮ ਹੈ, ਤੋ ਵੋ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤੋਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਕੋ ਬਤਾਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਹਮ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਸੇ ਸੁਣਤੇ ਹੈ। ਆਜ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਮੈਨੇ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪੇ ਯੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਲਗਾ ਹੂੰ, ਕਿ ਹਮ ਆਪ ਜੋ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵਤਨ ਕੇ ਲੀਏ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਵਤਨ ਕਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਸਨ 65 ਕਾ ਵੀ, 65 ਕਾ ਵੀ, 71 ਕਾ ਵੀ, ਅਭੀ ਵੀ ਕਾਰਗਿਲ ਕਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਹਮਾਰੇ ਸੀਨੇ ਮੇਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਯਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਵੋ ਥਾ ਸਨ 65 ਕਾ ਜੋ ਅਬ 65 ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸਕਾ ਬਤਾਏ ਉਸਕਾ ਬਤਾਏ, ਵੋ ਬਾਬੇ ਸਦਰੇ ਯੂਬ ਕਾ ਦੌਰ ਥਾ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਨਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਥਾ। ਆਜ ਜੋ ਆਪਕਾ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਹੁਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਤੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਮੇਂ ਮੈਂ ਵੋ ਬਾਤ ਕਰ ਆਪਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੂੰ, ਆਪਕੇ ਸਮੇਂ ਸੇ ਜੋ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਉਨਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੂੰ। ਆਪ ਰੇਡੀਓ ਪੇ ਤੋ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਾ ਵਾਲਦੈਨ ਕਾ ਯੇ ਹੱਕ ਬਣਤਾ ਹੈ, ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਲੇ ਕਰ ਜਾਏ, ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਇਧਰ ਜਾਏ, ਯੇ ਜੋ ਜਿਨਕੋ ਆਪ ਵੋਟ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਜਿਨਕੇ ਲੀਏ ਆਪ ਨਾਰੇ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ, 21 ਦਿਨ 31 ਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪ, ਆਪਕੀ ਹਮਾਰੀ ਮਾਏ ਬਹਿਨੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਸਭ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਇਨਕੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਨ ਲੋਗੋ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬੇ ਦੂਸਰੀ ਕੀ, ਪਹਿਲੀ ਕੀ, ਤੀਸਰੀ ਕੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਕੀ ਉਠਾ ਕਰ ਦੇਖੇ, ਆਪਕੀ ਇਹਨੋਨੇ ਸੂਰਤੇ ਔਰ ਸੂਰਤੋਂ ਕਾ ਮਤਲਬ ਵਹਾਂ ਸੇ ਨਿਕਾਲ ਕਰ ਕੁਫਰ ਕੀ ਜੰਗ ਉਨ ਕਿਤਾਬੋਂ ਮੇਂ ਛੇੜ ਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੈਸੇ ਕਰੇਂਗੇ? ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਤੇ ਕਰਤੇ ਹਕੂਮਤੋਂ ਕੀ, ਇਨ ਲੁਟੇਰੋਂ ਕੀ ਜੋ ਸੀਟੋਂ ਪਰ ਆ ਕਰ ਬੈਠਤੇ, ਏਕ ਨਹੀਂ ਯੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਐਸੇ ਥੇ, ਯੇ ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਯੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਯੇ ਸਭ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਨਕੇ ਪੀਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਤੇ? ਆਪ ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈ ਇਨਕੇ ਪੀਛੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਨਕੋ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏ, ਇਨਕੋ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਕੋ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਆਏ ਕਿ ਵਾਮ ਜਾਗ ਉੱਠੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਮ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹਮ ਜਬ ਵੀ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਵਾਲਦੈਨ ਕਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਵਾਲਦੈਨ ਔਰ ਵਾਲਦੈਨ ਕਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੋ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਸਕੂਲ ਭੇਜਤਾ ਹੈ। بچوں کو اسکول بھیجتا ہے ان کی فیسیں ڈبل پے کرتا ہے, ان کے گاڑیوں کے پیسے, اپنی روٹی بےچارہ کم کر دیتا ہے, ایک شلوار کرتے میں گزارا کرتا ہے پورا پورا سال, اور بچوں کو اسکول بھیجتا ہے.
2: بالکل آپ سن رہے ہیں جناب, راجہ حسنا صاحب ہیں, مسلم لیگ کاف کے صدر ہیں اور راجگان ویلفیئر سوسائٹی کے بھی صدر ہیں. یہ آنے والے دنوں میں ایک پروگرام کر رہے ہیں. راجہ صاحب اس بارے میں بتائیے جو آپ آنے والے بچوں کے بارے میں کوئی پروگرام بھی سنا کر رہے ہیں. ہلو جی راجہ, سوری راجہ صاحب کے ساتھ ہماری کال شاید ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے, ہم دوبارہ کال ملانے کی کوشش کرتے ہیں راجہ صاحب سے. تو سامعین, یہ جو جذبات ہوتے ہیں قوم کے اپنے اپنی فوج کے لیے, اپنے وطن کے لیے, یہ ایسے مواقع ہی ہوتے ہیں جن کے اندر آپ اپنی قوم سے, اپنے ملک سے, اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جذبات کا اظہار کرتے ہیں, اور ان شخصیات کے لیے, ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر, اپنے سب کچھ قربان کر کے اپنے وطن کی حفاظت کی, یا اپنے آنے والی نسلوں کو بچایا, ایک آزادی کی قیمت دی اپنے خون سے. بڑھ کر سب سے زیادہ نذرانہ خون کا ہوتا ہے انسان کی زندگی کے اندر, تو جن لوگوں نے اپنا خون بھی بہایا اس کے لیے, ہم ان کی آج بات کر رہے ہیں کہ 1965 کی جنگ کے حوالے سے. تو علی, آپ کچھ اور بات کہنا چاہ رہے ہیں؟
3: جی بالکل بھٹی صاحب, آپ نے صحیح کہا. اور جس طرح ہمیں ابھی بیچ میں کالز بھی آ رہی ہیں, تو جس طرح ہمارا سیاست کا تو خیر یہ پروگرام نہیں ہوتا, مگر پھر بھی ہمارے جو کالرز ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں جس طرح ابھی آپ شروع میں بات کر رہے تھے کہ جب دشمن نے ہمارے ملک کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی, وہ ان کا پلان یہ تھا کہ وہ لاہور میں صبح کا ناشتہ کہاں پہ کریں گے, دوپہر کا کھانا کہاں پہ کھائیں گے, اور رات کو وہ ہر چیز وہ فتح کر کے چلے جائیں گے. مگر اس وقت شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ان سوچوں کو خاک میں ملانے کے لیے ایم ایم عالم ہمارے پاس موجود تھے, جن کا ریکارڈ آج تک تاریخ میں کوئی بھی نہیں توڑ سکا, کہ انہوں نے کتنے سیکنڈز میں انہوں نے دشمنوں کے ساتھ طیارے جو ہیں وہ کھڑے کھڑے تباہ کر دیے. اس کے ساتھ اگر جو لوگ خوش قسمتی سے پاکستان کی سرحد میں آ چکے تھے, اس میں آپ دیکھیں کہ میجر عزیز بھٹی جیسے شہید جیسے جو لوگ ہیں وہ ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے تھے. وہ ان لوگوں نے ان کے پلوں کے اوپر, بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت ایسا جذبہ تھا کہ جہاں پہ انہیں لگا کہ اگر دشمن اس پل کے اوپر سے گزر کے آ گیا تو وہ واقعی قبضہ کر لے گا, ہمارے فوجیوں نے ان پلوں کو ہی تباہ کر دیا. جیسے ان کو پتا چلتا تھا کہ یہ جو ہے یہ جو ٹینک ہے ہماری طرف بڑھ رہا ہے, وہ فدائی حملے کر دیتے تھے. سب سے پہلا فدائی حملہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ پہلے فدائی حملوں میں ہی شامل ہوتا ہے کہ اپنے سینے کے اوپر بم باندھ کے وہ دشمن کے ٹینکوں کے نیچے گھس جاتے تھے, وہیں پہ ان کو نیست و نابود کر دیتے تھے. یہ تھا جذبہ, یہ تھی سوچ کہ پاکستان کو کس طرح پروان لے کے چڑھنا ہے. اس ہمارے یہاں پہ آج تک اگر آپ آزادی کی سانس لے رہے ہیں, ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں, ہمارا پاکستان جو ہے وہ ہے, تو اس میں ہمارے جو شہید ہیں ان کا خون ہے, اس مٹی میں شہیدوں کا خون ہے. وہ خون کی وجہ سے آج جو ہیں وہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کہتے ہیں, اس خون کی وجہ سے آج ہم فخر محسوس کرتے ہیں. اور یقیناً یہ بات ہمارے بچوں کو بھی پتہ چلنی چاہیے, یقیناً یہ بات جو ہمارے بزرگ ہیں وہ ان سے ہمیں معلوم ہوئی, انہوں نے ہمیں بتایا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آنے والے بچوں کو, آنے والی نسلوں کو یہ چیزیں لے کے چلیں. اس کے لیے ہمیں ہم کہاں پہ بھی ہوں, اگر ہمیں چھوٹی موٹی تقریبات کرنی پڑیں, پروگرام کرنے پڑے, چاہے وہ امبیسی میں ہو چاہے کہیں پہ بھی ہو, کوشش ہونی چاہیے کہ بچوں کو پتا چلے. تو ہمارے ساتھ ایک کالر لائن پہ ہیں, دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
3: جی بتائیے گا آپ کیا آج کے پروگرام کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟
4: آپ نے کون سا ٹاپک رکھا ہوا ہے؟
3: میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آج کیونکہ ویسے تو ہمارا گرین کارڈ کا پروگرام ہوتا ہے, مگر آج کے دن کی مناسبت سے ہم نے 1965 جو 6 ستمبر کا دن 1965 اور 7 ستمبر جو آج یوم فضائی ہے, اس کے حوالے سے ہم آج کا پروگرام کریں. اگر اس حوالے سے آپ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں گی تو یو آر مور دین ویلکم.
4: مجھے تو سب سے پہلے تو میری تو جتنی بھی تمام لائف گزری ہے, میری تو 65 میں میری تو نہیں تھی پینٹ کے یہ اس میں لڑائی میں میں نہیں تھی موجود اس وقت, لیکن کچھ سنا ہوا ہے लेकिन जब तक यहाँ पे भी रह के भी काफी जो है ना जो हमारी फौज के मतलब को और सियासत के मतलब को और बहुत कुछ सब कुछ हमने अपने आंखों से भी देखा है कि फौज किस तरह कर रही है और पुलिस वाले जैसे ये एहतजाज बैठे हुए ये लोग कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले मैंने आपके किसी रेडियो के ऊपर मुझे याद नहीं है कौन सा रेडियो था, लिंक था, पाक लिंक था या कौन सा था, किसी रेडियो के ऊपर मैंने सबसे पहले कहा था कि जनरल राहिल का बीच में वाला मैंने दिया था तो उसका किसी ने इग्नोर कर दिया, वो उसका ऑपोजिट है, वो किसी ने सर्च नहीं किया कि उसका क्या मेरी मीनिंग क्या थी, मैंने क्या कहना था।
2: अब्दुल कयूम भट्टी, आपकी बात माजरत के साथ काट रहा हूँ, आप हमें ये बताइए कि आज हम अपने मुल्क के पाकिस्तान के बारे में जब अपने बच्चों को बताते हैं, चूंकि आप एक बच्चों से माँ भी हैं, तो आप बच्चों की कैसे तरबियत कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों के हवाले से कि उनको पाकिस्तान का बताया जाए कि कितनी मुश्किलों से हमने पाकिस्तान हासिल किया था और कितनी मुश्किलों से हमने इर्द गिर्द के दुश्मनों से बचा के रखा हुआ पाकिस्तान।
4: बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। अगर मेरे बच्चे माशाल्लाह मेरे अभी 18-19 साल का एक बेटा है, आप सही कहते हो, अगर मेरा बच्चा भी अगर मिलिट्री में होता, मेरा अब्बा जी थे मिलिट्री में, तो अगर वो मिलिट्री में होता तो मैं उसको यही कहती कि जिस तरह आज के दौर में जिस तरह फौज को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही थी फौज को कि आप जाके तो अपने पाकिस्तानियों को मारो, फौज पाकिस्तानियों के लिए कभी नहीं हो सकती और ना अपने लोगों को मत मारो, फौज सिर्फ तो सिर्फ गैर बॉर्डरों पे होनी चाहिए जहां से आप समझते हो, जिस तरह अभी किसी एक मेरे भाई ने मैंने अभी सुना है आपका रेडियो खोला है पूरी ज्यादा देर मैंने आपका रेडियो नहीं
3: बिल्कुल
4: सुना,
3: आप, वो भी आपने सही कहा है, इस सिलसिले में आपने बिल्कुल सही कहा। देखें जिस तरह आप कह रही कि आपकी पैदाइश 1965 के बाद की हुई थी, फिर डेफिनेटली आपके बच्चे भी, हम जिस एज में हैं, हमने भी उन चीजों को अपनी आंखों से नहीं देखा मगर हमने अपनी आंखों से पढ़ा जरूर है, हमने इनको अपनी आंखों से किताबों में लिखा हुआ जरूर देखा है, अपने कानों से और अपनी आंखों से टेलीविजन में देखा है। ये एक जज्बा है और जिस तरह हम लोग आप लोग सारे बाहर रहते हैं तो आपका इस सिलसिले में आप कैसा सोचती हैं कि इस तरह के दिन जो है वो हमारी एम्बेसी में जरूर मुनक्कद होने चाहिए 14 अगस्त के साथ 23 मार्च के साथ साथ, ताकि हमारे बच्चों को ये पता चले कि हमारी फौज का बेसिकली काम सिर्फ यही नहीं है कि वो अपने मुल्क के अंदर अगर खुदा ना खास्ता कोई आफत आती है तो वहां पे जाते हैं, हमारे बच्चों को ये भी पता हो, हमारे बच्चों को ये भी पता चलेगा कि पाकिस्तान आजाद होने के बाद अगर आज हम सुकून की नींद सोते हैं अपने घरों में तो उसके पीछे किसका हाथ है, कौन लोग हैं जो हमें वो सुकून की नींद प्रोवाइड करते हैं। तो आप इस सिलसिले में क्या कहेंगी कि हमारी एम्बेसी को या हमारे जो यहाँ पे जितनी भी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कम्युनिटीज बनी हुई हैं, उनको इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करने चाहिए या नहीं?
4: सबसे पहले तो अम्बेसी वालों का बहुत ज्यादा किरदार अदा होना चाहिए क्योंकि अम्बेसी वाले सबसे पहले तो यहाँ पे जो बच्चे पैदा हुए उनके रास्ते ही इन्होंने बंद कर दिए, एक सेकंड, उनके रास्ते ही इन्होंने बंद कर दिए उन बच्चों के। सबसे पहले तो इन्होंने वहां, आप पहले भी आप कह रहे थे कि कोई आपके ही रेडियो में से कोई कह रहा था कि जब पुराने वक्तों की जब बात थी तो वहां पे कोई चोरी चकारी नहीं होती थी, तो ये सारी चीजें किसने हालात किए खराब, ये सारे जो पार्लियामेंट में जो पढ़े लिखे लोग आके तो उन्होंने कबाड़े किए, उन्होंने आके तो पार्लियामेंट में।
3: बिल्कुल जी, आपने सही कहा और हमारे पास क्योंकि प्रोग्राम का वक्त थोड़ा कम है तो आपकी
4: बस लास्ट में कहना चाहती हूँ, अगर बड़े लीडर सही होए, अगर बड़ा लीडर सही होए तो फिर जैसे आपके खानदान में कोई बड़ा होता है तो उसकी आप जगह में या उसको इनवाइट करते हो तो उसकी रिस्पेक्ट करते हो, ऐसा बड़े लीडर अगर सही होते तो हम नीचे तक, हम जो यंग जनरेशन है हम भी ना इस तरह करते।
3: इंशाल्लाह हमें इस सिलसिले में मायूस नहीं होना चाहिए, हमारे मुल्क का इंशाल्लाह ताला जो मुस्तकबिल है वो बहुत रोशन है, हमें सिलसिले में मायूस नहीं होना चाहिए। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। जिस तरह भट्टी साहब अभी मैं आपसे बता रहा था, एमएम आलम जो उनका पाकिस्तान की तारीख में बल्कि उनकी पूरी दुनिया की तारीख में जो जंगी जंग के हवाले से जब भी तारीख पढ़ी जाएगी लिखी जाएगी वो अभी तक वो टॉप पे रहेंगे इस सिलसिले में, क्योंकि उन्होंने आज के दिन 7 सितंबर सन 1965 पे दुश्मन के उन्होंने कितने त्यारे, मैंने आपको बताया था कि 5 जंगी त्यारे जो हैं वो 1 मिनट से पहले पहले तबाह बर्बाद करके आज भी उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है और शायद ये आने वाली हिस्ट्री में आने वाले वक्तों में ये रिकॉर्ड जो है वो नाकाबिले तस्खीर ही रहेगा। तो ये हमारे फौजियों का जज्बा था। और आप ये देखें कि उस वक्त भी हमारी फौज के पास खास जंगी साजो सामान मौजूद था, मगर वो उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी जो कि दुश्मन के पास थी। हमारे जहाज उस तरह के नहीं थे जिस तरह के दुश्मन के पास अच्छे जहाज थे, मगर इसके बावजूद हमने अपने उन्हीं हथियारों को उन्हीं जहाजों से दुश्मन के अजाइम को खाक में मिला दिया। दुश्मन यहां तक वो आज तक उसको वो ये दिन वो अपनी उनकी तारीख में स्याह दिन होगा दुश्मनों की तारीख में कि 1965 में 6 सितंबर 7 सितंबर और जितने भी दिन ये लड़ाई जारी रही थी उन्हें हमेशा मुंह की खानी पड़ी। उनके जितने भी सोचें थी वो हमारे फौजियों ने, हमारी कौम ने, हमारी नेशन ने उनके खाक में मिला दिए, नेस्तो नबूद कर दिया उनको। और आज भी जैसा मैंने कहा कि उनकी तारीख में ये एक स्याह दिन है, वो कभी भी इसको इस तरह अपनी कौम को ये बताते हुए शर्म महसूस करेंगे कि अगर उन्होंने पाकिस्तान जैसी गैरतमंद कौम के ऊपर जंग की थी तो उनको उसका क्या नतीजा भुगतना पड़ेगा। अभी आपने जिस तरह कहा था कि जब दुश्मन आए थे तो उन्होंने कहा था यहां से लाहौर सिर्फ जो है वो 2-1 मिनट का फासला रह गया, 42 कितना किलोमीटर था, मगर उन्हें अभी तक वो उस 42.9 किलोमीटर को पार करते हुए उनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, मगर वो 42.9 किलोमीटर तक वो नहीं पहुंच सकेंगे। उन्हें नहीं पता खा हमारे मुल्क में अंदरूनी तौर पर हम कितने ही आपस में वो बिखरे, जब कभी इस तरह के मामला आते हैं तो पूरी कौम एक यकलख्त हो जाती है, पूरी कौम फौज के पीछे खड़ी होती है, शाना बिशाना होती है, और पूरी कौम जो है वो भूल जाती है कि हमारे आपस में क्या रंजिशें हैं, क्या दुश्मनी है, कोई जात पात जो है वो खत्म हो जाती हैं, जो हमारी सियासी पार्टियां वो मुतहिद हो जाती हैं। ये हमारी सिर्फ पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से ये हमारी कौम में ही ऐसा जज्बा है कि वो आपको याद होगा कि 1965 की जब हम तारीख पढ़ते हैं तो जो हमारी नेशन थी, कौम थी, जिनके पास कोई इस तरह का जंगी साजो सामान नहीं था, वो डंडे लेके पहुंच गए थे फौजियों के पीछे कि हम खड़े हैं तुम्हारे पीछे, दुश्मन की यहां पे आने की मजाल ना हो, ये जज्बा था और ये जज्बा आज भी हमारी कौम में मौजूद है।
2: जी अली, बिल्कुल आप बात सही कर रहे हैं कि दुश्मन के पास जंगी हवाले से, जंगी साजो सामान के हवाले से और जंगी टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत ज़्यादा बर्तरी थी, लेकिन हमारे पास जिसकी बर्तरी थी, हमारे पास हौसला था, हमारे पास हिम्मत थी, हमारे पास जज्बा था। इसी जज्बे को लेके देखे, जंगें हौसले से लड़ी जाती हैं, हथियार की अहमियत होती है, लेकिन जब जज्बा नहीं होगा तो हथियार वहाँ पर नहीं चलते, क्योंकि हथियार को चलाने के लिए, जहाज को के दुश्मन के इलाके में जाने के लिए जज्बा चाहिए होता है और हौसला चाहिए होता है। वो उन्होंने हौसला किया, लेकिन जो उनको मुंह की खानी पड़ी उसके अंदर तो आपके सबके सामने है। लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
2: जी सर, कौन बोल रहे हैं?
5: मैं मसूद मिर्जा बोल रहा हूँ।
2: जी मसूद साहब, क्या हाल है आपके? क्या बात करेंगे आप 1965 की जंग के हवाले से?
5: इस वक्त मैं बस में हूँ, आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, इस वास्ते मेरे पास टाइम तो जरा थोड़ा है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि 65 की जंग मैंने देखी है, देखी इस लिहाज से है कि मैं होशो हवास में था जब ये जंग हुई है, और हम सड़क के किनारे बेतहाशा लोग खड़े होते थे, पानी की और क्या कहते हैं शरबत की सवीलें लगी हुई थी, और जब फौजियों के काफिले गुजरते थे तो उनसे बकायदा एक तो फूल फेंके जाते थे, और उनको वो थोड़ी देर के लिए रुक चलते चलते जिस तरह वो गिलास पकड़ा देते हैं तो उनको शरबत पिलाते थे और नारे लगते थे, नारे तकबीर। और माशाल्लाह मैं आपको मतलब वो जज्बा बयान नहीं कर सकता जो उस वक्त था। 65 की जंग तो एक कमाल का जज्बा था पूरी कौम का, लेकिन 71 की जंग में कुछ कौम बैठ गई। लेकिन उस, आप मेरी बात सुन रहे हैं?
2: जी मसूद साहब, आपकी आवाज चल रही है, ऑन एयर हैं आप।
5: अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। और ये जो उनसे हमारी एयरफोर्स है, इनके पास उसको सेबर जहाज हुआ करते थे, और सेबर जहाज जो उनसे हैं वो मतलब उस जमाने में भी कोई इतना खास नहीं था, लेकिन पाकिस्तानी पायलट और पाकिस्तानी टेक्नीशियन उन्होंने इस सेबर जहाज को इतनी महारत से उड़ाया था, और ये जब हमला करके वापस आते

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: होती है। और आपने किसी निकलने तो फिर आपको दो तरीके से निकलना पड़ता है।
1: ज़ाहिर है यहाँ का कानून कायदा जो होता है, जो उसको लेकर चलना होता है, मेरी पसंद या दूसरे की पसंद नापसंद तो नहीं हो सकती। यहाँ तो जमहूरी तरीका है, जितने लोग जो आएंगे वोट डालेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, जितने लोग जो है वो जेन्युइन डेमोन्स्ट्रेशन पर आएंगे उतना ज़्यादा उनकी बात सुनी जाएगी।
0: सही है, ये आपकी बात सही है। आप देखें ना, मेरा साहब कोई गुस्सा करे या ना करे, मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको 1 साल पहले कहा था कि इलेक्शन भी बहुत ज्यादा इस्लाम और मुसलमान पे आएगा, और आस्ता आस्ता आप चीजें देखना कि कुछ चीजें टफ होंगी। आपके सामने है कि कुछ चीजें तो इलेक्शन भी बड़ा टफ आया था, आपने हेलसिंग में भी देख लिया क्या हो गया, और चीजों में भी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये 5 सितंबर को जो डेमोस्ट्रेशन हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि डेनमार्क के अंदर दो बिग पार्टियां विंस्टा और कंजर्वेटिव ने उस चीज को कंडेम किया है, मगर उस पे हमको भी फ्रंट पेज पे आना चाहिए। कुछ लोग हमारे आए हैं, उन्होंने लिखा भी है और उसके खिलाफ भी लिखा है, और कुछ स्टेटमेंट पे लिखा हुआ है। जैसे मैंने फेसबुक पे लिखा था, आज एक बंदे ने बड़ा अच्छा जवाब मुझे दिया हेल्थ के मामले पे, कहता है बात तो तुमने सही की है, मसला ये है कि ये तो कोर्ट में जाएगा। मैंने कहा ये तो डेफिनेटली कोर्ट में जाएगा, क्योंकि आप एक परमिशन लेके कह रहे हैं। मैंने कहा कि ये कह रहे थे कि कल्चर हाउस हम बना रहे हैं, मैंने कहा आपने इजाजत दे देनी थी, इन्हें कल्चर हाउस बना लेना था, बस फर्क ये रहना था कि इन्हें कल्चर हाउस बना लेना था, मगर जिस जगह से आप बैंड कर रहे थे वो फिर प्रॉब्लम तो उस वक्त आनी थी। अब इन्हें आपसे सच बोला, आपने इनसे ज्यादती की है, तो बात इन्हें मस्जिद कह दिए तो नहीं बनाना, मसला कोई है नहीं है। जिसके साथ मसला था वो एक स्पार है उधर, कोई स्टोर है, उसने मसला डाला हुआ था, वो भी उसकी भी आज सच का नहीं निकला ये कि उसकी पार्किंग के अंदर 4 से 5 ज्यादा गाड़ियां खड़ी होती एक टाइम पे। मुझे तो पता ही नहीं कि पे उसको मुसीबत क्या थी, और उसने इतना बड़ा क्या कहते हैं इस तरह की हरकत क्यों की है, ये तो किसी को समझ नहीं आ रही।
1: अदनान, देखे ना, किसी की पार्किंग में गाड़ी करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि ये इतनी घर बात पे दाव लगा के जो है वो कानून को बाईपास करके आगे बढ़ा जाए, ये भी तो कोई तरीका नहीं है। खुद भी तो कोई बंदे को एटिकेट्स होने चाहिए।
0: देखिए राजा साहब, बंदा देखें कुछ 1 में से 20 होते हैं जो जो होते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं एब्सलोन का मुंह में रहता हूँ, यहाँ पे एक मैं उसका टेक्निकली मैं बताता हूँ, उसका मिसाइल करता हूँ। उसकी एक मसला था कि 72% वो क्या कहते हैं गैर मुल्कियों पे जा रहे थे, और 38% जा रहे थे गोरों पे। मगर जब हमने देखा ना कि दूसरी जगह जहाँ पे वो मिसाइल के लिए प्रॉब्लम के लिए जहाँ पे वो जा रहे हैं वहां पे हमारे पास जगह नहीं उसके लिए, तो फिर जब हमने एनालाइज किया ना तो वो यही कह रहा था, देखें कि हम गैर मुल्कियों का केस बहुत जल्दी ले लेते हैं और गोरों का केस हम इतनी जल्दी नहीं लेते। तो मैंने कहा यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गैर मुल्की ने सर किया भी ना कुछ हो तो आप केस उठा लेते हो, आप देखते नहीं हो, फिर आपके खर्चे फालतू तो हो जाते हैं। मैंने कहा ये मतलब नहीं कि एक गैर मुल्की ने चपेट मार दी या कुछ कर दिया तो 20 चपेट मार देंगे। मैंने कहा सर सोच समझ के आप देखा करें कि सामने क्या हो रहा है।
1: एक बंदे की गलती को एक बंदा ही काउंट किया जाए, सबको काउंट ना किया। अदनान, आपने देखा डेफिनेट, आप बच्चों को सुबह देखते हैं, मैं भी कभी कभी ये देखता हूँ, सर्वे भी करता हूँ, स्कूल के बच्चे भी जाते हैं, उसके बाद जो है वो वालदैन छोड़ने भी आते हैं, उसके बाद फुटबॉल पे भी लोग जाते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में जाते हैं, कॉलेज में भी जो बच्चे जाते हैं, तो आप सुबह देखें कि किस तरह जो है वो ज़ेबरा क्रॉसिंग पे लाइनें लगी होती हैं, किस तरह साइकिलों की लाइनें लगी होती हैं, और कितने बच्चे कितनी तादाद में कॉलेज के बाहर खड़े हों तो बंदा होता है यार इतने लोग आते हैं, स्कूलों के बाहर खड़े होकर देखें तो बंदा कहता है इतने लोग आते हैं, बाहने में जाकर देखें तो बंदा होता है यार इतने बच्चे छोटे आते हैं। तो ये चीज़ें सबको पता होनी चाहिए ना कि
0: देखे ना
1: जनरेशन
0: कि
1: तब्दील हो
0: एक
1: रही है, ये बच्चे क्या
0: सिस्टम,
1: सीखें, ये यही कुछ सीखेंगे जो इनका कानून कहता है इनको सिखाता है।
0: जी, ये देखे ना ये डिसिप्लिन है, बहुत बड़ा डिसिप्लिन है। मैं आपको एक बात बताऊं, फर्स्ट डे था स्कूल का, मैं अपनी कमू में गया और मैं बच्चों बच्चों को छोड़ने गया, मैं उधर बोर्ड का मेंबर भी था, मेरी जिम्मेदारी भी थी। एक ने गाड़ी गलत खिला दी, कहती है मेरे पास कोई जगह नहीं है। मैंने कहा मतलब तेरे पास जगह नहीं है, तो कहती है टाइम नहीं है। मैंने कहा मुझे एक बात बता, तो मैं नहीं तब

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से पेश किया जा रहा है। तो इस वक्त जो हमारी मेहमान हैं वो लुबना इलाही साहब हैं, ये साबका सिटी काउंसलर हैं और नौजवान सियासतदानों में इनका सबसे पहले नाम आता है, और उसके बाद सिकंदर आया, वो भी नौजवान था। आज सिकंदर से भी बात होगी, लेकिन वो उनका टाइम अपना अपना टाइम होता है, बाकी बातें भी करेंगे, हम खुद भी एनालाइज करेंगे, हमारी टीम भी एनालाइज करेगी, लेकिन साथ साथ जिन जिन के मेहमानों का टाइम होगा तो टाइम की पाबंदी हम अगर खुद नहीं करेंगे फिर दूसरे कैसे पाबंदी करते हैं। सामे नाज़रीन, इस वक्त लुबना इलाही साहब हमारे साथ हैं। लुबना, आपको एक बार फिर अदारा आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: सुनने वालों की खिदमत में सलाम और शुक्रिया के आपने मुझे वक्त दिया।
1: लुबना, चूंकि वक्त इसलिए आपका बनता है, आपका बोलना बनता है कि आप बहुत पुरानी सिटी काउंसलर रहीं और उसके बाद लोकल जो तंजीमात हैं इसमें भी बढ़ चढ़ का हिस्सा लेती हैं, पार्टी की आप मेंबर हैं, हुकूमती जमात पार्टी की आप मेंबर हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कम्यून को देखती हैं, पार्लियामेंट को देखती हैं। आए दिन ये जो नए नए कानून नेशनैलिटी के हवाले से या दूसरे चीज़ों के हवाले से, कैटेगरी 5 के हवाले से कोई बात नहीं की जाती, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल जो बहस चल रही है कोपेनहेगन पार्लियामेंट में या कम्यून में या अखबारात में चल रही है, इन सारी चीज़ों को आप किस तरह देख रही हैं?
2: मैं सब इन सारी चीज़ों की को ऐसे देख रही हूँ कि जिस तरीके से बगैर सोचे समझे आगे पीछे दाएं बाएं वोट फेंके गए हैं या दिए गए हैं और कुछ लोगों ने दिए नहीं, ये जस्ट सिंपली उसका रिजल्ट है, ठीक है ना। जैसे कि जिस पार्टी से मैं हूँ रेडिकल वेंस्टा की, हम इस चीज के हामी है कि बच्चों को बाय बर्थ नेशनैलिटी होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि डेनमार्क में एक कानून है कि जब वोट पार्टियों को मिलते हैं तो उनको अलग करना पड़ता है, ये उसमें आइन में है, तो ना चाहते हुए भी जो नहीं वो ऐसी चीजें हो जाती हैं कि जो इंसान नहीं सोचा, जो कि पार्टी के प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है या पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं है। तो मैं तो आपको पता है जब से ये पार्लियामेंट के इलेक्शन का रिजल्ट आया मैं तो उसी दिन से कह रही हूँ कि ये हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलेगी, और अब तो मेरी वाकई दुआ है कि ये ना चले ना, क्योंकि एक बंदा इस मुल्क में यानी द की फॉर द राइट्स इज के जब भी कहते हैं कि तुम पहले अपने फराइज अदा करो उसके बाद अपने हकूक मांगो, तो फराइज ना अदा करने की तो कोई तुकी नहीं बनती ना, मतलब हम अपनी मर्जी से टैक्स तो नहीं देते ना, जैसे मैं को मेरा दिल नहीं है वो तो खुद ब खुद काट लेते हैं, बल्कि अक्सर औकात ज्यादा ही काट लेते हैं, फिर 2-3 साल बाद ख्याल आता है कि नहीं ये नहीं ये था। तो ये है कि लोगों के लिए इन्होंने एक तरीका बनाया, मैं इससे एग्री नहीं हूँ, बट जब आप सारे इस प्रोसीजर से गुजर के क्वालिफाई करते हैं तो फिर तो कोई बहस नहीं ना होनी चाहिए, लेकिन फिर भी है क्योंकि बेसिकल देना ही नहीं चाहते। तो मैं थोड़ी सी परेशान हूँ कि इसका एंड क्या होगा, क्योंकि एक ही जुमला आता है कि सामे उलो सामे उलो, मुझे बिल्कुल ये समझ नहीं आती कि सियासी तौर पर ये चाहते क्या है। जैसे जो ईस्ट यूरोप के लोग हैं वो जेलों से भरे हुए हैं, लेकिन जब कहते हैं कि जेलों में ज्यादा जराइम पेशा लोग हैं तो सिर्फ ये कहते हैं इनवान, तो उसमें बताते नहीं कि कौन से हैं। याद होगा आपको एक जमाने में साफ लिखते थे फलाना जुर्म उसके आगे या मुसलमान या पाकिस्तानी, तो वतीरा ही चेंज हो गया। और दूसरे जो हमारे अपने बच्चे बच्चियां मुख्तलिफ इदारों में हैं, काश वो मिल बैठे हमारे पास जज से लेके वकीलों से लेके डॉक्टर से लेके, लेकिन वो नहीं बैठते, वो पाकिस्तानी तंजीमों से इंतहाई एलर्जिक है, वो इसको वक्त का एक जाया करना समझते हैं, अपने ट्रेड यूनियन में काम करते हैं, क्योंकि जब तक इनके अंदर से कोई आवाज नहीं उठेगी कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप वोट करने की बात डालें तो वो मतलब जिनको आपने वोट डाले हैं जाए उनका गिरेबान पकड़े कि भाई आपकी पार्टी ने ये की है, अनपढ़ तो कोई भी नहीं यहाँ पे, लेकिन नहीं वो बस उन्हीं दिनों एक माहौल उठता है कि जी इसको वोट देना है इसको नहीं देना, ये करना है वो करना, उसके बाद अल्लाह तेरी यारी खत्म।
1: आपने बिल्कुल बजा फरमाया, आपने बचपन جوانی جو ہے اس سیاست کی صحرا میں گزاری اور بہت ایکٹیو گزاری صحرا میں. آپ اس پارٹی کے آپ ممبر ہیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ نے کھل کر واضح ثبوت کے طور پر بات کی کہ ہماری پارٹی کا جو منشور ہے بائی برتھ جو ہے وہ نیشنلٹی ملنی چاہیے, لیکن آپ کی پارٹی ہر حکومت میں رہی, کون سی حکومت میں جس میں یہ پارٹی شامل نہیں ہوتی, اور جب یہ بات آتی ہے کہ یہ غیر ملکیوں کو حقوق دیے جائیں تو کون سی مسلطیں ہوتی ہے, یہ خاموش ہو جاتے ہیں.
2: یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک چیز نا, بہت ساری چیزیں وہاں دیکھنی پڑتی ہیں, لیکن اس کا ایک ہی حل ہے چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, کہ پارٹی کے جو اندر لوگ ہیں, پارٹی کے جو ممبرز ہیں, میں تو اپنے طور پہ کر رہی ہوں لیکن میں کتنا کچھ اکیلا کروں, تو میں نے تو ان سے باقاعدہ کہا ہے کہ جی یہ آپ کا بجٹ پیش ہونے کے بعد, یہ اکتوبر میں بجٹ ہوتا ہے, تو میں آپ لوگوں سے ملنا چاہتی ہوں, جو لوگ انفوس کارڈ کی اس میں کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے بات چیت کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی سیاست کیسے, جو اپنا پروگرام ہے اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے, مطلب کیا خیال ہے آپ کا کیسے کریں گے, کیونکہ میں اپنا ٹائم دیتی ہوں, میں متحرک ممبر ہوں, آئی ہیو ایوری رائٹس ٹو آسک کہ بھائی تم نے کیا کیا, لیکن ان ووٹ اسی دے کے ڈبے چ بند کر کے میٹھی نیند سو جائیے بیری تلے, پھر تو کچھ نہیں نہ ہو سکتا.
1: بیری تلے سو جائیں لبنا, دیکھیں کہ کاشف جو ہیں وہ کوپن ہیگن کمیون میں ہیں, پارلیمنٹ کا الیکشن بھی لڑتے ہیں, بڑے متحرک ہیں, بڑے دھیمے مزاج سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں. زہیر علی ہیں, وہ بھی ریڈیکل ونسٹا کے ہیں, ان کا بھی اثر و رسوخ ہے. اسی طرح پرانے ہیں ندیم فاروق جو ہیں, وہ بھی اسی پارٹی کے ہیں, تو اور بھی بہت سارے لوگ اس پارٹی کے ہیں, تو یہ اپنی پارٹی میں آواز کیوں نہیں اٹھاتے, یہ ساری ذمہ داریاں آپ پر آتی ہیں.
2: نہیں, میں تو اپنے طور پہ اٹھاتی ہوں, میں اور کاشف مل کے کام کرتے ہیں, ہم دونوں نے جتنے خطوط لکھے ہیں ہم نے مل کے لکھے ہیں, اگر میٹنگ ہمیں انہوں نے دی تب بھی میں میرے ساتھ ہوگا, لیکن ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک ہے یا دو ہے یا دس ہے, لیکن اگر یہی آواز مختلف کیا کہتے ہیں علاقوں سے آئے, مختلف لوگ اس کا کریں, دیکھیں ہم کسی بھی پارٹی کا کے ممبر ہوں, لیکن ہمارا طرز گفتگو, دا وے ٹو ایکسپلین, اپنی بات سمجھانا, اپنا مدعا پیش کرنا, یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوں تو اللہ کیا سے کیا ہو جائے, کیونکہ اس کو کہتے ہیں پریشرائز کرنا, ان کو پتہ انہوں نے پوچھنا ہی نہیں مڑ کے, اگلی دفعہ ان کو یاد آئے گا کہ ہم نے کوئی اپنا بندہ کھڑا کرنا ہے, پھر اس کو کھڑا کریں گے, پھر اس کی کمپین کریں گے, تو بس کہانی ختم, ہم نے تو کبھی ان سے کچھ مانگا ہی نہیں.
1: لبنا, میں آپ کی بات کو لے کر چلتا ہوں کہ ہمارے لوگ, ہمارے سے مراد ہے غیر ملکی ڈینش نژاد جو پارلیمنٹ کا الیکشن لڑ سکتے ہیں, باقی تو کمون کا بھی الیکشن لڑتے ہیں, سٹی کونسلر بھی ہیں, پارلیمنٹ کے ممبران بھی بنتے ہیں, ہماری غیر ملکی جو ہیں وہ نژاد جو ہیں وہ ڈینش ہیں, بائی برتھ ہیں, اپنا ان کے والد صاحب یہاں آئے, وہ اب وزیر بن چکی ہیں, تو اگر یہ لوگ اپنے پارٹی منشور پر ہی عمل نہیں کرتے تو ان پارٹیوں میں جانے کا کیا فائدہ کہ اپنے منشور پر ہی عمل نہیں کرتے.
2: راجہ صاحب, ایسا نہیں ہے کہ ایک وہ ڈکٹیٹ ہے املا کے پارٹی کے منشور میں یہ لکھا ہے, ان کے اوپر دوسری طرح کا پریشر ہوتا ہے, بجٹ کی ساری کہانی ہے, ایک پیوند کاری ہوتی ہے, ادھر سے پکڑ ادھر سے جو نہیں ہے, لیکن پریشر ہونا چاہیے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں, ہم جیسے کہتے ہیں کہ 100% امپلیمنٹ کریں تو شاید 50% کر دیں, لیکن کریں تو صحیح نا, اور یہ ساری پارٹیوں کی, کیونکہ ڈینمارک میں ایک بڑی عجیب سی شک ہے کہ آپ اس کو ووٹوں کو آپ نے ضائع نہیں کرنا, آپ نے یعنی حکومت بنانی ہے, اسی طرح بجٹ میں بھی ہے کہ آپ کو اس میں انوالو ہونا پڑتا ہے, تو لیکن ہے کہ میں پھر کہوں گی جو ہمیشہ سے کہتے ہیں, جائیں اپنی پارٹیوں کو اپنی پارٹیوں کے ساتھ کام کریں اور اس میں بھول جائیں کہ کون کیا ہے, یہ جو آپس کی وہ کیا کہتے ہیں ٹسل ہے اس کو بھول جائے, صرف جو ہمارا ایشو ہے اس کو یاد رکھیں, ہم تو سارے مطلب بچے نہیں ہیں, اپنی اپنی زندگی پچھے اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں, لیکن اپنے بچوں کے لیے تو کچھ کر جائیں نا, بچوں کو کیوں سزا ملتی ہے کہ ان کے پیرنٹس نہیں کوالیفائی کر سکتے, ڈینش نہیں بول سکتے یا جرائم پیش ہے, بچوں کا اس میں کیا قصور ہے جو یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں. میرا تو ایک ہی آرگومنٹ ہے کہ بچے جو نہیں وہ یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں, یہاں کے اسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں, بے شک ان کے پیرنٹس یا والدین ڈینش نیشنلٹی.
1: آپ اردو بہت اچھا بولتی ہیں, पता नहीं चलता कि आप पंजाबी हैं, कश्मीरी हैं, पश्तो स्पीकिंग है। इसी तरह सिकंदर उर्दू बहुत अच्छा बोलता है और भी लोग उर्दू अच्छी बोलते होंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। लुबरा, आप जिस तरह आज़ादी से बोलती हैं, आप ही तो पार्टी की मेंबर हैं, आपको क्यों नहीं डर लगता? आप सब जगह अपना आवाज़ उठाती रहती हैं, यही जमहूरी हक है जो आप अपना हक इस्तेमाल करती हैं। तो ये कैटेगरी 5 वाला मामला है, किसी जगह पे भी गैर मुल्की जो है, आपकी याद में होगा कि कभी गैर मुल्की अपने मफाद के लिए बाहर डेमोन्स्ट्रेशन करके निकले अपना हक मांगने के लिए?
2: राय साहब, ये सारे पार्टी के अंदर, क्योंकि आप बाहर निकलेंगे तो नाराजगी हो जाएगी कि जी आपने घर के कपड़े गंदे बार धोए हैं। पार्टी की कमेटियों में बैठे, पार्टी के हलके में काम करें, तजावीज हलके के जरिए भिजवाए जाए अपने हलके की, जो आपकी मीटिंग महीने दो तीन महीने बाद होती है उसमें अपना मुद्दा रखें, वहां से पास करवा के आगे लेके जाए ताकि उनको पता हो कि ये अकेली बंदा या बंदी नहीं है, ये सिर्फ पार्टी के जरिए ही हो सकता है। और जहां तक डरने की बात है, जब मुझे ऑलमोस्ट 9,000 के करीब पर्सनली वोट मिले थे और मैं बड़ी खुशी से अपनी उस मीटिंग रूम में गई थी, वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस था, सांस लेगी लोगों के सांस की आवाज आ रही थी, मुझे किसी ने भी नहीं उठ के कहा मुबारक को बहुत अच्छा रिजल्ट है। मुझे वहां समझ आ गई थी कि मैंने क्या करना है, क्योंकि वो तो मेरे से कुछ नहीं छीन सके ना। मैं मतलब मैंने उनसे उस वक्त था, क्या था, कोपेनहेगन को उन्होंने यूरोप का सकाफती शहर मेंशन किया था, ये चुना था उसके लिए। तो मैंने ये कहा था कि मुझे ये, मेरे पास इतने वोट है, आई वांट टू बी अ मेयर। उस पे जी हम इतनी कि हम जो मेयर बैठा होता है उसको नहीं उतारते, हम ये नहीं करते। तो उन्होंने 253 वाले बंदे को जो नहीं वो मेयर बना दिया था, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते।
1: इसका मतलब तो वोटों की रिस्पेक्ट नहीं की गई?
2: नहीं, वो क्योंकि मेरे वोट से 2 लोग और बने थे तो वो उसका तो कोई जिक्र नहीं ना। लेकिन है कि उस चीज ने ना मुझे फुलाद का बना दिया जो मेरे साथ हुआ था ना उसमें। उसके बाद फिर हमारे कुछ पाकिस्तानी भी थे उस वक्त, बड़े मुतरक थे, वो वहां जाके SF से मीटिंगें उन्होंने की हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ने उन्हें इसी मिशन के लिए भेजा था। इस दुनिया में हर इंसान का अपना मिशन होता है ना। उन्होंने जाके बताया कि जी हम पाकिस्तानी इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। फिर जो है, क्योंकि ये कहना गलत है कि मुझे, मैं हर किस्म के लोगों से मिलती थी।
1: नहीं, आपको तो वोट्स मिले थे ना, चाहे पाकिस्तानी थे चाहे डैनिश थे, जिन्होंने भी दिए वोट, तो बाकी किसी को क्या हक पहुंचता? आपको तो जिन्होंने वोट दिए वो तो सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए आपको वोट दिए।
2: मुझे डैनिश, अरबी, इवन सिगोइना ने मुझे वोट दिए। मतलब ये नहीं कोई कौम कह सकती कि वो किया। मैं आज भी नैरोब्रो में जाऊं, मेरा पहला हल्का था, आज भी मैं जाती हूं, मेरा कोई इरादा नहीं इलेक्शन लड़ने का, लेकिन मैं बड़े जाती हूँ उन दुकानों पे, उनसे बातचीत करती हूँ, उनको कुछ छोटा मोटा काम होता है कर देती हूँ। तो लेकिन वो जो जिस तरीके ने इन्होंने मुझे, मेरे दिमाग को, मुझे नहीं फिजिकली, मेरे दिमाग को एक एक जिस तरह आइसोलेशन में, हिफ्ज़े बिजा में नहीं रखते कि इससे बात नहीं करनी, इससे ये नहीं करना, इससे वो नहीं करना, उस चीज ने मुझे फुलाद का बना दिया। मैं सिर्फ अपने काम का सोचती हूँ, आई डोंट केयर वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैं सिर्फ अपने अमल की जिम्मेदार हूँ। और ऐसे मुसलमान हमारे मुनको नकीर बैठे हुए हैं दोनों कंधों पे, तो हमें यही करना चाहिए। तो मैं इस चीज की परवाह नहीं करती कि पार्टी से निकाल देंगे या नहीं कर देंगे। और हमेशा याद करें, याद रखें कि जिस चीज से आप डरते हैं, जिस चीज से आप डरते हैं, आपके दुश्मन को पता चल जाता है और वो उसको यूज करता है। मैं तो नहीं डरती ना, उस वक्त के बाद मैं कभी भी नहीं डरी, कभी भी नहीं। उस वक्त मैं भी इलेक्शन के दिन थे, लेकिन मेरे SF से लेकर सोशल डेमोक्रेट में जब भी बयान आते थे तो मैं मतलब पूरे, जिसको पंजाबी में कहते हैं तड़ले से, वो बोलती थी। मुझे कुदरती तौर पे मेरे वालिद साहब ने मुझे बनाया इस किस्म का, मेरी तरबियत इस किस्म की हुई है कि आप किसी से बदतमीजी ना करें, लेकिन अपना मुद्दा जरूर बयान करें, क्योंकि आप अपना मुद्दा बयान करते हैं, मैं अपना करती हूँ, उससे तीसरी खूबसूरत चीज निकलेगी। ये कोई बात नहीं कि आप हर वक्त ये कि मैं आपको बताऊं, तो शरारतन मैं कभी कह देती हूँ किसी महफिल में ना, कोई शख्स बार बार के मैं आपको बताऊं, तो बड़े शरारतन मैं कह देती हूँ, भाई मैंने तो नहीं आपसे पूछा, आप क्यों बताएंगे, जब पूछूंगी तो बता देना। हम ठोसते हैं अपनी क्या उसको राय एक दूसरे पे ना, ये गलत बात है।
1: लुबना, ये कितने दिनों की हुकूमत बाकी है?
2: मुझे देखिए, अब बजट होना है, अब देखिए क्या होता है। पहली तो इनकी लड़ाई हो गई है ना, तो अगर इसी तरह अपनी अपनी जैसे एसएफ के जो लोग हैं, जो इनिस लिस्ट के लोग हैं, वो अपने अपनी पार्टियों को जरा हैंड्स अप करें ना, कि ये इलेक्शन के दिनों में, सॉरी ये जो डेन स्टेट्स वो डेनिश नेशनैलिटी की बात है, तो ये तो इनका पहला बजट है ना। मेरा ख्याल है अगला बजट तक निकाल लें तो बड़ी बात है, मेरी तो उम्मीद
1: क्योंकि
2: है उससे
1: असेंबली
2: पहले
1: के
2: टू
1: सोशल डेमोक्रेट में भी इस तरह की जो ग्रुपबंदी होगी है, इस पर भी इख्तलाफात हैं वजीर आजम के साथ।
2: बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक पुराना ग्रुप है जो जिसमें पॉल न्यूकॉप, यूटे हिल्डन, मुझे तो अब याद भी नहीं कि क्या नाम था उसका,
1: मोन
2: बियर
1: ल्यूकेटॉफ,
2: वाइस, मोन मोन स्लुकेटॉफ, वो मौजूद है, वो मौजूद है, लेकिन उनकी अकलियत है, इतने ज्यादा वो लोग नहीं है, बट दे आर देयर, और वो बिल्कुल मेटर फर्गसन को नहीं पसंद करते, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, जो भी नया आता है वो अपनी कुर्सी के लिए सारे बंदों के
1: तो
2: पास
1: पार्टी
2: एक
1: फॉर
2: कुछ,
1: मैन बहुत तगड़ा होता है, बहुत पावर होती है उसके पास।
2: लेकिन ये लोगों को अपने साथ मिला लेती है। इसके जैसे इसको अभी पिछले दिनों एक स्कैंडल था कि इसने अपने भाई को की जॉब लेके दी है, इसने फलाने को लेके जॉब दी है, इसके इतने स्कैंडल हैं आज तक। यानी डेनमार्क में जो असूल है, जो तरीकाकार है, कि जब किसी का क्या कहते हैं, एक वो था तामल केस था, कंसर्वेटिव का एक था, मुझे अब इस वक्त उसमें नाम नहीं आ रहा, उसने खड़े खड़े
1: पॉल
2: इस्तीफा दे
1: श्लूटा
2: दिया था,
1: जिस पर रिजाइन देकर
2: पॉल
1: गए
2: श्लूटा,
1: थे।
2: यस यस पॉल श्लूटा, ये पहला जो है सोशल डेमोक्रेट का चेयरमैन है जिसके स्कैंडल जो भी आते हैं इसका हाजमा इतना स्ट्रांग है, उसको निगल जाती है, कुछ कुछ भी नहीं होता। ये जब गई थी कोरोना के दौरान इसराइल में मीटिंग करने, किसी को नहीं पता था, फिर इसने वो जो मिंक्स होते हैं उसका फॉर्म दिलवा दिया, फिर पता नहीं क्या क्या, यानी बहुत सारी चीजें हैं। तो अब ये
1: लुबनान
2: पाकिस्तान
1: चलें
2: तरीके
1: सियासी तौर पर देखा जाए तो अगर सियासी पार्टी, आपने तो पार्टी के मंशूर का कह दिया कि आपकी पार्टी के मंशूर में लिखा हुआ है, क्या बाकियों की पार्टी के मंशूर में भी लिखा हुआ है? ये अपने मंशूर पर अमल नहीं करते ये सारी सियासी जमातें।
2: देखें, पार्टी का मंशूर एक आपकी गाइडलाइन होती है। असल कुव्वत जो है पार्टी के, जो छोटे छोटे हलके होते हैं, वो अपनी तजावीज जो इनकी सालाना मीटिंग होती है वहां पे पेश करते हैं, और फिर जो वहां पे मंजूर होता है या मैनोफेस्टो से निकाला जाता है या डाला जाता है। तो मैं इसलिए नहीं कि मैं बजी दूं कि नहीं यही करो यही करो, यही एक रास्ता है अपनी बातें इंप्लीमेंट करवाने की, अपनी बातें मनवाने की। आप बाहर गोल्स प्लेस पे खड़े हो जाए कोई फर्क नहीं, आप अपने जो साथी हैं उनसे लड़े, लेकिन एक जो पार्टी के अंदर जमहूरी तरीके है कि पार्टी के हल्के के जरिए आपने अपनी बात मनवानी है। एक वक्त था कि यहाँ पे खातून थी, इस्टब्रोसे कोस्टर थी, रेडिकल वेस्टा की, तो वो रेडिकल वेस्टा की इंटरनेशनल कमेटी में काम करती थी, वो और कुछ दूसरे लोग जाके हमने मंजूर करवाया था जिसको हुबिस्टुअल से कहते हैं, कि कश्मीर के बारे में जो रेजोल्यूशन पेश हुआ था वो उस खातून ने करवाया था अपनी इंटरनेशनल उजवेल में। पहले हमने काम किया, हम 8-10 लोग थे, फिर उसने फर्दर आगे पेश किया कि ये होना चाहिए। और डेनिश सियासत में रेडिकल वेस्ट वाइट पार्टी है जिसने बराबरी की सतह पे होते हुए कश्मीर को एक जो है एक क्या कहते हैं मकाम दिया है, और बकायदा उसके बारे में वोटिंग होके एक रेजोल्यूशन पास हुई थी कि यूएनओ या उनको इनका जो हिफाजती सलामती कौंसिल है उसके एजेंडे में इस चीज को शामिल करें कि लोग अपना वोटिंग के जरिए जो क्या कहते हैं उसको हके खुद इरादी करें और वोट
1: हके
2: डालें।
1: खुद अरादियत,
2: हाँ, खुद इरादियत, बहुत कम लफ्ज इस्तेमाल होता है ना तो कभी भूल जाता है आदमी। तो लेकिन है कि ये
1: लुबना
2: दरवाजे
1: चले ये
2: खुले
1: सारी बातें चलती रहेंगी, आपने कहीं जाना था तो मैंने आपका ज्यादा टाइम ले लिया। लुबना एंड गेम क्या होगी? सियासी बात मैं कर रहा हूँ कि सारी जमातों में गैर मुल्की बैठे हुए मौजूद हैं, जिस तरह हम कैटेगरी 5 की बात करते हैं, कैटेगरी 5 पर कोई अमल दरामद नहीं होता। हमारे डेनमार्क के पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं और दिन ब दिन आपस में जो ज्यादा मोहब्बतें कुर्बतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ये मामला कैटेगरी 5 वाला वहीं तक है। आप रेडिकेल में मौजूद हैं, दूसरे लोग भी मौजूद हैं, सोशल डेमोक्रेट में भी लोग मौजूद हैं और इन लिस्टन में भी लोग मौजूद हैं, और जो बड़े बड़े दावे किए गए, चूंकि आपका कोपेनहेगन कमून का भी बहुत तजुर्बा है, बड़े बड़े दावे किए गए, दांतों का इलाज, आंखों का इलाज, अस्पतालों का इलाज। लुबना एक सवाल है बॉटम लाइन, आपकी अगर ना करे किसी की, अल्लाह करे टांग ना टूटे, उसकी टांग टूट जाए, उसको एम्बुलेंस आती है, ले जाती है, अस्पताल जाती है, 100% फ्री इलाज होता है। लेकिन अगर आपका दांत टूट जाए तो वो फ्री इलाज नहीं होता।
2: ये एक अजीब सी चीज है डेनिश सिस्टम में, लेकिन अब पता नहीं, एक तो वो सुना है कि जो एक मखसूस एज से ऊपर लोग होंगे उनके पहले इलाज होंगे, फिर पता नहीं किसका होगा। इसी तरह वो जो था बस के टिकट्स का, कि ट्रांसपोर्ट फ्री होगी, आप कहीं भी नौजवान जाएं, वो भी कुछ नजर नहीं आता। तो ये बस मुझे लगता है कि पाकिस्तान की कुछ चीजें डेनमार्क में भी आ गई हैं इलेक्शन के
1: जो लोग पार्लियामेंट में या कम्यून में बोलते हैं उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ बातें करते हैं, तो फिर इस तरह तो मसाइल कभी हल नहीं होंगे। लोग जो बोलते हैं वो नुकसान भी सियासी उठाते हैं, जो नहीं बोलते वो बंद कमरों में फायदे भी लेते हैं। बंद कमरों की पॉलिसी भी बहुत अच्छी होती है, बैकडोर डिप्लोमेसी होनी चाहिए।
2: नहीं, मतलब मैंने तो जब भी अपने लोगों की बात की है मुझे नुकसान ही हुआ है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि जब आप ये फैसला करते हैं कि जी मैंने इंसानों के लिए कुछ करना है या अपने लोगों के लिए कुछ करना है, तो आपको गंदगी से गुजर के जाना पड़ता है। अपने जेन को ये तैयार रखना चाहिए, चाहे आपके मतलब मेरे से ज्यादा वो क्या नासर कादर ने भी कभी वोट नहीं लिए, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे समझ आ गई थी कि इन्होंने मुझे यूज किया है एक मतलब काली औरत के तौर पे, मेरी वजह से इनको वोट मिले हैं, तो वो इन्होंने आगे आगे मुझे किया, मैंने बोलना शुरू कर दिया, फिर इनको तो पीड़ होगी कि ओ ये तो जाहिर है मैं यहाँ के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हूँ, तो अंगूठा छाप तो नहीं थी ना। तो ये है कि बस अपनी पार्टियों में काम करें, मैं फिर वही कहूंगी अपनी पार्टियों में काम करें, जो आपका मौकफ है वो पार्टी का मौकफ बनाए। आपको कोई वो जिसको डेनिश में नहीं कहते दाइंग खेम हुआ, कोई नहीं आपको तसल्ली देगा, कोई नहीं कुछ होगा, लेकिन जब एक चीज पार्टी के अंदर जमहूरियत के तकाजों को पूरा करते हुए कोई चीज पास हो गई, उनकी कोई चावश नहीं रहती ना। लेकिन बाहर हम कितना भी करते रहे तो वो कभी कहेंगे तुम सूलो हो, तुम अकेला काम करते हो, पार्टी तुम्हारी वजह से बिखरती है, बड़े बड़े मेरे जैसे लोगों के नाम
1: लुबना है। देखे ना, मैं आप ही की बात लेकर चलता हूँ, आपको भी वोट मिले, पावर मिली। मरियाना येलवे जो है वो एक पावर खातून जिसे कहते हैं आयरन लेडी, इसी तरह मार्गरेटे वेस्टा, इनके पास पावर आई। अब रेडिकेल के जो फोरमैन है इनके पास पावर आई, तो जब जब पावर आई तो इन्होंने अपने बैग में वोट डाले, तसलियाँ दी, पपियाँ दी, टॉफी दी, इश्तहारात दिए, अच्छी जगहों पे बैठाया, तालियां बजवाई। जब वक्त आया काम करने का तो फिर जिस तरह आपको मिलना चाहिए था, मेयरशिप की सीट मिलनी चाहिए थी आपको, आगे पीछे करके किसी और के हिस्से में चली गई। इसी तरह ये भी हमसे वादे करते हैं, वक्त आता है तो फिर हमें भी इसी तरह जिगजैग कर जाते हैं। तो कभी हमने भी जिगजैग किया?
2: राय साहब, मैं फिर वहीं से कहूंगी कि हमारे डेनिश सियासत में मुलव्वस होने का तरीका कार ही गलत है, माजरत के साथ अगर किसी को बुरा लगे, क्योंकि पाकिस्तानी कौन है, तुर्की कौन है, अरबी कौन है, हम इनकी नजर में सबसे पहले पाकी है या इनवान खान है, दे डोंट केयर कि हम किस जगह से है ना। हमारी रंगत काउंट करती है कि हमारे काले बाल हैं या ब्राउन चेहरा है। तो हम जब तक इकट्ठे नहीं होंगे क्रॉस द पार्टीज, देखिये कितने काउंसलर हैं लेकिन कोई भी नहीं, आप इकट्ठा करके बता दें तो मैं मान जाऊंगा। मैंने कई दफा तुर्कियों से वो किया, नहीं इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, तो पहले आप ये फैसला करें आप करना क्या चाहते हैं। मेरा एक स्लोगन होता था कि मैं पहले गैर मुल्की हूँ, उसके बाद मैं किसी पार्टी से की मतलब मेरी जो क्या कहते हैं उसकी मेरी वस्ती के अलावा भी जो क्या कहते हैं मतलब आई एम लॉयल जो नहीं है मैं वफादार कि मैं
1: पहले
2: नहीं मैं आई डोंट वांट टू बी अ पार्टी सोल्जर कि मेरी वफाद सबसे पहले इनवानता से है, उसके बाद मैं सोशल डेमोक्रेट क्यों या एसएफ व्हाटएवर जो। तो मैंने तो कभी नहीं छुपाया क्योंकि उस रात मुझे समझ आ गई थी कि मेरी औकात क्या है। उसके बाद पाकिस्तानी तंजीमों के कुछ लोग थे, उन्होंने मीटिंगें की, बताया उन्होंने कि हमने तो उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं की, मेरी सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन उनको
1: तंजीमों के लोगों को क्या तकलीफ थी
2: पता नहीं,
1: क्या वो भी उम्मीदवार थे आपकी सीट के?
2: नहीं नहीं, वो बस वैसे ही वो पंजाबी कहते ना खेडेंगे ना खेडन देंगे। मैंने कब कहा है कि मेरे सारे वोट पाकिस्तानियों के, अव्वल तो हो ही नहीं सकते थे, हम 40 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बस यही अफसोस है कि अभी भी हर साल जब होता है इलेक्शन कमून का होता है, मैं सबको कहती हूँ मिलके बैठो, जहां से हमने सीखा जरूरी नहीं तुम वही धक्के लो, ये जो है बजट की गेम क्या है। मेरा ख्याल है कंदर सदीक वाहिद होगा जिसको पता होगा, क्योंकि वो एक अपनी नौजवानी में भी काउंसलर रहा है, फिर उसने पार्लियामेंट में भी किया है और अभी जो नहीं है स्टिल काउंसलर है। तो बाकी तो किसी को नहीं पता कि ये गेम क्या है, वो 1-2 साल बाद उनको समझ आएगी, लेकिन एक एक टर्नोल 4 साल का होता है, 2 साल तो चले गए ना। अब 4 साल के अंदर जब नवंबर में इलेक्शन होते हैं, हर साल अक्टूबर में बजट पास होता है, ठीक है, यानी जो लोग पिछले साल नवंबर में चुनाव जीते हैं उन्होंने किसी और का मंजूर शुदा बजट पे 1 साल काम, जिन्होंने बजट उनको दिया उनकी अपनी तरजीहात थी कि उन्होंने किस चीज को प्रायोरिटी दी है, सड़कें बनानी है, स्कूल नया बनाना है। अभी कोपेनहेगन कमून में ये जो है कि एक बूढ़ा शख्स, मेरा ख्याल है 125 ग्राम गोश्त उसको हफ्ते का मिलेगा, तो मेरे दिल को तो बहुत बुरा लगा। मैंने उठा के जो है आगे पीछे खत लिखे हैं कि जी ये तो एक बूढ़े इंसान को प्रोटीन चाहिए। हाँ मैंने ये जरूर कहा कि जब ये बीमार होंगे तो काइंडली देखो कि एक अस्पताल का बेड क्या कॉस्ट करता है, तो तुम उनको ये आहिस्ता आहिस्ता क्यों मार रहे हो, क्यों इतना कम की खुराक तुम्हारा मतलब है, खुद तुम इतने इतने बड़े बीफ खाते हो। तो वो उन्होंने तो अपने हिस्से का काम किया है ना, उन्होंने वेलफेयर स्टेट बनाई है, उन्होंने अपना टैक्स दिए हैं, अपनी पेंशनें जमा की हैं। ये एटीपी को ले लें, एटीपी एक जगह टैक्स है, लोग क्यों दें एटीपी, लेकिन वो मुल्क के पास इतने पैसे हैं एटीपी के कि आपकी सोच है, वो जब जब लोग बूढ़े होते हैं तो पता नहीं मे भी किसी को 100 तो किसी को 300, लेकिन टैक्स की शरह इतनी ज्यादा है कि आपको अब क्यों एटीपी ले रहे हैं। तो ये
1: लुबना,
2: पूरा
1: आपका बहुत शुक्रिया। लुबना, आपने ये भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि सिकंदर स्टिल अभी तक कम्यून का मेंबर है, तो लोग तो खुशी भी से भी एक दूसरे को मुबारकें भी दे रहे हैं। लेकिन चलें, आपने चूंकि आप रही हैं, सिस्टम को समझती हैं कि स्टिल वो सिटी काउंसिलर हैं। लुबना, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा।
2: चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।
1: सामाई नाज़रीन, ये थी साबका सिटी काउंसिल लुबना इलाही साहबा, जो कि मुतर्रक हैं रेडिकल वेंस्टा की, जो हैं वो मुतर्रक मेंबर हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी के मंशूर में है कि बाई बर्थ जो है वो शरीयत दी जाए। अब लोगों को बोलना चाहिए, पार्टी मेंबरान को बोलना चाहिए, इस पार्टी में जो शामिल है उनको बोलना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि हमारे मंशूर में ये बात शामिल है, आवाज़ उठानी चाहिए। इसी तरह कैटेगरी 5 की आवाज़ उठानी चाहिए। अक्सर हमारी बात चलती रहती है, आपकी रिकॉर्ड भी बात होती रहती है। वो चूंकि उस भी सुरसा अपनी कमेटी के मेंबर भी हैं, उनकी हमारे वजीर खारजा से अक्सर मुलाकात रहती है, पिछले दिनों भी उनकी मुलाकात हुई। बहुत जल्द जो है ज़ुहैर अली भी हमारे मेहमान होंगे, दूसरे लोग भी होंगे।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: और मेरे सब साथी जो मेरे साथ है उनकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, आवाज आई है आप?
2: जी यार, ये जो साहब हम बात कर रहे हैं 6 सितंबर के हवाले से बात कर रहे हैं, आप बिजनेस भी करते हैं, आप काफली के रहनुमा हैं, आप 28-20 साल सदर भी रहे डेनमार्क के, तो आप क्या कहेंगे 6 सितंबर के हवाले से?
0: जी राय साहब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के दिन के हवाले से यही है कि जो हमारे शहादा हैं, जो हमारे पाकिस्तान में कुर्बानियां दे चुके हैं या कुर्बानियां दे रहे हैं, हम उनकी खिदमत में खराज तहसीन पेश करते हैं। सिर्फ उन्हीं का नहीं है, उनके खानदान को, उन माओं को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने उन बच्चों को इतना परवान चढ़ा के और पाकिस्तान में कुर्बान होने के लिए, पाकिस्तान पे कुर्बान होने के लिए, पाकिस्तान की अवाम की जो है को महफूज करने के लिए अपनी जानें कुर्बान की और जानें कुर्बान कर रहे हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं माशाल्लाह। क्योंकि ये ऐसी माएं हैं जो हमारी पाकिस्तान की ऐसी हौसला बुलंद इनके हौसले होते हैं, जो अपने बच्चों को पता भी होता है कि हमारे बच्चों ने ये शहीद हो जाना है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने बच्चों को पाकिस्तान पे कुर्बान करने के लिए तैयार होती हैं। और ये ऐसे नहीं है, एक बच्चा नहीं है, जितने भी बच्चे उनके होते हैं उनका दिल होता है कि हम पाकिस्तान में कुर्बान कर दें। तो हमें भी ये आज के दिन के हवाले पे हम तो यही उनको खराज तहसीन पेश कर सकते हैं, उनके साथ हम दर्दी पेश कर सकते हैं, और दूसरा जो कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, हम उनके हवाले से वही लोग हैं जो बॉर्डर पे बैठ के हमारे लिए हमारी हफाजत करते हैं, हमारी माओं की इज्जत की हफाजत करते हैं, हमारे पाकिस्तान की हफाजत करते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डरों की हफाजत करते हैं और अपनी जानें कुर्बान करते हैं। हम इन सब को पूरी पाकिस्तान की, ये हमारी कोई पार्टी नहीं है, मैं समझता हूँ हमारी कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए, हमारा पाकिस्तान होना चाहिए, पाकिस्तान की अफवाज होना चाहिए, जो पाकिस्तान को हर वक्त हर जगह हर बॉर्डर पे खड़े होके जो कुर्बानियां दे रहे हैं, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े होना चाहिए, पूरी पाकिस्तान की अवाम को और पाकिस्तान की अवाम को पाकिस्तान की फौज के साथ हमदर्दी करनी चाहिए, और जो उनके साथ कोई इस तरह से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनको कंडेम करना चाहिए। वो हम में नहीं होते, क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए हैं, पाकिस्तान हमारा है, हमारी माँ है, हमने उसकी हफाजत करनी है, हम सब लोगों का फर्ज है। तो आज हम शहादा को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी, और आज पाकिस्तान जिस तरह से पूरी दुनिया में अपना एक मकाम बना चुका है और पाकिस्तान की तरफ हर दुनिया की नजर है, चाहे के मुस्लिम उम्मा सऊदी अरब हो जाए, जो पाकिस्तान का एक गढ़ है इस्लाम का सऊदी अरब, उसकी जो हफाजत का जिम्मेदार जो पाकिस्तान को उठाया जा रहा है, ये सब हमारी फौज के कारामद है, जो हमारी फौज के इतने हौसले बुलंद है कि जो अपनी जान को कुर्बान करने के लिए भी दरेग नहीं करती। तो यही होता है जो पाकिस्तान का मकाम पूरी दुनिया में इस तरह से ये सामने आया है। तो हम आज के हवाले से उन शहदा को, उन फौज को, उन पूरे खानदान को खराज तहसीन पेश करते हैं। राज साहब
2: जी, बहुत शुक्रिया। जो साहब बहुत शुक्रिया आपने, शाह साहब आप काफी देर इंतजार करते रहे, आपने सब की बातें सुनी, तो फिर आस्था साहब क्लोजिंग को उसको बढ़ते हैं। जी शाह साहब
3: जी, अपना चौधरी शौकत साहब ने भी ज्वाइन किया, इनको भी सलाम अलैकुम, और कर्नल साहब को भी। कर्नल साहब, मैं खुद आर्मी अफसर का बेटा हूं और मेरे वालिद साहब G2 ऑप्स थे सियालकोट में डिवीजन के अंदर। मैं डिप का नाम नहीं लूंगा क्योंकि दुश्मन के लिए ये होता है, लेकिन ही बिलोंग फ्रॉम 13 पंजाब, तो उन्होंने सारी उम्र ये काम किया, और 65 की वॉर में मैं 15 साल का था और सियालकोट कैंट में सबसे आखिरी कोठी थी हमारी, जहां से आगे से सारे गांव शुरू होते थे, बाड़े शुरू होते थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ अवाम को कि हमारे ऐसे भी शहदा थे जिनको अगर मैं सदर पाकिस्तान होता तो उनको निशाने हैदर देता। मैंने ऐसे भी शहदा देखे हैं जिन्होंने जंग खत्म होने के बाद जाके देखा कि जिनके हाथों में मशीन गन हैं और उनके ट्रिगर पर हाथ है और उनकी शहादत हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी मोर्चों में बैठे हुए हैं। और ये चविंडा की बात करो जहां सबसे बड़ी टैंकों की जंग हुई थी और हमारे सिर्फ 30 टैंक थे जो छम जोड़ियों के मुहाज पर भी लड़ते थे, सियालकोट के मुहाज पर भी लड़ते थे,

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूं तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नात ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनजर रखते हुए दफ के साथ नजराना अकीदत बहुजूर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश खिदमत है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।